2.9 MHz पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 28 मई सन 2026। सवेरे के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा के प्रसारण मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ आरंभ हो रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू कर

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

जिसकी जीव हमेशा हरि के नाम का जप करती रहती है, उसे गंगा, गया, रामेश्वरम, काशी और पुष्कर जैसे तीर्थयात्राओं की आवश्यकता नहीं होती। अश्वमेध और नर्मदेह जैसे सभी प्रकार के यज्ञ हरि के नाम का जप करने वाले ने पूर्ण कर लिए होते हैं।

श्री कृष्ण को देखकर जैसा दिव्य आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता। क्योंकि जो आंखें देखती हैं, उनके तो कोई जीव नहीं है जो वर्णन कर सके, और जो जीव वर्णन कर सकती है उसके आंखें नहीं।

बिना देखे वो बेचारी जीव उसका क्या वर्णन कर सकती है। मोहन लखी जो बढ़त सुख, जो कछु कहत बने ना, नैनन के रसना नहीं, रसना के नहीं नैना।

अमन का पैगंबर खुदा का वो नूर, दुनिया के अंधेरे में जो बनकर आया कोहिनूर। मोहम्मद नाम है उनका जो रहमत की निशानी है, जिनकी पाक सीरत दुनिया की सबसे खूबसूरत कहानी है। दूर करते थे नफरत दिलों में प्यार जगाते थे, जो पत्थर भी मारते थे उन्हें भी वो दुआएं देते जाते थे। दुरूद पढ़ते हैं फरिश्ते और झुकती है हर जमीं, आपकी शान में लफ्ज़ कम पड़ जाएं, ऐसी है हस्ती आपकी नबी।

तुम हो आज हर सू तुम ही तुम हो, क्या तमन्नाएं हैं बोलो, मांग लो हमसे जो चाहो, मांग लो कहना हमारा, ये भी तो घर है तुम्हारा।

श्री गुरु नानक के अनुसार परमात्मा एक है, सत्य स्वरूप हैं और सृष्टि के रचयिता और सर्वव्यापक हैं। वे निर्भय, निर्वेर एवं समय और काल के परे हैं। परमात्मा अजन्मा है और स्वयंभू है। उन्हें उनकी कृपा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा सृष्टि के आरंभ में थे और वह हर युग में विद्यमान रहते हैं। वो सत्य स्वरूप विद्यमान थे और आज भी विद्यमान हैं। श्री गुरु नानक के अनुसार परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहेंगे।

श्री राम भक्ति की बहती धार है राम नाम मोक्ष का द्वार। सो जपते जाना तेरे जीवन का होगा उद्धार। क्या होती मर्यादा जान ले, अपना अस्तित्व पहचान ले, तुझ में पाएगा राम को बस राम का ही ध्यान ले। कौन कहता है राम भगवान, राम तो है तेरी पहचान, राम है ही तेरा अभिमान, अतः करो श्री राम का गुणगान।

इसी भजन के साथ वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज की वंदना में कलाकार थे सुमन कल्याणपुर, लता मंगेशकर, यूसुफ आज़ाद, पंकज उदास, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों की निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप इस समय सुन रहे हैं हमारे आज की पहली सभा के प्रसारण। सवेरे के 6:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: एक पवित्र संबंध है। यह एक ऐसा भाव है जो दो व्यक्तियों को एक दूसरे से अभिन्न बना देता है, दो पवित्र आत्माओं को एकात्म की स्थिति में ला देता है। एक मित्र अपने मित्र के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। ऋग्वेद में स्पष्ट कहा गया है, नसा सखा योनि ददाति सखे, अर्थात वो मित्र ही क्या जो अपने मित्र को सहायता नहीं प्रदान करता। मित्रता की पवित्रता तभी तक बनी रहती है जब तक एक मित्र दूसरे मित्र के प्रति सच्चे हृदय से जुड़ा रहता है, उसके दुख में दुखी और उसके सुख में सुखी होता है, किसी भी स्वार्थ को अपनी मित्रता के मार्ग में आड़े नहीं आने देता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सच्ची मित्रता वहीं होती है जहां स्वार्थ की बलि होती है। नीतिकार का भी कहना है कि सच्चा मित्र वह है जो अपने मित्र को पाप से बचाता है, हित के कार्यों में लगाता है, उसके गोपनीय तथ्यों को छुपाता है और उसके गुणों को

0: सबके सामने प्रकट करता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि निज दुख केरी सम रज सम जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रकटई अब गुनहि दुरावा। देत लेत मन शंक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपति काल सत गुण नेहा, श्रुति कहे मित्र संत गुण एहा। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार मित्र धनी हो या गरीब, सुखी हो या दुखी, सदोष हो या निर्दोष, वो मित्र के लिए सबसे बड़ा सहायक होता है। इसलिए एक सच्चा मित्र ही इस पवित्र संबंध और भाव को निभा सकता है। सच्ची मित्रता के लिए वाणी का नियंत्रण भी परम आवश्यक है। प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद के अनुसार वाक संयम ही विश्व मैत्री की पहली सीढ़ी है। इस संबंध के निर्वाह के लिए अन्य बातों की भी आवश्यकता होती है। नीतिकार चाणक्य कहते हैं कि दृढ़ मित्रता चाहते हो तो मित्र से बहस करना, उधार लेना देना और उसकी स्त्री से बात करना छोड़ दो। यही तीन बातें मित्रों में बिगाड़ पैदा करती हैं। इसलिए मित्रता को बनाए रखने के लिए केवल सज्जनों से ही मित्रता करनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता है। इस प्रकार मित्र और मित्रता समाज के पवित्र संबंधों के दृढ़ स्तंभ हैं। किसी भी व्यक्ति की मित्रता तब तक पूर्ण नहीं कही जाती जब तक कि वो अपने मित्र की अनुपस्थिति, निर्धनता तथा आपत्ति के दिनों में पूर्ववत सहायता नहीं करता। इतना ही नहीं, अपने मित्र की मृत्यु के पश्चात भी उसके अधिकारों और संबंधियों की रक्षा तथा सहायता निस्वार्थ भाव से करते रहना सच्ची मित्रता के लक्षण हैं। इस पवित्र भाव और पवित्र संबंध के लिए स्वार्थ की बलि और त्याग की तत्परता परम आवश्यक है। ऐसा करने वाला ही सच्चा मित्र होता है और उसके संबंध सच्ची मित्रता में गिने जाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। आज इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर हेमलता सक्सेना से की गई भेंटवार्ता। विषय है दांत और मसूड़ों का दर्द। आपसे बात कर रहे हैं डॉक्टर विनय वर्मा।
1: तो हमारे शरीर में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं और उनके इलाज के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आज हम बात करेंगे दांतों की समस्याओं को लेकर के, और विशेष रूप से दांत व मसूड़ों में जब दर्द होता है तो असहनीय पीड़ा होती है, परेशानी का सबब बनता है। क्या कारण है, उपचार कैसे हो सकता है और क्या सावधानी बरत करके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमलता सक्सेना, जो कि डेंटल सर्जन है जिला चिकित्सालय रामपुर में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद विनय जी।
1: डॉक्टर साहब, दांत में जब कोई समस्या होती है तो ऐसा लगता है कि जब तक इसका इलाज न हो जाए तो फिर चैन नहीं पड़ती।

0: और दर्द जब होता है दांत और मसूड़ों में, तो क्या कारण है, कैसे ये दर्द उत्पन्न हो जाता है?
1: जी विनय जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। दांत का दर्द ऐसा होता है कि एक बार दर्द शुरू हो तो फिर बर्दाश्त के बाहर होता है और उसका निवारण बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि दांतों में जो बीमारी होती है वो एक तो दांतों की है, दूसरा दांत मसूड़े के अंदर होते हैं, मसूड़ों की बीमारी होती है। दांत की बीमारी जो है जिसे हम डेंटल केरीज बोलते हैं या दांत में कीड़ा लगना बोलते हैं, मसूड़े की बीमारी पायरिया होता है।
0: अच्छा,
1: ये दोनों ही बीमारी जिस कारण से होती है वो है हमारी खाने पीने की गलत आदतें और मुंह की स्वच्छता पर ध्यान ना देना।
0: अच्छा,
1: तो अगर हम सही से दांतों को साफ नहीं करेंगे तो दांतों के ऊपर जो भी खाने पीने की चीजें लगी रह जाती हैं उनसे जो हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और डेंटल केरीज के लिए जो
0: जिम्मेदार
1: बैक्टीरिया है वो है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, वो उन खाने पीने की चीजों पर एक्ट करके और विषैले पदार्थ निकालता है जिससे कि हमारे दांत का डीमिनरलाइजेशन यानी कि गलना शुरू हो जाता है, डेंटल डिके शुरू हो जाता है। वहीं से धीमे धीमे पहले हल्के ब्राउन कलर का, फिर ब्लैक कलर का, देन फिर उसके अंदर कैविटी स्टार्ट हो जाती है।
0: अच्छा।
1: पहले छोटा गड्ढा बनेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, मरीज कहेगा कि मतलब मेरा खाना घुसा और उसने साफ कर लिया, ठीक हो गया। तो हर इंसान को ये लगता है अरे बस खाना निकाल लिया, ठीक हो गया, क्या जरूरत है। लेकिन वो जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है नीचे की तरफ वो और डीप होता जाता है। फिर एक दिन अचानक से एकदम से दर्द होता है
0: बहुत। अच्छा।
1: या तो पहले ठंडा लगेगा तब भी अवॉइड कर देता है, फिर गर्म लगने लग जाता है, देन उसके बाद पेन शुरू होता है। तो हमको शुरू से ही ध्यान देना है कि हम यदि अपने दांतों को सही से उसका देखरेख रखेंगे और हम देखें कि हमारे दांत के ऊपर कोई सा भी हल्का ब्राउन कलर का, हल्के कत्थई रंग का कोई भी पैच आ गया है या निशान आ गया है, तो हमें फौरन ध्यान देना चाहिए। और वो किस कारण से होगा, वो ये है कि हम यदि खाने पीने की सही से चीजें नहीं खाएंगे। अधिकतर आजकल खाने पीने में क्या आ रहा है, सब मैदे वाली चीजें, मिठाई वाली चीजें,
0: फास्ट फूड,
1: चॉकलेट्स, फास्ट फूड, फल और सब्जियों पर किसी का ध्यान नहीं है। स्पेशली हमारे जो युवा जनरेशन है या हमारे बच्चे हैं वो सभी इन्हीं चीजों को पसंद करते हैं और ये दांतों के लिए और शरीर दोनों के लिए ही बहुत ही नुकसानदायक है।
0: आपने साफ सफाई का जिक्र किया है जिसके लिए सभी लोग सवेरे उठ करके ब्रशिंग करते हैं, क्या ब्रशिंग का भी कोई एक अच्छा और सही तरीका है, और कभी कभी कुछ लोग सही तरीके से ब्रशिंग नहीं करते हैं?
1: हाँ जी विनय जी, दांतों को साफ करने का तरीका ये है, सबसे पहले तो कि उचित हम ब्रश का चुनाव करें। ब्रिसल्स उसके सॉफ्ट होने चाहिए, ना ही बहुत हार्ड ना ही बहुत सॉफ्ट। बहुत ज्यादा सॉफ्ट होंगे तो वो अच्छे से स्क्रब नहीं कर पाएंगे हमारे दांतों को, और बहुत हार्ड होंगे तो हमारे दांत की जो ऊपर वाली सतह होती है जिसे हम इनामल कहते हैं वो घिस जाती है और सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, ठंडा गर्म लगना भी शुरू हो सकता है बिना कीड़ा लगे।
0: कोई संबंध नहीं है, सिर्फ आम धारणा है।
1: हाँ जी,
0: सावधानी की बात करते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये समस्या ज्यादा न बढ़ने पाए तो। और कभी कभी मसूड़ों में स्वेलिंग भी हो जाती है, ये किस वजह से होती है और उसका निदान कैसे हो सकता है?
1: सभी का, कैविटी का भी और पायरिया रोग दोनों का ही निवारण जो है सफाई से ही है। स्वच्छता नहीं रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। वैसे ही मुंह के अंदर यदि हम सफाई नहीं रखेंगे तो हमारे मसूड़े और दांत के बीच में अटैचमेंट कमजोर पड़ जाता है और एक गैप आ जाता है, फिर धीमे धीमे करके दांत हिलने लग जाता है और गिर जाता है, ये पायरिया रोग होता है।
0: जी, तो तुरंत अपने डेंटल सर्जन को या डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं। डॉक्टर हेमलता सक्सेना जी, आप हमारे कार्यक्रम आए और अच्छी जानकारी दी कि यदि कोई दांत संबंधी समस्या है, विशेष रूप से दांत और मसूड़ों में दर्द होता है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और बताएं, और साथ ही साथ सावधानी बरत करके इस समस्या से निदान पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद,
1: शुक्रिया।
2: दांत व मसूड़ों का दर्द, अभी आप इस विषय पर डॉक्टर हेमलता सक्सेना से की गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। आपसे बात कर रहे थे डॉक्टर विनय वर्मा। इसके साथ ही स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में बता दें।

0: अपने दायरे, लेखक होंगे रमेश उपाध्याय। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम होगा सबरस, जिसमें आज आप सुनेंगे श्री बोनी भट्टाचार्य से कुछ गज़लें। इनके साथ तबले पर होंगे मोहम्मद उस्मान और सिंथेसाइजर पर साथ देंगे गुलवेज। गीत गाता चल, ये कार्यक्रम होगा रात्रि 8:00। शाम 7:31 पर सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे सखावत हुसैन की गायी कुछ गज़लें। शाम 7:00 कार्यक्रम होगा विविधा, जिसमें आज आप सुनेंगे अवतार सिंह से की गई भेंटवार्ता। विषय रहेगा वर्तमान समय में सामाजिक संगठनों की भूमिका। आपसे बात करेंगे असीम सक्सेना। शाम 6:20 पर कृषिगत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ईद उल अजहा पर चर्चा, साथ ही साथ कृषि पत्रिका खेत खलिहान, डॉक्टर सुनीता पंत से की गई भेंटवार्ता आप सुन सकेंगे। विषय रहेगा कुटीर उद्योग अपनाकर बने आत्मनिर्भर। इसके अलावा कृषि संकेत और मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। शाम 6:10 पर कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज के आकर्षण रहेंगे आज का सवाल कुछ खास है आज, फेसबुक लाइव, आज की बात युवाओं के साथ, यूथ एंड स्पोर्ट्स और फेसबुक के साथ आप सुनेंगे कुछ मनोरंजन भी। शाम 5:00 कार्यक्रम होगा आज शाम। अपराह्न 4:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, इसको हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा सुनहरा दौर, जिसमें आज आप सुनेंगे 90 के दशक के सदाबहार फिल्मी गीत। दोपहर 1:30 पर कार्यक्रम होगा आंचल, जिसमें आज आप सुनेंगे ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका विषय पर परिचर्चा, जिसमें प्रतिभागी होंगे श्रीमती लक्ष्मी, श्रीमती नीरज, श्रीमती यमुना देवी और संचालन रहेगा गुंजन गंगवार का। धरती गाती है ये कार्यक्रम होगा दोपहर 1:15 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे उषा अग्रवाल के गाए कुछ लोकगीत। गीत आपके नाम ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 12:10 पर। श्रोताओं की शब्दावलियों पर आधारित कार्यक्रम होगा मन भावन दिन में 11:30 पर। दिन में 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम धरोहर, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे रूपक जल है तो कल है, प्रस्तुति असीम सक्सेना की होगी। प्रायोजित कार्यक्रम होगा NCERT उमंग सवेरे 10:30 पर। उर्दू प्रोग्राम आप समाप्त फरमाएंगे सुबह 9:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे गुफ्तगू, जिसका मौजू होगा सब्र तहमुल और ईद उल अजहा, जिसमें शिरकत करेंगे तुवा कलीम, मुमताज बी और गौसिया बी। और अब से कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 7:31 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान,
1: एपिसोड नंबर 311 311।

अंगद के मुख से कई रावणों के उपहास की कथाएं सुन रावण तिरस्कार भरे स्वर में बोला, मूर्ख वानर, मैं वही रावण हूं जिसकी भुजाओं का बल कैलाश पर्वत को ज्ञात है, जिसका पराक्रम स्वयं महादेव जानते हैं।

ने अगणित बार अपने सिर काट और चढ़ाकर उनकी पूजा की थी। दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथियों के विशालकाय दांत मेरी छाती से टकराकर गाजर मूली की तरह टूट गए थे। मेरे चलने मात्र से पृथ्वी ऐसे डोलती है मानो भूकंप आ गया हो। मैं वही जगत प्रसिद्ध रावण हूं। क्या ये सब तूने अपने कानों से नहीं सुना जो मुझे छोटा समझ एक मनुष्य की बड़ाई करता है? तू कितना अज्ञानी है अब मैं समझ गया। रावण के वचन सुन अंगद श्री राम की महिमा और अनंत शक्ति का बखान करते हुए कहते हैं, तू मूर्ख है जो श्री राम को साधारण मनुष्य, हनुमान को वानर, कामदेव को धनुर्धर, कल्प वृक्ष को एक सामान्य पेड़, गरुड़ को मात्र एक पक्षी और शेषनाग को एक मामूली सर्प समझता है। यदि तूने श्रीराम से वैर मोल लिया तो ब्रह्मा और रुद्र भी तेरी रक्षा नहीं कर सकेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55
1: आइए अब सुनते हैं समाचार। पहले संस्कृत में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, उसके बाद हिंदी में होंगे और फिर होंगे अंग्रेजी में समाचार।
2: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम् 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणमतिक्रम्य नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् 150वें प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोबरधन संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबंधन संबद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां 7 महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुं, ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं, गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौर योजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षीबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यते। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्मानमिदं प्राप्तुं देशस्य 15वें राज्यं तथा उत्तर पूर्व क्षेत्रस्य तृतीयं राज्यम् अभवत्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षीबलस्य असाधारण सेवायाः, सुदृढ अनुशासनस्य, राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चं औपचारिक सम्मानं वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्थायै कोइम्प्ट एड्युटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबंध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिक अंतर्जालीय पटलीय संदेशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः, भ्रमात्मकः, तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबंध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,000 वर्षस्य बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्तमासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमंत्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासं आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृता अस्ति। राज्य सर्वकारेण सर्वेषां मंडल आरक्षि प्रमुखाणां कृते संचेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतन परंपरायाः आरम्भः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट क्रीडायां। IPL क्रिकेट स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चण्डीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं सप्तचत्वारिंशत् धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं चतुश्चत्वारिंशदधिकद्विशत धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितमासीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं षड्नवत्यधिकैकशतं धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 7 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में सुनिए मन्नालाल यादव और साथियों से कुछ भोजपुरी लोकगीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं मन्ना लाल यादव और साथियों के गाए कुछ भोजपुरी लोकगीत। लीजिए आप सुनिए इन्हीं की आवाज़ों में ये भोजपुरी लोकगीत।

0: मन्ना लाल यादव और साथियों के गाए इसी भोजपुरी लोकगीत के साथ लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: चुनिंदा शानदार हिट फिल्मी गीतों के साथ कीजिए अपने दिन की खुशगवार शुरुआत।
1: सुनिए 102.9 मॉर्निंग हिट्स सवेरे 8:45 से 9:15 तक
0: प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार।
2: 102.9 मॉर्निंग हिट्स आकाशवाणी रामपुर से।
3: आज की सबसे पहली जरूरत ERSS
4: यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम,
3: और ये उपलब्ध है हेल्पलाइन नंबर 112 पर।
4: आपातकाल में साथ निभाए,
3: तुरंत सहायता उपलब्ध कराए
4: 112।
3: सवाल चाहे महिला सुरक्षा का हो
4: या सार्वजनिक स्थानों पर आत्मरक्षा का,

0: चाहिए पुलिस सहायता
1: या फिर अग्निशमन सेवा की हो आवश्यकता,
0: बुलाना हो एम्बुलेंस को,
1: मिटाकर हर सस्पेंस को
0: डायल 112।
1: कोई भी राज्य हो कोई भी इलाका,
0: 112 सच्चा हम सफर है आपका।
1: कॉल 112, एसएमएस करें या पैनिक बटन दबाएं,
0: या फिर भेजें ईमेल ऑलवेज यूज 112 इंडिया मोबाइल ऐप।
1: जब घेरे कोई भी आपदा,
0: तुरंत मिले सहायता,
1: डायल 112।
0: चिंता से पाएं छुटकारा,
1: पुष्पा झुकेगी नहीं,
2: 112 की सेवा रुकेगी नहीं।
3: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
4: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 7:31 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुनना ना भूलिए, बहुत कुछ खास है आज इस कार्यक्रम में आपके लिए।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:19 होने को हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा।

0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सार्थक PDS योजना को जारी रखने की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को सावधानी बरतने की दी सलाह। इधर प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में 42 से 45 डिग्री के बीच रहा तापमान। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा SIR आयोग का अधिकार। और प्रदेश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का पर्व। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: सार्थक पीडीएस योजना का उद्देश्य एआई, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वो भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। इधर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। कई जिलों में कल तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। हालांकि कल से लू से राहत की संभावना जताई गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले तीन दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी यूपी में आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कल लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। श्री योगी ने आगरा लखनऊ पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण जून माह तक पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजनाओं की भी समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निवेशकों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल एआईआर न्यूज अंडरस्कोर जीकेपी पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या

0: अच्छी की पीठ ने कहा कि आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास एसआईआर कराने का अधिकार है।
1: देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है एसआईआर कराने का, उस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं।
0: नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें चलाने की तैयारी की है। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: 15 जून से जेयर एयरपोर्ट से फ्लाइटों के उड़ान भरने के साथ ही कुछ रूटों पर ई बसों का चलना शुरू हो जाएगा। इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम 30 रुपए होगा। नोएडा विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि इसी सप्ताह यूपी रोडवेज निगम से एमओयू की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले 100 ई बसें चलाने की तैयारी है। इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: प्रदेश भर में आज बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने त्योहार को सकुशल संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है। त्योहार में हुड़दंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। एक रिपोर्ट।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई की शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। बांदा जिले में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सार्थक पीडीएस योजना को जारी रखने की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को सावधानी बरतने के लिए सलाह। इधर प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में 42 से 45 डिग्री के बीच रहा तापमान। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के एसआईआर के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा एसआईआर आयोग का अधिकार। और प्रदेश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का पर्व। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सुबह सवेरे कार्यक्रम में आप सभी को अखिलेश सक्सेना का नमस्कार। श्रोताओं, आज 28 मई और आज का दिन बहुत खास है और आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। जी हाँ, आज है बकरीद। ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार पूरे देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। बकरीद इस्लाम धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जिसमें अल्लाह के प्रति अटूट विश्वास और आत्मत्याग के प्रतीक के रूप में ये मनाया जाता है। इस दिन सुबह लोग नए कपड़े पहनकर मस्जिद या ईदगाह में विशेष नमाज अदा करते हैं। इसके बाद एक दूसरे के साथ गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। नमाज के बाद जो आर्थिक रूप से सक्षम है वो कुर्बानी देते हैं और उसके बाद रिश्तेदारों में आपस में मिठाई पकवान बांटते हैं। इस तरह समाज का हर तबका त्यौहार की खुशियों और दावतों में शामिल होता है। ये त्यौहार आपसी भाईचारा और एकता की मिसाल है। ईद उल अजहा का इतिहास करीब 4000 साल पुराना माना जाता है और इस घटना का जिक्र सबसे पहले हिब्रू बाइबल में भी लिखा गया है। बकरीद का पर्व श्रोताओं अहंकार और स्वार्थ का त्याग करने के लिए मनाया जाता है। इसका मूल संदेश सिर्फ कुर्बानी देना नहीं है बल्कि इंसान के भीतर छिपे स्वार्थ लालच और अहंकार की कुर्बानी भी देना है। इससे समानता और सामाजिक सद्भाव की भावना भी प्रकट होती है। इसमें कुर्बानी के मांस को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा परिवार के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और तीसरा हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए होता है। ये व्यवस्था समाज में आर्थिक असमानता को भुलाकर हर तबके को

खुशी में शामिल करने का संदेश देती है। आज के दिन सब लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सबसे पहले फज्र की नमाज़ अदा करते हैं, उसके बाद घर की साफ़ सफाई और स्नान किया जाता है और फिर सबसे साफ़ कपड़े पहनकर इत्र लगाया जाता है और सिर को ढक लिया जाता है। इसके बाद तकबीर पढ़ते हुए लोग समूह में ईदगाह या जामा मस्जिद की तरफ पैदल या वाहनों से निकलते हैं। इस दिन आमतौर पर सुबह 8 से 10 के बीच ईद उल अज़हा की 2 रकात विशेष नमाज और खुतबा होता है। नमाज ख़त्म होते ही लोग आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। शाम के समय लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और हिंदू मुस्लिम भाइयों के घर ईद मिलने जाते हैं। घरों में मेहमानों का तांता लगा रहता है, जिन्हें शीर, खुरमा और मटन के पकवान परोसे जाते हैं। इस दिन का समापन इस संतोष के साथ होता है कि समाज का कोई भी गरीब परिवार आज के दिन भूखा नहीं सोएगा। लोग रात में देर तक अपनों के साथ बैठकर गुफ्तगु करते हैं और शांति और बरकत की दुआ के साथ ये ईद मनाते हैं। आप सभी को आज के दिन की ढेर सारी मुबारकबाद।

0: श्रोताओं, आज हम हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मना रहे हैं और दूसरी ओर ये आप और हम सभी जानते हैं कि काफ़ी दिनों से आकाशवाणी रामपुर भी हर्षोल्लास के साथ आकाशवाणी की 90वीं वर्षगांठ मना रहा है और रोज़ाना हम इस श्रृंखला में किसी न किसी शख्सियत से बात करते हैं। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर अखिल भारतीय रेडियो यानी AIR कर दिया गया था और ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण को दर्शाता है, जब एक ऐसी आवाज़ का जन्म हुआ जो पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। 7 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की तत्कालीन आधिकारिक पत्रिका द इंडियन लिसनर के पहले पृष्ठ पर दुनिया को AIR की घोषणा की गई और उस जादुई शुरुआत से ठीक एक दिन पहले की खबर छपी। समय में ठहर सा गया एक पल, एक ऐसी विरासत जो आज भी जीवित है। जी हाँ, इन शांत दीवारों से ऐसी गूंज निकली स्टूडियो की जिसने एक ऐसे राष्ट्र को आकार दिया जो तब से लेकर आज तक कालातीत, भावपूर्ण और अविस्मरणीय बना हुआ है। तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करते हैं प्रोफेसर, शिक्षाविद, राइटर डॉक्टर मौसम सिन्हा से, जानते हैं उनके विचार, उनके अनुभव आकाशवाणी के लिए, उनके क्या अनुभव रहे और ऐसा नहीं है वो भी आकाशवाणी से जुड़े रहें, तो आइए शेयर करते हैं उनके अनुभव आपके साथ, डॉक्टर मौसम सिन्हा के साथ। डॉक्टर मौसम सिन्हा, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर मौसम सिन्हा, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर मौसम सिन्हा, आकाशवाणी इस वर्ष 90वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। 8 जून 1936 को इसका प्रसारण यानी आकाशवाणी नाम दिया गया और 8 जून 2026 को इसके 90 वर्ष पूरे होंगे, तो इस खुशी में समस्त पूरे देश के आकाशवाणी इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका आकाशवाणी के साथ कैसा अनुभव रहा है, आप कुछ हमें बताएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार अखिल जी। आज मुझे एक श्रोता, एक मंच संचालक और एक पूर्व उद्घोषक के रूप में अपने विचार साझा करने का अवसर आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। वर्षों पहले मुझे भी आकाशवाणी से जुड़े कार्यक्रमों में और मंचों में आवाज देने का सौभाग्य मिला और आज भी विभिन्न वार्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संवाद, हिंदी संवाद, टॉक्स के माध्यम से लोगों तक अपने विचार में रहने का प्रयास करता हूँ। इसलिए आकाशवाणी से मेरा जुड़ाव केवल एक माध्यम नहीं है बल्कि भावनाओं और अनुभवों का जुड़ाव है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होना केवल एक संस्थान की उपलब्धि नहीं है बल्कि भारत की संस्कृति, भारत का समाज और भारत की भावनात्मक यात्रा का उत्सव है। इस हिस्टोरिकल ओकेशन पर आकाशवाणी परिवार और इसके करोड़ों श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। ये सिलसिला शुरू हुआ ऑल इंडिया रेडियो के रूप में और आज यह यात्रा 2026 में 90 वर्षों की हो गई है। इन 90 वर्षों में आकाशवाणी ने केवल समाचार नहीं सुनाए बल्कि देश की संस्कृति, साहित्य, संगीत और जन भावनाओं को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण में आकाशवाणी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। किसानों के लिए कृषि कार्यक्रम, विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक प्रसारण, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, संगीत, नाटक, ये तमाम जो कार्यक्रम है इसने समाज को जागरूक करने का कार्य लगातार किया है और आज भी कर रहा है। फिर ट्रांजिस्टर का दौर आया और आकाशवाणी हर घर, हर चौपाल और हर सफर का साथी बन गई। क्रिकेट कमेंट्री की आवाजें, गीत संगीत के कार्यक्रम, समाचार लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गए। समय के साथ तकनीक बदली, FM रेडियो आया, फिर डिजिटल युग आया, इंटरनेट, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और पॉडकास्ट ने प्रसारण की दुनिया को नया रूप दिया। आकाशवाणी ने भी समय के साथ स्वयं को बदला और नई पीढ़ी तक पहुंचने के लिए माध्यम अपनाया। आज 2026 में आकाशवाणी केवल रेडियो नहीं बल्कि विश्वसनीयता की पहचान है। जब सोशल मीडिया पर सूचनाओं की भीड़ और काम बढ़ रहा है, तब आकाशवाणी आज

0: भी संतुलित सटीक और संवेदनशील प्रस्तुति के कारण लोगों के विश्वास का केंद्र बनी हुई है। आने वाले समय में हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आकाशवाणी और अधिक युवा केंद्रित तथा वैश्विक दृष्टिकोण वाली बनेगी। क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संवाद, पॉडकास्ट, डिजिटल रेडियो और शैक्षिक कार्यक्रमों को और भी मजबूत किया जाएगा। ग्रामीण प्रतिभाओं, लोक संस्कृति और नए विचारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया जाए। साथ ही AI और नई तकनीकों का उपयोग करते हुए श्रोताओं की रुचि के अनुसार कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। इससे नई पीढ़ी को भी रेडियो के साथ और अधिक जुड़ाव महसूस होगा, जैसे पुरानी पीढ़ियां जुड़ी हुई थी।
1: मौसम जी, जो जैसे कि अब तकनीक का विकास हुआ है और सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रेडियो की क्या भूमिका है आज भी, और वो रेडियो से जुड़कर या आकाशवाणी से जुड़कर कितने लाभान्वित हो सकते हैं?
0: युवाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आकाशवाणी की ओर से होते हैं, चाहे वो रोजगार संबंधित जानकारी हो, और सबसे पहले तो ये कि ज्ञान अर्जित करना ज्ञान का एक बहुत बड़ा स्रोत है। समाचार के साथ साथ बहुत सारे मनोरंजन कार्यक्रम, और आकाशवाणी बहुत से युवाओं को मंच भी देता है। वो अगर अपना उत्साह, अपना योग्यता, अपनी टैलेंट को दिखाना चाहते हैं तो वो भी आकर के दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ रेडियो के माध्यम से बहुत अलग अलग तरीके की जानकारी, जैसे आज मैंने कहा इंटरनेशनल लेवल पे भी हम उसको जोड़ के देखते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत सारे साक्षात्कार भी होते हैं, उससे भी युवाओं को काफी लाभ होता है।
1: मौसम जी, आप भी आकाशवाणी रामपुर से जुड़े रहे हैं, कुछ कैसा रहा वो पीरियड आपका और कैसा अनुभव है आपका, शेयर कीजिए।
0: बहुत जबरदस्त अनुभव है। भाषा की बारीकियां, प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाए, माइक को कैसे फेस किया जाए, माइक के सामने कैसे खड़ा हुआ जाए, श्रोताओं से कैसे कनेक्ट बनाया जाए, ये सारी जो स्किल्स है आज बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल सबसे बड़ी स्किल होती है,
1: बिल्कुल,
0: और ये स्किल रेडियो के माध्यम से जब किसी को मिलती है तो ये बड़ा बहुत बड़ा काम करती है। और मैं तो ये कहूंगा कि मेरे जीवन में मैंने जो भी उपलब्धियां हासिल की है उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो आकाशवाणी का है।
1: अंत में क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं से, आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे कर रहा है इस उपलक्ष्य में?
0: अंत में मैं यही कहूंगा, 90 वर्ष का जो ये हमने आयाम स्थापित किया है, खुशी की लहर है, खुशी की बात है। रेडियो से जुड़ना बहुत ही अच्छा है। आजकल क्या है, बच्चे यूट्यूब देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, यूट्यूब पे तमाम चैनल्स देखते हैं और टीवी पे बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, लेकिन रेडियो में जो हम प्रसारित करते हैं वो नेगेटिविटी से बहुत दूर है। अगर हम ये कंपैरिजन देख लें, समझ लें, तो रेडियो से जुड़ा होगा। तो मेरा सभी से ये कहना है कि रेडियो से जुड़े, क्योंकि रेडियो सकारात्मक पहलू को दिखाता है, सकारात्मक बात करता है, और सकारात्मकता आज के जीवन में बहुत ही जरूरी है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मौसम जी, और आपने एक सटीक जानकारी और अपना अनुभव शेयर किया हमारे श्रोताओं के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद अतीत जी, धन्यवाद सभी को।
1: श्रोताओं, ये थे डॉक्टर मौसम सिन्हा, जो प्रोफेसर, शिक्षाविद और राइटर हैं। वो बता रहे थे अपने अनुभव और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर क्या क्या उपलब्धियां रही हैं आकाशवाणी की, ये हमें बता रहे थे। और वास्तव में आकाशवाणी है ही ऐसा एक संस्था, एक ऐसा माध्यम जो आज भी लोगों के दिलों में छाया हुआ है।

और श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें 28 मई के से संबंधित इतिहास के बारे में। 28 मई 2008 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यरत 5 न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया था और विमान सेवा जेट एयरवेज को मध्य एशिया सर्वश्रेष्ठ चर्गो एयरलाइंस का पुरस्कार मिला था। 2008 में ही आज ही के दिन नेपाल में 240 साल पुरानी राजशाही का अवसान हुआ था और 2000 में 28 मई को भारत के राष्ट्रपति के आर नारायण ने चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए 6 दिनों की राजकीय यात्रा पर ये पेचिंग गए थे। आज के दिन भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष का 1952 में जन्म हुआ था। हिंदी के कवि, कला समीक्षक, अनुवादक और कहानीकार प्रयाग शुक्ल का जन्म 1940 में आज के दिन हुआ था। भाषाविद, बुद्धिवादी कवि, अप्रथम क्रांतिकारी, दार्शनिक और ओजस्वी वक्ता वीर सावरकर का जन्म आज ही के दिन 1883 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध कवियों, लेखकों और साहित्यकारों में से एक गोपाल प्रसाद व्यास का निधन 28 मई 2005 में हुआ। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का निधन 28 मई 1954 में हुआ था। और श्रोताओं, आज है पुण्यतिथि भारतीय सिनेमा इतिहास के अग्रणी निर्माता निर्देशक महबूब खान की। जी हाँ, हिंदी सिनेमा जगत के युग पुरुष महबूब खान को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने दर्शकों को लगभग 3 दशक तक क्लासिक फिल्मों का तोहफा दिया था। वो युवावस्था से घर से चले गए थे और मुंबई आ गए और एक स्टूडियो में काम करने लगे थे। भारतीय सिनेमा को आधुनिकतम तकनीकी से संवारने में अग्रणी निर्माता निर्देशक महबूब खान का अहम किरदार रहा है। महबूब खान हॉलीवुड की फिल्मों से बहुत अधिक प्रभावित थे और भारत में भी उच्च स्तर के चलचित्रों का निर्माण करने में जुटे रहते थे। इनका जन्म 9 सितंबर 1907 को गुजरात के सूरत शहर के निकट एक छोटे से गांव में हुआ था। महबूब खान ने अपने सिने करियर की शुरुआत 1927 में प्रदर्शित फिल्म अलीबाबा एंड 40 थीफ्स में अभिनेता के रूप में की थी। इस फिल्म में उन्होंने 40 चोरों में से एक चोर की भूमिका निभाई थी और बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा के लिए महबूब खान का अभिनेता के रूप में चयन किया गया था, लेकिन फिल्म निर्माण के समय आर्द्रेशिर ईरानी ने महसूस किया कि फिल्म की सफलता के लिए नए कलाकार को मौका देने के बजाय किसी स्थापित अभिनेता को ये भूमिका देना सही रहेगा। इसके लिए उन्होंने महबूब खान की जगह मास्टर विट्टल को इस फिल्म में काम करने का अवसर दिया था। वर्ष 1957 में प्रदर्शित फिल्म मदर इंडिया महबूब खान की सर्वाधिक सफल फिल्मों में शुमार की जाती है। उन्होंने मदर इंडिया से पहले भी इसी कहानी पर 1939 में औरत फिल्म का निर्माण किया था और वह इस फिल्म का नाम भी औरत ही रखना चाह रहे थे, लेकिन नरगिस के कहने पर उन्होंने इसका नाम मदर इंडिया रखा। फिल्म की सफलता से ये उनका सुझाव सही साबित हुआ। महान अदाकारा नरगिस को फिल्म इंडस्ट्री में लाने में महबूब खान की अहम भूमिका रही है। नरगिस

इस अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी, लेकिन महबूब खान को उनकी अभिनय क्षमता पर पूरा भरोसा था और वो उन्हें अपनी फिल्म में अभिनेत्री के रूप में काम देना चाहते थे। और उन्होंने काम देकर मदर इंडिया फिल्म बनाई और इसके लिए उन्हें अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। और इस मदर इंडिया फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए महबूब खान को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। अपनी फिल्मों से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाले महान फिल्मकार महबूब खान 28 मई 1964 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। आइए सुनते हैं महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म मदर इंडिया का ये गीत।

आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा। आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम समाप्त करने के अब अखिलेश सक्सेना को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को ही कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया।

0: नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज, राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई।

0: इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
1: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
2: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है, ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मॉनसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू, हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi chairs 51st Pragati meeting in New Delhi. Reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervour. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasised the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states, worth around 30,000 crore rupees. We have a report.
6: While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level. While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasized that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led multimodal development where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. Mr. Modi said the project should not be seen merely as a port, but as a national gateway connected through coastal shipping, inland waterways, dedicated freight corridors, high-speed rail connectivity, highways and airport linkages. While reviewing Ken-Betwa River interlinking project, the Prime Minister observed that Ken-Betwa project should serve as a model for other states to resolve interstate water issues through cooperation, timely clearances, technology-based monitoring and mission mode execution. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
5: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling, Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission Cycle Award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
7: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं.
8: Three major reforms have been introduced in this program today. First, the government will support the transportation cost incurred in moving food grains from large FCI warehouses in the states to fair price shops across different districts and divisions. Second, there was a need to increase the remuneration of fair price shop dealers, and a decision has been taken in this regard as well. Third, efforts will be made to modernize the public distribution system through the use of technology.
7: Public distribution system ko hum kaise modernize kar sakte.
5: Union Home Minister Amit Shah has directed authorities to strictly enforce zero tolerance policy towards illegal constructions within 15 kilometers of the country's borders and demolish all such structures that have come up over the years. Chairing a security review meeting in Bikaner, Mr. Shah assessed security related issues concerning the border districts of Rajasthan along the India-Pakistan border. The Home Ministry has assigned enhanced responsibility to the district magistrates to ensure legal and financial compliance of banking transactions in the border areas by all banks, verify big business establishments, examine their funding sources, track mule accounts and false companies, identify fake Aadhaar cards, and control cross-border smuggling. Union Home Minister Amit Shah will be on a visit to Gujarat today. During his visit, the minister is scheduled to inaugurate and lay the foundation stones of nearly a dozen public utility, education and rural infrastructure projects in Ahmedabad and Gandhinagar districts. We have a report from our correspondent.
9: Beginning his tour in Kalol Taluka in Gandhinagar, the minister will dedicate several public amenities developed under corporate social responsibility initiatives, including Jedwa Village Lake, three new library buildings and new primary school buildings. In the evening, Mr. Shah will attend programs in Ahmedabad to inaugurate a new hostel building at Mata Umiyadham complex in Sola and Bharat Mata Square at Bhimjipura. Later, the minister will also chair the high-level review meeting at Shahibagh Circuit House to assess the infrastructure readiness for the upcoming Olympic, Commonwealth and World Police and Fire Games. Aparna Khun, Akashwani News, Ahmedabad.
5: The Union Public Service Commission, UPSC, has for the first time released the provisional answer key for the Civil Services Preliminary Examination 2026. In a statement, the Commission said that the candidates who appeared for the examination can submit representations through the online question paper representation portal till 6 p.m. on the 31st of May. The candidates have to submit representations along with brief explanations and supporting documents from three authentic sources. The commission said the final answer key will be released only after declaration of the final result, in line with the existing practice. The Madhya Pradesh High Court has cancelled the anticipatory bail of retired district judge Giribala Singh in the Twisha Sharma death case. The Bhopal Sessions Court had granted her

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के साथ अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने हुक्काम से बैन-उल-अक़वामी सरहद से 15 किलोमीटर के दायरे में सभी गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम करने के लिए कहा है। भारत के वस्ती और शिमाली मशरकी हिस्सों में अगले दो दिन शदीद गर्मी व लू के हालात जारी रहने का इम्कान है। आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्यौहार जोशोखरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमल आवरी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे है। असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकत दारी और मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान तालमेल के जरिए ठोस नतायज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोवर्धन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में रफ्तार लाएं। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपए मालियत के रेलवेज, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने शहरी इलाकों, खासतौर पर शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने, बिजली की

0: तगनंदा ने आलमी नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कैरसलेन को शिकस्त दी और इस तरह उन्होंने 3 पॉइंट्स हासिल किए। इस जीत के बरक्स आलमी चैंपियन डीगो केश को एलरिस फिरोजिया ने शिकस्त का सामना करना पड़ा। सख्त मुकाबले में हुए ड्रॉ के बाद फाइनल गेम में उन्हें इस हार का सामना करना पड़ा। प्रगनंदा अब कुल 4.5 पॉइंट्स के साथ नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में दूसरे मकाम पर पहुंच गए हैं और वो सिर्फ फिरोजिया से पीछे हैं जो 7.5 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। अफ्रीका और अब अखबारात के आईने के साथ हैं नितिका।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के SIR अमल को दुरुस्त और आईनी करार दिया। मुल्क में शदीद गर्मी के दरमियान वजीर आजम की शहरियों से मोहतात रहने की अपील से मुतालिक खबर को भी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफे पर शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, शदीद गर्मी और हीट वेव के दरमियान वजीर आजम की शहरियों से तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। आज मुल्क में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाए जाने से मुतालिक खबर को तमाम अखबारों ने अव्वलियत के साथ शाये किया है। अखबार प्रताप की सुर्खी है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की हमवतनों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। मुल्क में अनाज की पैदावार में रिकॉर्ड तारीखी इजाफा, 3,765.63 लाख टन का तखमीना, इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद सोनीपत रूट पर चलेगी, ये खबर भी अखबारों में नुमाया है।
0: और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वजीर आजम ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के साथ अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने हुक्काम से बैन अलाक्वामी सरहद से 15 किलोमीटर के दायरे में सभी गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम करने के लिए कहा है। भारत के वस्ती और शुमाल मशरकी हिस्सों में अगले 2 दिन शदीद गर्मी व लू के हालात जारी रहने का इम्कान है। और आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्यौहार जोशो खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 8:45 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।
3: चुनिंदा शानदार हिट फिल्मी गीतों के साथ कीजिए अपने दिन की खुशगवार शुरुआत।
4: सुनिए 102.9 मॉर्निंग हिट्स सवेरे 8:45 से 9:15 तक
3: प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार।
5: 102.9 मॉर्निंग हिट्स आकाशवाणी रामपुर से।

अभी आपने सुना श्रेया घोषाल को फिल्म भूल भुलैया 3 में। बोली जी, अब सुनिए जोनीता गांधी और जुविन नौटियाल को फिल्म ड्रीम गर्ल 2 में।

अभी आपने सुना विशाल मिश्रा और अजीत सिंह को फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ में, और लीजिए अब सुनिए विशाल मिश्रा और नीति मोहन को फिल्म गदर 2 में।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: और अब सुनिए खान साहब की आवाज में फिल्म धुरंधर 2 का गीत।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए फहीम अब्दुल्ला और अरसलान की आवाज़ों में फिल्म सैयारा का गीत।

इसी गीत के साथ 102.9 मॉर्निंग हिट्स कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:15 होने को हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बागपत और फतेहपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव कुमार का।
1: प्रदेश सरकार द्वारा गांव के सरकारी स्कूलों में अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने की घोषणा के बाद बागपत में भी उत्साह का माहौल है। बीते दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में प्रत्येक विकास खंड से चयनित एक एक अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित करते हुए चेक वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रदेश के राज्य मंत्री केपी मलिक ने लाभार्थियों को चेक वितरित करते हुए कहा कि गांव के बच्चों को नई दिशा देने में अनुदेशकों की बड़ी भूमिका है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी बेहतर अवसर और आधुनिक शिक्षा वातावरण मिले, इसके लिए अब मानदेय बढ़ने से अनुदेशकों का मनोबल और मजबूत होगा, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और स्कूल के वातावरण पर दिखाई देगा। छपरौली विधायक डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में शिक्षक और अनुदेशक दोनों अहम कड़ी हैं। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के संबंध में सीडीओ अनिल कुमार ने विकास भवन स्थित अपने कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में मौजूद खंड विकास अधिकारियों, अधिशासी अधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सीडीओ ने कहा कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्ध प्राचीन एवं महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की पहचान कर उनकी जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का उद्देश्य जिले में उपलब्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं ज्ञानवर्धक पांडुलिपियों का संरक्षण, सूचीकरण एवं दस्तावेजीकरण करना है। फेम इंडिया द्वारा जारी बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 2026 सर्वेक्षण की प्रारंभिक सूची में देश के 100 उत्कृष्ट जिलाधिकारियों को स्थान दिया गया है। बागपत जनपद के जिलाधिकारी अस्मिता लाल का नाम भी इस सूची में शामिल हुआ है। यह सम्मान उन प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया है जिन्होंने जमीनी स्तर पर विकास, सुशासन, नवाचार एवं जनहित कार्यों के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किए हैं। डीएम अस्मिता लाल के नेतृत्व में जनपद में विभिन्न विकासात्मक, नवाचार एवं जन कल्याणकारी पहले प्रभारी रूप से संचालित की जा रही हैं। बढ़ती गर्मी एवं हीटवेव की चुनौती को देखते हुए विद्यालयों में कूल रूफिंग पहल लागू किए जाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य विद्यालयों में बच्चों को गर्मी से राहत प्रदान कराना, सुरक्षित एवं अनुकूल शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संस्थागत क्षमता विकसित करना है। जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बढ़ते तापमान को देखते हुए विद्यालय परिसरों में तापीय आराम सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि बच्चों के स्वास्थ्य, उपस्थिति एवं शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस पहल के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों की कंक्रीट छतों पर सफेद प्रावर्तक कोटिंग, विद्यालय परिसरों में ग्रीन शेड एवं बांस आधारित संरचनाएं, कक्षाओं के आसपास वृक्षारोपण तथा रूफ टॉप सोलर के साथ कूल रूफ तकनीक को प्रोत्साहित किया जाएगा। जनपद स्तर पर इस योजना में विशेष प्राथमिकता प्राथमिक विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों को दी जाएगी, जिससे छोटे बच्चों को भीषण गर्मी तथा हीट वेव के प्रभाव से बेहतर सुरक्षा मिल सके। जनपद में लोक निर्माण विभाग ने छोटी बड़ी सड़कों का कायाकल्प करने के लिए लगभग 677 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की है, जिसे स्वीकृति के लिए जल्द ही शासन को भेज दिया जाएगा। विधायकों, सांसद तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर सड़कों तथा पुलों के निर्माण की यह कार्य योजना तैयार की गई है। इन सड़कों के बनने से लाखों लोगों को गड्ढों से मुक्ति मिलेगी तथा आवागमन सुगम होगा। लोक निर्माण विभाग ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 में सड़कों के निर्माण, मरम्मत तथा पुलों के निर्माण की कार्य योजना तैयार की है। छोटी बड़ी 253 सड़कों का 564 किलोमीटर निर्माण एवं मरम्मत कार्य होगा। इनमें 138 सड़कों का नव निर्माण होगा तथा बाकी की मरम्मत होगी। इनके अलावा 12 सड़कों का चौड़ीकरण होगा। बागपत सहकारी चीनी मिल का 66 साल बाद विस्तारीकरण होने जा रहा है। इसके लिए निविदा मांगी गई है। 3,72,49,00,000 रुपए के बजट का प्रस्ताव सरकार पहले ही मंजूर कर चुकी है। विस्तारीकरण के बाद चीनी मिल की पेराई क्षमता 25 से बढ़कर 50,000 कुंतल प्रतिदिन हो जाएगी। इससे 40,000 किसानों को फायदा मिलेगा।
0: बागपत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीतेश श्रीवास्तव का।
2: फतेहपुर जिले में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी और सराहनीय पहल शुरू की है। लगातार घटते भूजल स्तर और अस्तित्व खो रहे तालाबों को बचाने के लिए जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने खुद मैदान में उतर के बीते दिनों अभियान की शुरुआत की। राया ब्लॉक के सिमोरी गांव में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने फावड़ा चलाकर तालाब खुदाई का शुभारंभ किया और लोगों को जल संरक्षण का संदेश दिया। प्रथम चरण में जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 25 तालाब और जनपद के कुल 300 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया गया है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि जनपद फतेहपुर में एक नई पहल शुरू की गई है जिसको मिशन 300 नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में करीब 25 तालाबों को चिन्हित करते हुए कब्जा मुक्त कराया जाएगा और तालाब का एक नया स्वरूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आकांक्षा रहती है कि ग्राम समाज की भूमि कब्जा मुक्त हो और उसको जल संचयन के लिए भी इस्तेमाल हो। आजकल जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें जल संरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। पुराने काल में तालाब जल संचयन का काम करते थे, उसमें यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डेवलपमेंट और रेवेन्यू विभाग का पूरा प्रयास रहेगा कि बारिश के पहले प्रत्येक ब्लॉक में 25 तालाबों को चिन्हित करते हुए सीमांकन कर खुदाई करवाएंगे।
3: आजकल जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें वाटर कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है और जिसमें हमारे जो तालाब हैं जो पौराणिक काल से वाटर कंजर्वेशन का काम करते हैं, वाटर को संचित करते हैं, तो उसमें ये अहम भूमिका निभाएंगे।
2: फतेहपुर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक द्वारा एक महीने में की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों के हौसले पस्त हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 15 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है, जिसका उद्देश्य यह है कि पुलिस इन अपराधियों पर निगरानी रखे। इसके साथ ही 6 अभियोग गैंगस्टर के तहत दर्ज कराया गया है, जिसमें 24 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बड़ा और सख्त प्रशासनिक कदम उठाते हुए जिले की पूरी एसओजी और इंटेलिजेंस यूनिट को लाइन हाजिर कर दिया है। एक ही आदेश में 15 पुलिस कर्मियों पर की गई इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार एसओजी और इंटेलिजेंस विंग में तैनात निरीक्षक, उप निरीक्षक और आरक्षी स्तर के कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से उनके वर्तमान कार्यस्थल से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित टीम की ओर से लगातार कोई प्रभावी इनपुट नहीं दिया जा रहा था, जिससे अपराध नियंत्रण और खुफिया तंत्र प्रभावित हो रहा था।
4: पिछले एक माह में अपराध में रोकथाम और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में काफी कुछ कार्रवाई किए हैं, जिसमें से हमने करीब 15 ऐसे अभ्यस्त अपराधी थे जिनकी हमने हिस्ट्री शीट खोली है। इसके साथ साथ अन्य बड़े बड़े वर्कआउट भी हुए हैं इस समय, और विशेषकर जो महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग किया करते थे या बाकी अन्य चोरियों के जो हमारे नकबजन काफी समय से नकबजनी कर रहे थे शहर के अन्य क्षेत्रों में या तहसीलों में, उन पर भी हमने कार्रवाई करी और इसी तरह से फतेहपुर पुलिस आगे भी कार्रवाई करती रही।
2: फतेहपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु

0: मांगलिक ने बड़ा और सख्त प्रशासनिक कदम उठाते हुए जिले की पूरी एसओजी और इंटेलिजेंस यूनिट को लाइन हाजिर कर दिया है। एक ही आदेश में 15 पुलिस कर्मियों पर की गई इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार एसओजी और इंटेलिजेंस विंग में तैनात निरीक्षक, उप निरीक्षक और आरक्षी स्तर के कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से उनके वर्तमान कार्यस्थल से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित टीम की ओर से लगातार कोई प्रभावी इनपुट नहीं दिया जा रहा था, जिससे अपराध नियंत्रण और खुफिया तंत्र प्रभावित हो रहा था। फतेहपुर जनपद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सब निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के तहत खागा स्थित रानी चंद प्रभा महाविद्यालय के प्रांगण में बीते दिनों सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राज्य मंडल के 4 जनपदों में से 184 जोड़ों का विवाह धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लाभार्थियों के विवाह उनके परंपराओं एवं रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराया गया। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 85,000 की सहायता राशि पंजीकृत श्रमिक के बैंक खाते में भुगतान की जाएगी। फतेहपुर जनपद की जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने संपूर्ण समाधान दिवस के पश्चात तहसील कार्यालय खागा का निरीक्षण किया। इस दौरान तहसील के बड़े बकायेदारों की फाइलों का निस्तारण एवं रखरखाव सही ढंग से करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपजिलाधिकारी से कहा कि समय समय पर नियमित तहसील के सभी पटलों का निरीक्षण करें। तहसीलदार कोर्ट के निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न वादों की फाइलों को देखा और कहा कि धारा 67 के जो भी पुराने वाद हैं उन्हें तत्काल निस्तारण कराएं एवं अन्य वादों का निस्तारण भी साथ समय कराएं। तहसील कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान पत्रावलियों के रखरखाव एवं साफ सफाई पर संतोष व्यक्त किया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 9:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग।

ये प्रेरक प्रसंग वीर सावरकर के जीवन से। जिस दिन एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हो रहा था, उस दिन हमारे देश के कुछ चाटुकार भी खुशियां मना रहे थे, समारोह आयोजित कर रहे थे, पर असली देश प्रेमियों ने ऐसे हर किसी आयोजन का बहिष्कार कर दिया। महान क्रांतिकारी वीर विनायक सावरकर उस समय किसी कार्यवश त्र्यंबकेश्वर गए हुए थे। उन्होंने ऐसा ही नजारा वहां भी देखा। सवेरे सवेरे शहर की दीवारों पर पोस्टर, जगह जगह झंडियां आदि देखकर उनका मन दुखी हो गया। एक समारोह स्थल पर पहुंचकर उन्होंने नौजवानों से कहा, धिक्कार है तुम्हें जो ऐसी खुशियां मना रहे हो। तुम लोग एक ऐसे राजा का अभिषेकोत्सव मना रहे हो जिसने तुम्हारी ही मातृभूमि को गुलाम बना रखा है। क्या तुम्हें ये अनुभव नहीं होता कि ये अभिषेकोत्सव नहीं बल्कि तुम्हारी गुलामी का उत्सव है? क्या तुम ये अनुभव नहीं करते कि विदेशी शासक के प्रति राजभक्ति का प्रदर्शन तुम्हारे अपने देश जाति के प्रति द्रोह की अभिव्यक्ति है? सावरकर के इस उल्हाने से आयोजक शर्म के मारे गड़कर रह गए। उन्होंने सावरकर से क्षमा मांगते हुए अपना डेरा डंडा समेट लिया। उन्हीं के जीवन की एक और घटना है कि ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें काले पानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया। करीब 40 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा थी। उनके गले में 40 वर्ष कारावास का पट्टा देखकर जेलर ने उनसे पूछा, क्या तुम 40 वर्ष की सजा काटने तक जीवित रह सकोगे? वीर सावरकर ने बिना विचलित हुए बेसाख्ता कहा, मैं तो जरूर जीवित रहूंगा, पर यह भी तय है कि ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें इतनी अवधि से पहले ही भारत से खत्म हो जाएंगी। और इतिहास के पन्ने गवाह हैं, वीर सावरकर की भविष्यवाणी अक्षरशः सही साबित हुई। उन्हीं के जीवन का एक और प्रसंग है। भारतीय युवकों का मनोबल गिराने और कर्जन वाइली की हत्या का शोक मनाने के लिए सन 1909 में 5 जुलाई को कैक्सटन हॉल में विशाल सभा का आयोजन किया गया था। अंग्रेज भी थे, हिंदुस्तानी भी थे। सभा में कर्जन वाइली की हत्या करने वाले ढींगरा की निंदा का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। सभी ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया, पर एक व्यक्ति ने उसका विरोध किया। इससे लोगों का चौंकना स्वाभाविक था, कुछ भड़क उठे। एक ने तो युवक को छड़ी भी जड़ दी, पर वो अजनबी भारतीय शांत था, संयत था, चेहरे पर दृढ़ता थी। कई लोगों ने उसका नाम जानना चाहा। उन्होंने अपना नाम वीर विनायक दामोदर सावरकर बताया। सावरकर का नाम सुनना था कि लोग घबराकर भागने लगे। सावरकर ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा, मेरे शरीर में जब तक रक्त की एक बूंद भी मौजूद है, मैं अपनी बात को बार बार दोहराता रहूंगा। ढींगरा का मुकदमा न्यायालय में है, जब तक मुकदमे का निर्णय नहीं हो जाता तब तक किसी का उस पर मत प्रस्तुत करना गैर कानूनी है। यद्यपि कानून के बड़े बड़े पंडितों ने सावरकर के मत का समर्थन किया, पर अंग्रेज सरकार क्रुद्ध हो उठी और वो सावरकर को गिरफ्तार करने पर विचार करने लगी। अध्यक्ष आगा खां भी सावरकर के व्यवहार से आश्चर्यचकित रह गए और सभा से उठकर चले गए। अत्यधिक शोरगुल और मारधाड़ में बिना प्रस्ताव पास किए ही सभा समाप्त हो गई। इस पूरी घटना की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इंडिया हाउस के एक सहयोगी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने विनायक पर हुए इस आक्रमण के विरोध में एक पत्र लंदन टाइम्स को लिखा और बहुत ही कड़े शब्दों में लिखा कि इस तरह का दमन भारत को विध्वंस के कगार की ओर ले जाएगा। इस तरह भविष्य में होने वाली हत्याओं की सूची और भी लंबी हो सकती है। ये बात सच भी निकली, लेकिन सावरकर बंदूक के स्थान पर कलम में अधिक विश्वास रखते थे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: समिन, आज के उर्दू प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान आयशा राहत आपकी खिदमत में हाजिर है। आदाब। हुक्मे खुदा जब हुआ होगा, हुक्मे खुदा जब हुआ होगा, लबैक का आलम क्या होगा। जान से प्यारा जो मांग लिया, जान से प्यारा जो मांग लिया, इसरार का आलम क्या होगा। जो लखते जिगर कुर्बान करे, जो लखते जिगर कुर्बान करे, ईमान का आलम क्या होगा। जी हाँ सामीन, ये जिक्र है अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह का, जिन्होंने हुक्मे खुदा पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ निछावर कर दिया। सामिन, हर साल ईद उल अज़हा का जो ये त्यौहार है, जो ये मौका है, हम बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ मनाते हैं। दरअसल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इसी कुर्बानी का नाम ईद उल अज़हा है, क्योंकि सामिन ये कुर्बानी सिर्फ नफ्स की नहीं बल्कि हर चीज़ की थी, हर उस चीज़ की थी जो आपको प्यारी थी। आपने अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो सामीन, आइए आज इस ख़ास मौजू को ही अपने गुफ्तगु का हम मौजू बनाते हैं और इस पर बात करते हैं अपने स्टूडियो में आए अपनी बेशकीमती राय के साथ। वो आज हमारे साथ हैं। सामीन, उनका हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं मोहतरमा तूबा कलीम, मोहतरमा मुमताज़ भी और मोहतरमा गौसिया भी। आप सभी मेहमानान का हमारे स्टूडियो में समीम कल्ब से खैर मकदम है। आइए अब शुरू करते हैं आज की ये गुफ्तगु, जिसका मौजू है सब्र तहम्मुल और ईद उल अज़हा। सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि सब्र कहाँ से शुरू हुआ? सब्र जो हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से जो शुरू हुआ तो इस्माईल अलैहिस्सलाम तक पहुँचा, इस पर मुमताज़ भी आप क्या कहेंगी?
2: मैं इस पर यही कहूँगी कि हज़रत हाजरा बहुत सब्र और तहम्मुल वाली मस्तूरात थीं और उन्होंने बहुत सब्र के साथ इसको बहुत अच्छे से देखा। जब अल्लाह का हुक्म हुआ हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह को कि आप कुर्बानी करें, आपने ख्वाब देखा, ख्वाब में देखा कि जो आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ है उसकी कुर्बानी करें, आप उठे और अपना ख्वाब बयान किया अपनी जोजा से और उनसे कहा, तो उन्होंने ऊँट ज़िबा किए, 100 ऊँट ज़िबा किए।
1: अच्छा।
2: फिर अगला दिन आया, अगली रात सोए, फिर ख्वाब में वही ख्वाब देखा।
1: अच्छा।
2: कि अपनी

0: ये सबसे ज्यादा करीब चीज ज़िबा करिए, तो आप अगले दिन उठे, उन्होंने 200 ऊंट ज़िबा किए।
1: अच्छा
0: फिर तीसरा दिन आया, जब तीसरा दिन आया फिर उन्होंने वही ख्वाब देखा, तो फिर आप समझ गए कि नहीं, अल्लाह का किसी और तरफ इशारा है। और उन्होंने अपनी जाकर बीवी से बोला कि देखो, मैंने आज ख्वाब में ऐसा देखा है, और अल्लाह का हुक्म है कि सबसे ज़्यादा मुझे क्या चीज़ प्यारी है उसे कुर्बान करना है। तो वो बहुत काबिल औरत थी, काबिल और समझदार थी, वो
1: जी,
0: फौरन समझ गई अल्लाह का इशारा उनकी औलाद है,
1: बेशक।
0: तो आप फौरन उसको लेकर चल दिए,
1: यानी आप जरा सा भी हिचकिचाए नहीं।
0: जरा नहीं खिचकिचाए। और उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल भी जरा सा भी ये नहीं सोचा कि ये मेरी औलाद है क्या,
1: ना
0: उन्होंने
1: हजरत
0: सोचा
1: हाजरा से कहा।
0: हजरत हाजरा ने कि नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं इसको पूरा करूंगी। और उन्होंने नहाया, तैयार किया,
1: यस,
0: खुशबू लगाई उनको
1: अच्छा
0: और कहा, इब्राहिम अब ले जाओ
1: अच्छा
0: इसको, ले जाओ। इब्राहिम जब चले तो शैतान ने बहकाया, शैतान ने बहकाने की कोशिश की, और हजरत हाजरा से भी कोशिश की कि नबी अल्लाह तुम्हारे बेटे को ज़िबा करने लेके जा रहे हैं, तो आपने कहा बेकसूर, नबी अल्लाह अपने बेटे को ज़िबा नहीं कर
1: नहीं कर
0: सकते,
1: सकते,
0: तू हट जा।
1: बेशक।
0: जैसे कि हदीस पाक का मफहूम है, और हम लोग हज पे जाते हैं तो हज पे कंकड़ियाँ मारते हैं, तो तीन कंकड़ियाँ आपने उसको शैतान को मारी और आप आगे बढ़ गए। फिर आगे चले तो फिर शैतान ने बहकाने की शुरू किया
1: साथ
0: हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कि देखो तुम्हारे अब्बा जान नबी ज़रूर हैं और वो आपको ज़िबा करने लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने भी उन्होंने
1: साथ
0: लाहौल पड़ी और
1: साथ
0: साथ दिया, और उन्होंने सात
1: साथ
0: कंकड़ियाँ
1: कंकड़ी
0: मारी और उसको छोड़ के आगे चले। जब आप
1: मारी।
0: लेकर जाते हैं और ज़िबा करने के लिए लेटाते हैं, तो उस वक्त ज़मीन कांप रहा था, फरिश्ते देख रहे थे कि ये क्या
1: जी
0: मंजर है, एक कुर्बानी का मंजर है, आज क्या होने वाला है। तो ऐसा समा था कि सब थर्रा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि अल्लाह को उनके बच्चे की कुर्बानी, उन्हें एक आजमाना था, उनकी
1: जी
0: एक आजमाइश
1: उनकी
0: थी।
1: आजमाइश थी,
0: जी
1: और वो
0: जी
1: आजमाइश वो उनके सब्र की थी,
0: जी सब्र की और तहमुल की
1: बोलिए
0: थी।
1: तहम्मुल की थी। जी
0: जी
1: बिल्कुल। वैसे अभी आपसे ही ये बात करेंगे कि ये जो सब्र है, ये कहने में तो बहुत आसान है,
0: बेशक
1: लेकिन इस पर चलना, इस पर अमल करना बहुत ही गिरान है और बहुत ही मुश्किल है। आप इस बारे में क्या कहेंगी?
2: जी, मैं इसके बारे में भी यही कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला जब तौफीक देता है तो बंदा सब्र करता है। इसी तरह अब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने भी सब्र का मुजाहिरा किया,
1: जी
2: और सब्र के मुजाहिरे के साथ साथ आपने अपने बच्चे को किस तरह मोहब्बत से तैयार किया और उनसे कहा कि बेटा, ये मेरे लिए अल्लाह का हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर दूँ।
1: जी
2: तो बेटे की देखिए फरमा बरदारी और उसके तहम्मुल मिजाजी, के कह रहा है कि अब्बा जान, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ है तो आप मुझे बिल्कुल ज़िबह कर
1: ज़िबा
2: दीजिए,
1: करें।
2: आप मुझे साबिरों में से पाएंगे,
1: बिल्कुल
2: जो आप कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से वो करिए, लेकिन थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा कि जब आप मुझे ज़िबह करने से पहले मेरे हाथ पैरों पर रस्सी बांध लीजिएगा और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा,
1: जी
2: ताकि ऐसा ना हो कि जब आप मुझे ज़िबाह करें और आप मुझे आंखों से पट्टी ना बंधी हुई हो और देखें तो आपको रहम आ जाए मेरे
1: रहम आ
2: ऊपर।
1: जाए।
2: तो इसलिए आप आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा और फिर घुटने के नीचे दबा के मुझे ज़िबाह करिएगा। तो ये था तहम्मुल एक बेटे का अपने बाप के लिए और अल्लाह के हुक्म के
1: हुक्म के
2: लिए।
1: लिए
2: तो ये थी तरबियत।
1: जी। और ये सब्र जो था, ये उनके बस का नहीं था, ये
2: बेशक
1: अल्लाह का दिया हुआ सब्र
2: बेशक
1: था,
2: बेशक
1: जो
2: बेशक अल्लाह
1: अल्लाह
2: के
1: जिसको चाहता है
2: अल्लाह
1: उसको नवाजता है और उसको
2: बेशक
1: अपनी तरफ खींचता है। ये
2: बेशक
1: सब अल्लाह की तरफ का था।
2: बिल्कुल हकीकत यही
1: जी।
2: है।
1: और वो सब्र जो उनका था, वो दुनिया से बिल्कुल अलग था,
2: बेशक
1: आम इंसान के बस की नहीं है।
2: बेशक
1: यही बात मैं तुबा साहिबा आपसे बात करूंगी कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहेंगी?
3: मुझे लगता है कि जहाँ तक सब्र की बात है, तो शायद हमें बीबी हाजरा से सबक
2: चाहिए
3: लेना चाहिए। उन्होंने जैसा सब्र किया और सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया, हमें भी वैसे ही सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए कि उन्होंने कैसे अपनी औलाद को कुर्बानी के लिए अल्लाह के आगे पेश किया। माना कि अल्लाह ताला उनकी सिर्फ एक आजमाइश ले रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ का मुजाहिरा, सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा दिखाया। तो शायद हमें भी वैसे ही उनकी ही राह पे चलना चाहिए जैसे कि बीबी हाजरा ने किया। इस्माईल अलैहि सलाम को कुर्बान किया जा रहा था, अल्लाह ताला ने बीबी हाजरा का सब्र और तहम्मुल कबूल किया और उसकी जगह एक दुम्बा लाकर
1: रख
3: रख
1: दिया।
3: दिया।
1: जी, खुदावंदे आलम का जो
3: जी
1: करम था वो
3: जी
1: उन पर
3: जी
1: खास था,
2: जी
1: वो सिर्फ एक

0: बम तैयार हुआ और कहा कि आवाज दो। तो उन्होंने कहा ऐलान करूं,
1: जी
0: क्या हुआ? तो यहाँ तो कोई नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि तुम अजान आवाज दो और फिर देना लबैक कहो, कहना मेरा ना काम है उनका और आपको सिर्फ आवाज लगानी है। उन्होंने आवाज लगाई और फिर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चारों कोने, कोई कोना कोना नहीं बचा जहाँ कि लबैक की आवाज ना ली है।
1: ना,
0: और
1: और
0: इसी
1: हर
0: तरीके
1: साल
0: से
1: ये सुन्नत अदा की
0: अदा
1: जाती
0: की
1: है
0: जाती
1: जी, जो एक फरीजा है हज का
0: जी जी जी
1: जी,
0: लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, चारों तरफ से आवाज़ गूंजती है,
1: गूंजती हैं
0: पत्थर पहाड़ हर तरफ से
1: जी
0: ये सारी चीज़ें गूंजती हैं। और ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा और पूरे शौक और ज़ोक से लोग
1: ता
0: ये नहीं
1: कयामत तक
0: सोचते
1: रहेगा
0: ता
1: जी
0: कयामत तक इसकी तरफ जाते हैं। तबकि ऐसा नहीं है, आज के दौर में कुर्बानी लोग माल की समझते हैं, माल खर्च करना, लेकिन ये हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह की ऐसी हज का वो है कि ऐसा जज्बा है लोगों का कि वो माल की तरफ नहीं देखते, वो इसी तरफ जाते हैं कि हमें जाना है, अल्लाह से
1: जाना है,
0: मुलाकात
1: अल्लाह
0: करना
1: से
0: है
1: मुलाकात करना
0: और
1: है
0: उस
1: जिंदगी
0: जगह को
1: में।
0: देखना
1: और
0: है।
1: इसीलिए जिंदगी में एक बार हज फर्ज किया गया
0: जी
1: है
0: जी
1: जी।
0: जी
1: गौसिया साहिबा क्या कहेंगी आप इस पर? हज के बारे में तो ये है कि अल्लाह ताला ने जब इब्राहिम खलीलुल्लाह को हुक्म दिया कि मेरा घर बनाओ
0: बेशक
1: और उस घर को बनाकर तैयार करो, तो अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया तो इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने दोनों ने मिलकर वो घर बनाना शुरू किया। इस्माइल ज़बीहुल्लाह ईंटें देते जाते थे और इब्राहिम खलीलुल्लाह उसे लगाते जाते
0: लगाते
1: थे,
0: जाते
1: लगाते
0: थे
1: जाते थे, लगाते जाते थे। तो जब घर बन के तैयार हुआ तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब लोगों को बुलाओ कि मेरे घर का तवाफ़
0: तवाफ
1: करें
0: करें।
1: और मेरे घर के हज के लिए आए। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा कि अल्लाह मेरी आवाज़ कहाँ तक जा सकती है, कितनी दूर पहुंच सकती है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम तुम्हें आवाज लगानी है, पहुंचाना मेरा
0: मेरा
1: काम
0: काम
1: है
0: यश है,
1: कि
0: तुम गम ना करो, तुम
1: मैं
0: गम ना
1: कहाँ
0: करो,
1: तक पहुंचाऊं, तुम ये गम ना
0: ना
1: करो
0: करो
1: कि मैं कहाँ तक
0: जहां तक
1: पहुंचाता हूं।
0: पहुंचाता है।
1: फिर ये हुआ कि उन्होंने आवाज लगाई, क्या लोगो हज के लिए आओ,
0: और
1: अल्लाह
0: लोग
1: के घर का तवाफ करो, अल्लाह ताला तुम्हें दावत देता है।
0: दावत देता है
1: तो अल्लाह ताला के हुक्म सुनकर कितने लोग आए, आना शुरू हुए, आना शुरू
0: और
1: हुए।
0: ये
1: इसी
0: सिलसिला शुरू
1: तरह
0: हो
1: ये
0: गया और
1: सिलसिला
0: ये
1: चला तो आज लाखों
0: करोड़ों लोग वहां
1: करोड़ों लोग
0: पहुंचते
1: हर
0: हैं
1: साल हज
0: जी,
1: करते हैं और इस तरह इसको अदा करते
0: अदा
1: हैं।
0: करते हैं। बेशक, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात कर कर, इतनी मालूमात हासिल कर कर। सामीन, ईद उल अज़हा, जिसे हम बड़ी ईद या बकरा ईद भी कहते हैं, ये दिन हमें हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहि सलाम की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है।
1: बेशक
0: बेशक, जो एक ख़ास पैगाम देता है, एक सबक देता है कि सब्र तहम्मुल, इसार कुर्बानी, परहेज़गारी, तकवा, ये इंसान के लिए इतनी ज़रूरी हैं कि इनके आगे कुछ भी आ जाए
1: बेशक
0: लेकिन इंसान को इनका दामन नहीं छोड़ना
1: नहीं छोड़ना
0: चाहिए।
1: चाहिए।
0: सामिन, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर सब कुछ कुर्बान कर दिया, इसी
1: बेशक
0: तरह हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी नफसानी ख्वाहिशात और
1: बेशक
0: हर बुरी आदत को छोड़ दें
1: बेशक
0: और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी और आने वाली नस्लों के लिए अच्छे तरीके से
1: मिसाल बने
0: इस दिन को आगे याद करें और
1: बेशक
0: मनाएं, क्योंकि ईद का दिन सिर्फ खुशियां ही नहीं बल्कि
1: बेशक
0: उस पर अमल करने का भी है। तो सामीन, आज की ये गुफ्तगू जो अभी हम कर रहे थे ईद उल अज़हा के मौके पर, सब्र तहम्मुल और ईद उल अज़हा अभी आपने समाप्त की, इसमें हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थी मोहतरमा मुमताज़ भी, मोहतरमा गौसिया भी और मोहतरमा तूबा कलीम। इसी के साथ अब आज की ये गुफ्तगू अब इख्तिताम पज़ीर होती है। सामिन, हज इस्लाम का पांचवा बुनियादी रुकन है जिसे अदा करना हर साहिबे माल पर फ़र्ज़ है, और जो साहिबे हैसियत होते हुए भी हज की सआदत हासिल ना करे वो खुदा के सामने जवाबदेह होगा। जी हाँ समिन, दुनिया भर से अकीदाने तौहीद एक ही लिबास में जमा होकर, एक ही सफ में खड़े होकर हज का रुकने आज़म अदा करते हैं और फरीज़े हज की सआदत हासिल करते हैं। मैदाने अराफात में मेहमानाने खुदा की लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से फर्श से अर्श तक फ़ज़ा गूंज रही होती है और आज़मीन यहाँ अपने रब के हुजूर रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं।

0: कोई और जानता है खुदा अजमते मुस्तफा, उनकी अजमत करेगा बयां क्या कोई। मेरे सरकार का देखे रुतबा कोई, दो जहां उनकी खातिर बनाए गए।
1: समीन, ईद का दिन खुशियां मनाने और बांटने का मुबारक दिन है। ये मुबारक दिन हमारे लिए

अल्लाह ताला का एक खास इनाम है जो हमें सब्र, नेकी और इबादत के बदले अता किया जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करने का दिन है और ईमान को ताज़ा करने का दिन है। इस कुर्बानी से खुश होकर अल्लाह ताला ने ये दिन रहती दुनिया तक के लिए मुकर्रर कर दिया ताकि हर साल हम सुन्नत इब्राहीम को याद करें और ताज़ा करें, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें और मनाएं। समीन, ईद का दिन सिर्फ एक दूसरे को मुबारकबाद देने का ही नहीं बल्कि उनके दुख दर्द में और उनके साथ खुशियां बांटने का है, उनके दुख और दर्द का एहसास करने का है और आपस में भाईचारे और अमन व अमान का है जो हम एक दूसरे के साथ मनाते हैं। समीन, आज के इस मुबारक दिन पर आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और आप सभी के लिए हमारी तरफ से और आकाशवाणी रामपुर की तरफ से ढेर सारा प्यार। इस दुआ के साथ कि आज का दिन और आने वाले तमाम दिन आपके लिए खुशियों का बाइस बने, तो अब दीजिए अपनी मेजबान आयशा राहत को रामपुर रेडियो मरकज से इजाजत।

अभी आप समाप्त फरमा रहे थे उर्दू प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से नशर किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

आपके अनुरोध पर कार्यक्रम में आप सभी को अखिलेश सक्सेना का नमस्कार, साथ ही हमारी और आकाशवाणी रामपुर की ओर से आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफ़ी मन्नाडे और साथियों की आवाज़ों में है और फिल्म का नाम है तीसरी आंख। इस गीत को पसंद किया आप सभी ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विर्क, जैतेक विर्क और मीका विर्क, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान और नावेद खान, सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशा अनवारसी, कोटवा नारायणपुर बावापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय, पुराना शहर बरेली से अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोय और स्वाति मौर्य, मिलक भूजपुर आशा मुरादाबाद से रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, शहजाद हुसैन, शहनाज भी और आसिया भी, मीरगंज से कल्लू मिस्त्री, गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, शमा खान, मिक्की खा, बुशरा खान और आसिम खान, जिला अस्पताल के पास रामपुर से गजन खान, शमा परवीन, शमशद अली आजम, गुलफ शाह, शहनाज, बाबू अंसारी, रजिया गफ्फार और हबीब अहमद इदरीसी।

आप सुन रहे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर अपने साथी अखिलेश सक्सेना के साथ। और लीजिए अब सुनिए अगला गीत एआर रहमान की आवाज़ में फिल्म जोधा अकबर से। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है एआर रहमान ने। इस गीत को पसंद किया आप सभी ने। अफजलपुर पट्टी तहसील सदर रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह।

विशाल, चमनलाल, रुमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, कविता और अंशु गौतम। ग्राम लोहारी, खंडवा, मध्य प्रदेश से राजेश कुमार धनजे, राहुल, विशाल, शीला और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड, मानपुर से विजय वैद, रानी, महिमा और नीतू वैद। कोली, नांदेड़, महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और साईं गायकवाड़। नलेश्वर नगर, नरवेल से पीएस गवाड़कर और विशाल नवाड़कर। छत्रपति, संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। लदावली, मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी और आदित्य कसाना। जसपुर, उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर। हिंगोली, महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के और उत्तम जमदाड़े। आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुराम ताबिर राही और मेराज जहां। वैष्णव कॉलोनी, सनावद, मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलगामा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। खुर्जा, यूपी से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा। पंजूसराय, संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी।

माई नेम इज़ खान। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत अदनान सामी, शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीत लिखा है निरंजन अयंगर ने और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी और मोहम्मद फरहान इदरीसी, मौला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर पीलीभीत से बिमल वर्मा, विनय वर्मा उनके परिवार के लोग, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी और साइमा नदीम, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और क्रिश, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक, रोशन, वंशीलाल, रेखा, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव, बस्तौर मुरादाबाद से अतर सिंह सैनी, मुन्नी, पवित्रा, अजय, आंचल, आकांक्षा, आकाश, विक्की, दक्ष, छवि, रुद्र, आयुषी, खमानी सिंह, मझोली से हीरावती देवी और उनके परिवार के लोग, राजद्वारा मीठा कुमार रामपुर से दीपक, अर्पित, अभय और रिया रस्तोगी, परिमल काजगंज से आवाद खान, नवील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खार और जमीर खान, मौला हलवाइयान शिरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया, शेव खान, साइमा खान, मुस्ताबा खान, अफिया खान, रऊफ और शहीद, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा, साथ में जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा, कालका से शिवचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए शेखर रवजियानी, कमाल खान, राजा हसन और श्रेय की आवाज़ों में फिल्म 30 मार खान का गीत। गीत लिखा अनविता दत्त ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने। इस गीत को पसंद किया आप सभी ने। पंडित नगला बाईपास मुरादाबाद से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुनिशा असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन, बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली, डावर तालाब लोनी से रज़ा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा, बोरखेड़ा उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नहाटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मूड़त, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन पलक, कर्ण, गीतू निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, मुरीगेट दिल्ली से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, बठिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, जमनी मोहल्ला इस्लामनगर से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान और इंशा खान, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर, ग्राम मुड़ेला पोस्ट लपरी जौनपुर यूपी से कुमारी चंदा, चांदनी कुमारी, आकाश कुमार, कन्हैयालाल और रीता देवी। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म 30 मार खान का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 10:30 हुए हैं। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
0: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
0: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
0: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
0: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा
2: जी। चलिए श्रोताओं, इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है
0: जी। दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
0: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है
2: जी। मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
0: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध

0: रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
1: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने।
0: जी
1: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
0: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
1: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है,
0: भला वो और क्या बात है?
1: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
0: जी ये बात तो है।
1: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
0: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
1: जी
0: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
1: जी
0: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
1: जी अजीत जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतीकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परम वीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुनें।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।
5: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
6: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
5: तो कोई बड़ा है घर में?
6: हाँ, घर पर माता जी है ना।
5: जी बुलाइए।
7: माँ।
3: हाँ।
7: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
3: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
5: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
3: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखूं तो।
7: माँ, माँ।
8: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
3: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
8: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखूं तो।
3: हाँ।
8: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
6: अरे वाह,
3: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
6: ऐसे नहीं,
7: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
8: अरे योगेंद्र,
3: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
6: हाँ माँ, और माँ इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
3: हाँ हाँ जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
6: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
2: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
1: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
2: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
1: अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
2: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
1: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
2: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
1: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
9: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
10: जी साहब, जी साहब।
9: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलो साथियों।
1: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगीं और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।

0: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हथगोलों से उन्होंने चार और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
1: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी, यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग
7: NCERT उमंग। अभी आपने सुना ये प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर।
8: पानी पानी
9: कहाँ से लाऊं? पानी
8: पानी
9: एक बूंद भी पानी नसीब पानी, नहीं
8: पानी।
9: कई दिन हो गए, पानी हलक से नहीं उतरा।
8: पानी, पानी।
10: ये तस्वीर है आने वाले कल की। अगर अब भी नहीं सोचा तो बहुत देर ना हो जाए। पानी बचाने के प्रयास आज से, अभी से शुरू कीजिए।
7: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर। धरोहर के अंतर्गत आज सुनिए रूपक पानी की तहरीर, वचन अली हैदर और सुरेंद्र कौर का है, प्रस्तुति असीम सक्सेना की है।
11: फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। पानी, मैं हूं पानी। मैं अगर आकाश से गिरता हूं तो बारिश बन जाता हूं। मैं अगर आकाश की ओर उठता हूं तो वाष्प बन जाता हूं। अगर आकाश से जमकर गिरता हूं ओले कहलाता हूं, और अगर गिरकर जम जाऊं तो बर्फ। मैं पानी। किसी फूल पर गिरता हूं तो ओस बन जाता हूं, अगर किसी फूल से निकलता हूं तो इत्र बन जाता हूं। कहीं इकट्ठा हो जाऊं झील का रूप ले लेता हूं, बहने लगूं तो नदी कहलाता हूं। सीमाओं में जब तक रहता हूं तब तक लोग मुझे जीवन कहते हैं, और अगर सीमाएं लांघ जाऊं तो प्रलय। जब आंख से गिरता हूं तो लोग मुझे आंसू कहते हैं, और किसी प्यासे के लिए मैं अमृत कहलाता हूं। हां, अमृत हूं मैं। जीवन देना मेरा काम है। मेरी एक एक बूंद में खुशियां हैं, जिंदगी है। आज मेरी तहरीर पानी की तहरीर।

0: साथियों, हम भोजन के बिना तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा और पानी के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर पानी इस धरती से खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। परिस्थितियां हमें बता रही हैं कि खतरे की घंटी बज चुकी है। अब ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि अगर जल संरक्षण की दिशा और दशा पर विचार नहीं किया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में हो सकता है। आंकड़े बताते हैं कि विश्व के 1.6 अरब लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी की इसी जंग को खत्म करने और जल संकट को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में रियो डी जेनेरियो में अपने अधिवेशन में 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। भारत में सदियों से जल संरक्षण की महत्ता रही है। हमारे देश में तो नदी और तालाब कुएं पूजनीय रहे हैं, लेकिन पिछले 100 वर्षों से कथित विकास के नाम पर हमारे भूजल और जल के स्रोतों को इतना दोहन किया गया, पीने के पानी की किल्लत होने लगी। देश दुनिया में हजारों छोटी नदियां विलुप्त हो गई हैं, तालाब और कुएं सूख चुके हैं, भूजल का स्तर गिरता जा रहा है। 2001 के आंकड़ों को अगर हम देखें तो आज की तस्वीर काफी गंभीर है। भारत में प्रति व्यक्ति भूमिगत जल की उपलब्धता 5120 लीटर हो गई है। 1991 में ये उपलब्धता 14180 लीटर थी। 1991 में ये आधे पर पहुंच गई है। अनुमान के मुताबिक 2025 तक प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन के हिसाब से 1951 की तुलना में केवल 25% भूमिगत जल ही शेष बचेगा। पानी के महत्व को हम सभी को समझना होगा, क्योंकि जल का कोई विकल्प नहीं। जल है तभी हमारा कल सुनिश्चित होगा। जल संरक्षण क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है और अलग अलग क्षेत्रों में क्या उपाय करें ताकि हम जन चेतना का संदेश भलीभांति दे सकें, इन्हीं कुछ प्रश्नों को लेकर हमारे सहयोगी अली हैदर खान पहुंचे सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार नलकूप खंड जनपद रामपुर के अधिशासी अभियंता श्री विकास दिवाकर के पास।
1: सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जल संरक्षण या वाटर कंजर्वेशन बेसिकली ये कंसेप्ट क्या है।
2: वाटर कंजर्वेशन बेसिकली क्या है, जल के प्रयोग को घटाना और उसका जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं फ्रेश वाटर, उनको साफ रखना और पानी की उपलब्धता को रखना, ताकि हम जैसे कृषि आदि के जो हम पानी यूज करते हैं उसको रिसाइकिल कर सकना। तो कंजर्वेशन बेसिकली वही, मान के चलिए आप सस्टेनेबल किसी चीज को सतत रखने के लिए, जो संसाधन अभी हमारे पास हैं वो हम आने वाली पीढ़ी को दे पाए, तो उसके लिए हमको किसी भी संसाधन का संरक्षण करना जरूरी हो। हमारी बॉडी भी 72% वाटर से बनी हुई है। पानी हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। आप शावर के बजाय नहाते वक्त बाल्टी का यूज कीजिए, उससे पानी बचेगा। फ्लश अनावश्यक ना कीजिए। सबमर्सिबल जैसे गाड़ी धोनी है आपको, तो आजकल तो 10 लीटर की बाल्टी में माइक्रो क्लॉथ आते हैं, माइक्रो फाइबर वाले, उससे साफ कीजिए। लोग सबमर्सिबल खोल करके पूरी गाड़ी धोते हैं, तो कम से कम उसमें 10 के बजाय 50-100 लीटर पानी खर्च होता है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है जिसको हम लोग भी फेस करते हैं, सिंचाई में 62% इरिगेशन के लिए यूज होता है, जिसमें बेसिकली ग्राउंड वाटर ज्यादा यूज होता है। बेसिक प्रॉब्लम आती है जहां हम ग्राउंड वाटर का यानी भूगर्भ जल का अति दोहन करें। प्रॉब्लम देखिए चेन्नई में क्या हो रहा है, अभी बेंगलोर में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, और MP में तो कुछ एक जगह पे पानी की रेशनिंग भी होती है कि भाई फला दिन फला कॉलोनी में इतना पानी आएगा। दिल्ली और हरियाणा के बीच में पानी को लेकर के समस्याएं हैं। तो ये समस्या उत्पन्न देखिए करने वाले हम ही हैं, बचाने वाले भी हम ही हैं, और ये किसी एक आदमी के कहने से नहीं होगा। एज अ सोसाइटी, सामाजिक तौर पे हम सबको इकट्ठे होके एक सेंसिटिविटी लानी पड़ेगी जिससे सही होगा। तो जैसे हम लोग देखते हैं, लोग मेंथा लगाते हैं जिसमें ज्यादा पानी यूज होता है, साठा धान लगाते हैं जिसमें ज्यादा पानी यूज होता है। ऐसे क्रॉप के बजाय अगर मल्टीपल क्रॉपिंग करें, जैसे गन्ने के साथ कुछ और भी लगा लिया, ये मतलब दो या तीन फसल एक साथ करें, तो ये है कि तीन अलग अलग फसलों में पानी

देने के बजाय एक ही बार में काम चले जाएगा। कैश क्रॉप अगर किसी को यूज करनी है तो साठा धान या मेथा के बजाय ऐसी क्रॉप रखें जिसमें पानी कम लगे। देखिए ग्राउंड वाटर में बेसिकली क्या होता है, आजकल जो है ट्यूबवेल्स के बोर होते हैं, अगर आपके आस पास नहर है तो नहर का यूज कीजिए, नहीं तो माइक्रो इरिगेशन के तहत स्प्रिंकलर्स होते हैं, वन ड्रॉप मोर क्रॉप। होता क्या है, किसान क्या करता है भाई, किसान को तो अपने खेत में पानी चाहिए, अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिक होकर के हम करें तो क्यारी बना करके करें तो पानी वेस्ट होने के बजाय जड़ों तक पहुंचेगा।

0: जल के महत्व को हमें समझना चाहिए, इसके बिना जीवन का कोई आनंद नहीं। धरती का बहुमूल्य साधन है जल। श्रोताओं, धरती का लगभग 3/4 भाग पानी से घिरा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो 3/4 पानी पीने योग्य नहीं है। 57% पानी खारा और 3% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से केवल 1% पानी ही हम अपने प्रयोग में ला सकते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जीव जंतु को पानी की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता रहती है, और बिना पानी के वे सब भी जीवित नहीं रह सकते। SDM मोनिका सिंह, जनपद रामपुर।
1: जल के संरक्षण को लेकर आपने, मैंने, हम सब ने अपने बचपन से एक लाइन ज़रूर सुनी है कि जल ही जीवन है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि पानी या जल ये धरती पर जीवन के लिए जिम्मेदार है और हम सभी के जीवन में प्राथमिक तत्व के रूप में कितना उपयोगी है। हमें अपने घर में या घर के बाहर पानी बचाने और इसके संरक्षण करने की जितनी भी कोशिश हो ज़रूर करनी चाहिए। हमारे रोज़ के जीवन में आवश्यकतानुसार पानी यूज़ करना, चाहे वो नहाते वक्त हो, चाहे वो ब्रश करते के समय हो, चाहे हम गार्डनिंग करते हैं उस समय हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे हम सबमर्सिबल चलाते हैं, खुला छोड़ देते हैं, मोटर ऑन करते हैं, पानी भर के बहता रहता है, इन सभी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पर ध्यान देना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। पानी को रिसाइकल करना या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम कुछ नई ये तकनीकें हम सुनते हैं आजकल फसलों में, इनफैक्ट कृषि होती है, कृषि में फसलों में भी जो पानी की खपत जिससे कम की जा सके, हम इस तरह की तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि इस तरह की उपकरणों का इस्तेमाल करें खेती करने में भी। पृथ्वी है हमारी, ये हम सब जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि 3/4 हिस्सा जो है पानी से घिरा हुआ है पृथ्वी का, लेकिन फिर भी इसमें पीने योग्य पानी सिर्फ मात्र 1% है, 1% है, जो कि बहुत बहुत कम है। और हम जिस तरह से ये जो डेली की लाइफ में इसको यूज़ करके इसको वेस्ट करते हैं, उससे ये पानी जो 1% का है ये और कम होता जा रहा है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे भी पानी जो निकलता है वो प्रदूषित होता है, उसको साफ़ करना, उसका ट्रीटमेंट होना वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बिकॉज़ इस वजह से पानी भी जो हमारे आसपास है वो बहुत गंदा भी हो रहा है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है जिस पर हम सोचें। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि पीने योग्य पानी वो दिन प्रतिदिन ख़त्म हो रहा है। पानी की कमी हम सब जानते हैं, पूरे विश्व में हम देख रहे हैं, देशों में हम देख रहे हैं, अपने देश के प्रदेशों में देख रहे हैं कि पानी की कमी देशों के बीच में लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा कर सकती है। साफ पानी हमारे स्वस्थ जीवन का आधार है, हमें बीमारियों से बचाता है, ये हम सब जानते हैं, और इसलिए आने वाली पीढ़ियों को हम तभी स्वस्थ एक जीवन दे पाएंगे जब हम आज जल के संरक्षण, पानी के संरक्षण को हम महत्व देंगे और उस दिशा में हम काम करेंगे कि हम खुद को, चाहे हमारे आसपास के लोगों को और हमारे आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन दे पाएं।

जल का भी एक नैसर्गिक चक्र है। सागरों और महासागरों का जल गर्म होकर वाष्प बनकर आकाश में चला जाता है, फिर बादल बनकर धरती पर बरस पड़ता है और फिर से नदियों और सागरों में मिल जाता है। और प्रकृति का ये अनोखा चक्र निरंतर यूं ही चलता रहता है। नगरीकरण और औद्योगिकरण की तीव्र गति और प्रदूषण के साथ साथ जनसंख्या की लगातार वृद्धि कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति के लिए पेयजल की व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती है। हर दिन औसतन 321 अरब गैलन पानी मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2050 तक ये उपलब्धता घटकर 22% ही बचेगी। इसमें 77 अरब गैलन पानी अकेले पृथ्वी के भीतर से ही निकाला जाता है। इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट सेंटर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 270 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरे एक साल में 30 दिन तक पानी के संकट से जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगले 3 दशक में पानी का उपभोग 1% की दर से ही बढ़ता है, तो दुनिया को बड़े संकट, जल संकट से गुजरना होगा। इसका सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन, नदी, झील और जलाशयों का पानी खत्म होना है। प्रतिवर्ष ये समस्या बढ़ ही रही है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते पृथ्वी की गर्मी भी बढ़ रही है। पानी की समस्या और अधिक विकराल रूप ले रही है। प्रशासनिक स्तर पर बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे जल की कमी संबंधी समस्या का निवारण हो सके।

0: हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जल संचय का ये अभियान जैसे स्वच्छता का अभियान चला था, जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए।
1: श्री जितेंद्र कुमार सैनी, सहायक अभियंता, नोडल अधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जनपद रामपुर।
2: तो अगर आप पानी को बिल्कुल पैसे की तरह इस्तेमाल करें, बिल्कुल मिनिमम तरीके से, जिससे आपका काम चल सके, तो हम लोग पहले तो पानी को बचाएंगे। लेकिन जिस तरह से पैसे को केवल बचाने से आपका भला नहीं होगा, पैसा कमाना भी पड़ता है। तो उसी तरीके से आपने, ठीक है, ग्राउंड से आप पानी निकाल रहे हैं, उसको आप कितना भी मितव्ययी तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन पानी खर्च तो हो रहा है ना, पानी का लेवल डाउन तो जाएगा,
3: बिल्कुल जाएगा।
2: तो हमें क्या करना पड़ेगा, पानी को ग्राउंड में रिचार्ज भी करना पड़ेगा। इस समय कह सकता हूँ कि कुछ ज्यादा आप पेड़ पौधे लगाएं, तो भी वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं। जहाँ कहीं भी नल है, हम वहाँ पर सोखता गड्ढे, यानी कि सोख पिट बना सकते, ताकि पानी उन गड्ढों में जाए, उन गड्ढों के थ्रू जंगल में वो रिचार्ज हो सके। जिन भवनों का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर से अधिक है, तो सरकार कहती है कि उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो बनाया ही जाए। तो हमें जो पानी हम लोग निकाल रहे हैं जमीन से, हम उसको कंजूसी से इस्तेमाल करें।
3: प्रशासनिक स्तर पर अपने जिले में वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड कौन से योजना या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं?
2: पहले तो अमृत सरोवर का निर्माण कर रहे हैं। जो पुराने तालाब होते हैं उनमें क्या होता है, तली में सिल्ट जमा हो जाती है, जिससे उनकी रिचार्जिंग कैपेसिटी घट जाती है। तो सरकार हर साल मनरेगा के थ्रू इनकी डिसिल्टिंग करवाती है। इससे किसानों को भी फायदा होता है, जो आसपास के खेतों में जो पानी इकट्ठा हो जाता है, फसल खराब हो, अगर तालाबों से पानी तेजी से रिचार्ज होगा तो वो ओवरफ्लड या वो नहीं हो, क्योंकि नदियों में भी सेम चीज होती है, जब उनकी तली में ये मिट्टी जम जाती है तो उनसे ही पानी का रिचार्ज जो है वो कम होता है। देखिए, बिल्कुल मैं यही कहूंगा, वैसे तो हमने जन सूचना के लिए भी, आप देखेंगे, आप कहीं भी जिले में चलाइए, हर जगह वॉल पेंटिंग के माध्यम से, या आर्ट ऑफ लिविंग एनजीओ है, नेहरू युवा केंद्र एनजीओ है, इवन यहाँ पर जो हमारे जैसे रेडिको इंडस्ट्री है, इन सबके सहयोग से भी कार्य भी हो रहा है, लोगों तक संदेश भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ मानकर चलना पड़ेगा कि केवल प्रशासन के सहारे जो है हम नहीं रह सकते। जब तक हम खुद अपने हैबिट्स को नहीं सुधारेंगे, पानी को कंजूसी से नहीं इस्तेमाल करेंगे, इवन दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि भाई आप पानी का जो है वो सही से इस्तेमाल करें, पानी को वेस्ट ना करें। और आजकल तो सोशल मीडिया से सभी लोग जुड़े हुए होते हैं, आपने भी कुछ दिन पहले देखा होगा कि बेंगलोर में पानी बिल्कुल खत्म हो गया था। आप इस समय दिल्ली का कोई भी न्यूज देख लीजिएगा, आपको दिल्ली में पानी की कितनी मारामारी आपको मालूम चल जाएगा। वह दिन दूर नहीं जब अगर हम नहीं सुधरे या हमने जल संरक्षण की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो कहीं अन्य शहरों की तरह यहाँ पर भी पानी की कमी ना हो।

0: साथियों, प्राचीन काल से ही जल की महत्ता को समझ लिया गया था और हमारे वैदिक साहित्यों में जल के स्रोत, जल के महत्व, जल की गुणवत्ता और जल के संरक्षण संबंधी बातें बार बार कही गई हैं। ऋग्वेद में नदी के किनारों का संरक्षण करने का संदेश दिया गया और अथर्ववेद में कहा गया कि यज्ञाग्नि से धूम्र बनता है और धूम्र से बादल बनते हैं, इन्हीं बादलों से वर्षा होती है और वर्षा का जल मानव सभ्यता के लिए वरदान है। छंद उपनिषद में कहा गया कि जल ही जीवन का मूल है, बिना जल के मानव जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती। प्राचीन काल से ही जल को तालाबों और झीलों में संरक्षित किया गया। कितना ही समय बीत गया पानी के महत्व को समझते समझाते, आज परिस्थितियां अच्छी नहीं है, चिंताजनक है। अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उत्तराखंड काशीपुर के श्री अजय कुमार आर्य जी, ये जुड़े हैं श्री गंगा भागीरथी पर्यावरण स्वच्छ अभियान संगठन से।
1: निरोगी रहने के लिए स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी की जरूरत है। यक्ष प्रश्न यह है कि यह कैसे संभव है। एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 67 शहर हमारे भारतीय हैं। 117 प्रदूषित देशों में हमारा स्थान पांचवा है। 20,000 टन प्लास्टिक कचरा हर रोज पैदा होता है। इसमें से 60% कचरा ही रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल किया जाता है। शेष 40% कचरा वर्ष भर में लगभग 37,96,000 टन कचरे के रूप में नगरों, कस्बों में कूड़े के ढेरों में परिवर्तित हो रहा है। यह नदी नालों से होता हुआ अंततः समुद्र में जा मिलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 2050 तक समुद्रों में मछलियों से अधिक प्लास्टिक होगा। तेजी से पिघल रहे ग्लेशियरों से बनी झीलों के टूटने के खतरा पैदा हो गया है। बिगड़ते मौसम चक्र और बढ़ते तापमान, खनन इत्यादि के चलते उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार की 176 नदियां सूख गई हैं। भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। ऐसा आशंका जताई जा रही है कि अगले 3 से 4 दशकों में जल स्तर 3 गुना तेजी से नीचे गिरेगा। आज हमारा देश महाजल संकट की ओर बढ़ता जा रहा है। इस समय हमारे देश के जलाशयों में सिर्फ 61.80 अरब घन मीटर पानी ही है, जो कि वास्तविक भंडारण क्षमता का मात्र 35% ही शेष है। पानी की कमी के चलते आज हिंसक जानवरों का मानव बस्तियों की ओर आना चिंता का विषय है। जल संरक्षण हमारे समय की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। स्कूल कॉलेजों में बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता है।

प्यासी धरती बड़े रोष से देख रही मानव की ओर, उसके व्यथित मन में निरंतर उभर रहा आक्रोश का शोर। सूख गए हैं मानस के जलाशय, सूख गए नैनों के कोर। प्यासी धरती बड़े रोष से देख रही मानव की ओर।

0: बड़ा अभियान बनाने के लिए अपने स्तर पर भी हमें काम करना होगा। स्थानीय निकाय, गैर सरकारी संगठन और संस्थाओं की भागीदारी अपेक्षित है। कुछ सामाजिक संस्थाएं इस दिशा में प्रयासरत हैं।
1: मैं इंजीनियर नलिन सिंह, हम राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा संगठन पिछले 19 वर्षों से चला रहे हैं निरंतर, और एक हमने विशेष कार्य किया जल संरक्षण के लिए। हम लोगों ने एक वाटर रिचार्जिंग पॉइंट का ईजाद किया। हमने और हमारी टीम ने एक वाटर रिचार्जिंग पॉइंट बनाया। इस वाटर रिचार्जिंग पॉइंट का जो मकसद था वो ये था कि जैसे कि जो नल सूख जाते हैं, ये हमने बहुत विशेष कार्य किया, इसको प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने मुझे राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत युवा सम्मान से भी सम्मानित किया, और मैंने उनको इस वाटर रिचार्जिंग पॉइंट के बारे में बताया, जो कि बहुत विशेष था और पूरे देश में इस तरीके से किसी ने वाटर रिचार्जिंग पॉइंट नहीं बनाया जल संरक्षण के लिए। तो हम इसमें करते क्या है कि जैसे कि हमारा कोई नल सूख जाता है, परंतु उसका पाइप ग्राउंड तक जा रहा होता है, तो बरसात के टाइम में हम उस नल की मशीन को हटा के उसमें फिल्टर लगा के और जो बहता हुआ पानी है उसको हम नीचे उस नल के जरिए, उस पाइप के जरिए जमीन में पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वो वाटर लेवल अप हो जाता है और वो नल पुनः सुचारू रूप से कार्य करने लगता है, और जो बारिश का पानी है उसका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि जल बहुत बड़ी आवश्यकता है। जल को बनाया नहीं जा सकता, सिर्फ बचाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम बहुतायत में जल का दुरुपयोग करेंगे, टंकियां खुली छोड़ देंगे, मोटर खुली छोड़ देंगे, ऊपर टैंक से वाटर फ्लो होगा, तो कहीं ना कहीं वाटर लेवल नीचे जाएगा और जो पानी हमें पहले 30 फुट 40 फुट पे मिल जाता था, वही पानी हमें ग्राउंड वाटर हमें 50 फीट 60 फीट 100 फीट 300 फीट पे भी जाके मिलना मुश्किल होता है। कहीं कहीं मैंने देखा कि 500 1000 फीट तक पानी नहीं मिलता। तो ये वाटर जो लेवल है वो घटने के कारण होता है। लोग कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है। फर्क इस चीज पे पड़ रहा है कि आपका वाटर लेवल नीचे जा रहा है और आपको बोरिंग गहरा करना पड़ रहा है। पहले आप 30 फुट 40 फीट तक जाते थे, अब आप 100 फीट 150 फीट 200 फीट तक जाते हैं। तो वाटर रिचार्जिंग पॉइंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए हमें जल संरक्षण की ओर सोचना होगा, क्योंकि जल का कोई विकल्प नहीं है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है।

0: हम जल को जब अमूल्य समझेंगे तभी उसका दुरुपयोग रोक पाएंगे। आज की गई जल की बचत हमारा भविष्य संवारेगी और आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित वातावरण में रहेंगी। जल से ही अस्तित्व हमारा, जल संरक्षण दायित्व हमारा। वर्षा के जल का करें संचयन, जल का करें पुनर्चक्रण। मूर्खता को छोड़े हम समस्या निवारण पर कर लें गौर। प्यासी धरती बड़े रोष से देख रही मानव की हो।
1: अभी आप सुन रहे थे रूपक, पानी की तहरीर। प्रस्तुत करता थे असीम सक्सेना। धरोहर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर 11:30 में हमारा अगला कार्यक्रम है मन भावन।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

मन भवन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार। श्रोताओं, मन भवन में आज बारी है आपकी भेजी गई शब्दावलियों की। सबसे पहले हमारे सभी श्रोताओं को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज की ये पहली शब्दावली हमारे श्रोता भेज रहे हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी। लिखते हैं, ईद यूं तो दो शब्दों का त्यौहार है, मगर बहुत सी यादें इसमें समाई हुई हैं। ईद उल जुहा यानी बकरा ईद, जिसमें अल्लाह की तरफ से एक फरमान जारी हुआ कि आप अपनी सबसे कीमती चीज़ जो अल्लाह ने तुम्हें अता की है, आज उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करो। जो चीज़ अल्लाह ने इंसान को अता की, अल्लाह ने उसे दिया है, वो उस चीज़ का मालिक है। वो आपसे मांग सकता है, अगर आप अपनी मर्ज़ी से नहीं दोगे तो वो आपसे खुद भी ले सकता है। वो हर चीज़ का मालिक है, उसे पूरा हक है, मगर वो अपने बंदों को आजमाता है। कुछ बंदे उसकी आजमाइश में कामयाब हो जाते हैं तो कुछ फेल। हमें चाहिए कि हम अपने परवरदिगार की हर बात पर सहमति दिखाएं। अल्लाह के ख़जाने में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे दिलों के भेदों को देखता है। उसके पास ना कुर्बानी वाला जानवर पहुंचता है, ना कोई और चीज़, उसके पास सिर्फ इसकी नीयत पहुंचती है। हमें हर हाल में अल्लाह का हर फैसला मान लेना चाहिए और अल्लाह के नाम पर कुर्बानी ज़रूर करनी चाहिए।

ये अगली शब्दावली हमें लिख भेजी है कुंज निवास राधा कुंज इज्जत नगर बरेली से बी के जौहरी विनोद अर्पित जौहरी साथ हैं शीला ठाकुर और शायना भी। लिखते हैं आज इंसान सब कुछ पाकर भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, किसी के पास ज्यादा है वो भी, किसी के पास कम है वो भी ढूंढ रहा है। कुछ लोग मन की शांति ढूंढ रहे हैं, कोई सुकून ढूंढ रहा है तो कोई धन संपदा, कोई अपनों को ढूंढ रहा है तो कोई गैरों को, कोई ईश्वर की प्राप्ति के लिए महीनों यात्रा करके ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर मन की शांति ढूंढ रहा है। आज हर इंसान किसी न किसी माया जाल में उलझा हुआ है। सुबह आँख खुलते ही दिन भर हमें क्या करना है ये दिमाग ढूंढने लगता है। कभी कभी हम उस मंजिल पर पहुंच भी जाते हैं पर कभी अधूरे ही हमारी मंजिल रह भी जाती है, पर मन में दृढ़ संकल्प कर हम कोई भी वस्तु ढूंढ सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है, बस हमारे सोचने का नजरिया सही होना चाहिए। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ढूंढता है, मन का सुकून, दिमाग में शांति, जीवन साथी में प्यार, रिश्तों में सच्चाई, पढ़ाई के बाद नौकरी। दिनचर्या इतनी भाग दौड़ भरी हो गई है कि ढूंढना एक अहम काम सा हो गया है। रोज सुबह सुबह हर घर की एक ही कहानी, चश्मा, रुमाल, घड़ी, गाड़ी की चाबी, ये दिनचर्या की चीज़ों को हम अक्सर ढूंढते हैं। कहते हैं कि ढूंढने से तो ईश्वर भी मिल जाते हैं, पर ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलती समय पर। कोई अपना खोया हुआ प्यार ढूंढ रहा है बड़ी शिद्दत से, तो कोई माझी किनारा ढूंढ रहा है। बहुत अच्छी बात लिखी है आपने। हम तो बस यही कहेंगे कि कोई भी चीज़ हो, मिलती ज़रूर है पर किस्मत सही होनी चाहिए, और समय से पहले कुछ नहीं मिलता इसलिए समय भी अनुकूल होना चाहिए। जब समय आपके अनुकूल ना हो, किस्मत आपका साथ ना दे रही हो, तब हिम्मत और सब्र यही हमारे काम आते हैं और एक ना एक दिन हमें मंजिल ज़रूर मिल जाती है।

ये अगली शब्दावली हमें लिख भेजी है इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल से, मोहन सिंह रावत जी ने लिखते हैं। हमारे आसपास ऐसा बहुत कुछ घटित होता रहता है जो हमारी रूटीन दिनचर्या का हिस्सा हो गया है, लेकिन सोचे तो ये सवाल परेशान करने वाला है कि बस खाली हो और उसमें चढ़ने वाले गिने चुने, फिर भी हमें इतनी जल्दी रहती है कि हम एक दूसरे को धकेलते हुए बस पर चढ़ते हैं। बिजली पानी के बिल, ट्रेन के टिकट की लाइन हो या फिर राशन की, पहले तो हमें लाइन पर खड़ा होना नागवार गुजरता है और फिर अपना रुतबा कायम रखने के लिए पहले पाने की लालसा में हम लाइन जैसे अनुशासित तरीके की सारी परंपराएं तोड़ने से नहीं चूकते। कहीं दो व्यक्ति झगड़ रहे होते हैं और हम तमाशबीन होते हैं, छोटी सी बात पर हम तिल का ताड़ बनाने से नहीं चूकते। बस में आगे की पैर रखने की जगह पर कोई सूटकेस रखते, आप इन महाशय से सूटकेस हटाने के लिए कहें और वो झगड़ा शुरू कर दें तो इसे आप क्या कहेंगे? ऐसा बहुत कुछ होता है जो शिष्टता की परिभाषा से परे है, लेकिन हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। कहा जाता है कि प्रेम की भाषा से सारी दुनिया को जीता जा सकता है। क्या हम इस कहावत को चरितार्थ नहीं कर सकते?

ये अगली शब्दावली हमें लिख भेजी है मुंबई से अनु बड़जात्या शमसुल खान और अनुराज बेनारा ने। लिखते हैं, हम आए दिन अपनी ज़रूरतों को काट रहे हैं और गैर ज़रूरत को सिर पर रखे ढो रहे हैं। हम अपनी ज़रूरतों को महत्वाकांक्षा के लिए काटते जा रहे हैं। हमारी महत्वाकांक्षा आज ना सही कल तो पूरी होगी, ये सोचकर चले जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है हमारी ये महत्वाकांक्षा हमें बार बार नहायती ज़रूरतों से दूर करती रहती है। आपने कभी दुकानदार को या भागदौड़ करने वाले व्यक्ति को भोजन करते हुए देखा है क्या? दुकानदार का भोजन भी भागदौड़ में चलता है, भोजन करते समय भी उसका चित्त दुकान में ही अटका रहता है। उसका शरीर थाली के पास है, मगर उसकी आत्मा तो दुकान पर है। भोजन के स्वाद का रहस्य उसे पता ही नहीं। जीवन में निरंतर सीखना ही हमें आगे बढ़ाता है, क्योंकि ज्ञान और अनुभव ही वो साधन है जो हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो जड़ हो जाता है और समय के साथ पिछड़ने लगता है। मर्यादा को लांघ कर चर्चित होना कोई बड़ी बात नहीं है, बात तो तब है जब संस्कारों की सीमा में रहकर लोगों के दिलों में जगह बनाई जाए। जीवन में किसी की निंदा ना करें, अगर मदद करने की इच्छा है तो मदद का हाथ बढ़ाएं, वरना हाथ जोड़कर शुभकामनाएं दें और उन्हें लक्ष्य की ओर जाने दें। बहुत सही कही बात कही है आपने, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने एक उद्देश्य के साथ अपना जीवन जी रहा है, तो ज़रूरी है कि हम ना तो किसी से उम्मीद रखें और ना ही किसी से जलन की भावना रखें। हर कोई अपने सफ़र में है, सबको अपना सफ़र अकेले ही तय करना है।

ये शब्दावली हमें मिली है ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी रईस दुल्हा अंसारी की। जब तुम कम उम्र की लड़की से शादी करो तो रिश्ता बना कर रखना। अपने से कम उम्र की लड़की से जब तुम शादी कर लो तो उसकी किसी भी बात पर गुस्सा मत करना, क्योंकि उसे अनुभव नहीं है अभी ज़िंदगी की। उसको आगे सीखना है और आपको समझने की ज़रूरत है। बर्दाश्त करना, हालात से लड़ना क्यों, क्योंकि ज़िंदगी बहुत प्यारी है और उसे दोनों को आगे मिलकर जीना है। ये एक और शब्दावली हमें मिली है, ये शब्दावली गंगा सिंह रावत जी ने हमें लिखकर भेजी है, रामपुर रोड हल्द्वानी नैनीताल से। खेल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जीवन की तीनों अवस्थाओं में बचपन सबसे निराला होता है और इस बचपन के खेल में खेल ही हमें सबसे ज़्यादा पसंद होता है। मुझे याद है बचपन में हम अपने भाइयों के साथ बगीचे में दिन भर खेल कूद करते रहते थे। बगीचे के फल तोड़ना, उन्हें खाना, पेड़ पर चढ़ना, सारा दिन यही शरारत करते थे। धीरे धीरे समय में बदलाव आया, खेत खलिहान बाग बगीचे लुप्त से होने लगे, उनकी जगह मकान उगाए और बच्चे

उन मकानों में कैद होकर रह गए जहां पहले बाग बगीचों में पकड़ो पकड़ो पकड़म पकड़ाई जैसे दौड़ने वाले खेल बच्चे खेलते थे, शोर मचाते थे, जोर जोर से आवाज करते थे। आज वही खेल, वही आवाजें जाने कहां गायब हो गई हैं। ये समय की रफ्तार है, और ये कहें कि समय की कुछ ऐसी फितरत होती है कि वो बदलता रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। बस हमें अच्छा समय लाने का इंतज़ार करना चाहिए। हम दुआ करते हैं कि फिर से वही समय हो जब बच्चों के होठों पर मुस्कान हो, उनके जीवन में खेल हो और ये आवाज़ें हों।

0: जो भी शब्दावलियाँ थीं हमने इस प्रोग्राम में शामिल की, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले प्रोग्राम में हमारे श्रोता अपनी शब्दावलियों के साथ इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो होता है, कभी नहीं होता है। कभी कभी हमारे पास बहुत सारी शब्दावली आती हैं और कभी कम होती हैं। बहरहाल आज हमारा और आपका साथ यहीं तक। रेनू तिवारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने यह घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्यूषा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में 2-2 मौतें हुई हैं, जबकि मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 1-1 मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देशभर में मनाया जा रहा है।

इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण

0: मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए एक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार शौर्य, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। ये नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल http://awards.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। याद रखें, नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम

गीत आपके नाम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार। श्रोताओं, प्रोग्राम की ये पहली पेशकश हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और अंकु राघव गुप्ता, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केशुदासु, अर्णवानंद और सत्यम आनंद, भोड़ागछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, कृष्णा पाक दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सी टी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय, गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान, जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, करताल हैदराबाद तेलंगाना से कनुगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन, विग्नेश, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्माला और ओम कुमार सुरलकर, ये श्रोता हैं गणेशपुर गंजनवारा से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, शायमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बीबी मुस्कान, गांव खारिया जिला सिरसा से प्रताप जिनागत, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु और बलदेव कटारिया, राजधानी रायपुर से नीतू मेघ, वंदना कुमार और बिट्टू कुमार, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, पटियाली रोड गंज टंडवारा से आमिर हुसैन, तैयबा शेख, फौजिया शेख, साहिल हुसैन, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और परिवार के सभी सदस्य, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय, रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज ऋषि शिंदे और कृष्णा गोटके, वीरम गांव गुरजात से अजीत भावसार, प्रमेला, प्रवीण सुल्ताना, खैल बाजार पानीपत से भावना मल्होत्रा, नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू, ग्राम महेशपुर के मुरादाबाद से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा, जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां, आप सभी के नाम ये पेशकश मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है दीदारे यार।

आकाशवाणी रामपुर से समय आप सुन रहे हैं गीत आपके नाम। प्रोग्राम की अगली पेशकश हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। गंज डंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी और अयाज अंसारी। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा आफरीन और शमीम अख्तर अंसारी। नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। चंद्रनगर सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली शेख, अल्लाह बख्श, अरविंद कुमार, संदीप मक्कड़ और एस के सरगम। बरेली कैंट चनहटी से विनेश कुमार, रागनी और मुस्कान। कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, ऋषिकेश, जीविका, सानिका दले। पुनावले पुणे से अजय सोनबने, करिश्मा, अभिका और विशाखा सोनबने। बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। गोविंदपुरा सीकर से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। जेल रोड रायगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बबलू और तरुण यादव। शिवाजी नगर बड़ोली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर, इंदिराबाई, छकुली ताई खोबरखेड़े। खांडवी बुल्डाणा से दीपाली रामधाड़े, स्वराज रामधाड़े। तिलोरी अमरावती से सुनेना, तनुज भोंडे। बटिंगखेड़ा से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, लोफर फातिमा। छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान और इशरत परवीन। गंज डंडवारा से आफ्ताब अंसारी, लुबना अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर और आलिया अंसारी। नूरमहल महसूल सीतामणि बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार। जय विहार नजफगढ़ से शाहरुख खान, फारूक, शबनम और शहनाज। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। आप सभी के लिए ये पेशकश मोहम्मद रफ़ी और बलवीर के साथ साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हंसते जख्म।

ही पड़ा ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान, मोहब्बत

आकाशवाणी रामपुर से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम। अगली पेशकश हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। ये श्रोता हैं यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी। ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईस दूल्हा अंसारी। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी। सुरेवाड़ी छत्रपति शंबाजी नगर से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, अंशुमन, बीबी, ओवी, प्राजक्ता, दत्त प्रसाद। ये श्रोता हैं गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और पूजा खटक। मऊनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, अनस सूफियान, अल्फिया सदफ, आयशा। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला, नसीम बेगम और शोएब खान। बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराव से डब्लू अंसारी, सोनम, अदीबा और दानिश अंसारी। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। करेली ज़िला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, माहिनूर अंसारी, शमीम अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी और परिवार के सभी सदस्य। काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से अजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित और कोकोरानी। रेलवे रोड गंडनवारा से मोहम्मद कलीम, भुवन प्रकाश, गौतम, दबीरुल हसन, शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज और सरिता गौतम। जिला मुरादाबाद गोविंदपुर से राज हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, रजिया नूरी, मोहम्मद अजलन। ये श्रोता है मोहन सिंह रावत, ममता रावत और वान्या, इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल से। जिला पटियाला से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंतकर। डोंडी लोहरा बलोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी और अलकबीर। टैगोर गार्डन दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर, स्वीटी छाबड़ा। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: और अब गीत आपके नाम कार्यक्रम की अगली पेशकश हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओम प्रकाश और साईं गायकवाड़। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान और उत्कर्ष चौहान। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा, सोनिया, विशाल सपकाल। बरवट बकाल बुरढाणा से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, सहानुभूति चक्रधर, आदेश कुमार काले और वसुधा वज्रसेन। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी। पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता जी। भूचक करणवीर हाउस भूचकैचिया बटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत। ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश। नई बस्ती गंजनवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी। ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश, निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा और वेद बाबू कठेरिया। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के और उत्तम जमदाड़े। दंतरेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगरेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद। गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल और जैनब मुजावर। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथियों को। फिल्म का नाम है मुगल-ए-आज़म।

और अब गीत आपके नाम कार्यक्रम की आखिरी पेशकश हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, कुंजेश, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छे लाल, बुल्की वाली और फलना झा, मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, फौजिया रोशनी, शाइना असद भाई, फिरोज़ा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी, अनारकली बाजार जगरौसी सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा, ये श्रोता हैं रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता, सपना, शिवी, सलोनी, ईशु बाबा और पिंटर बाबू, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, उच्च भट्टी से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या और अनु गोस्वामी, ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानन लेले, नवदीप येले, विश्वदीप और अशोक येले, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, लदावली जिला मुरादाबाद से माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान, मारहरा दरवाज़ा ईटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ।

عباسی، رشید واسی، سکندرہ راؤ سے مبین عباسی، عشرت پروین، اسٹیشن روڈ جمشید پور سے ہرجندر سنگھ بھاٹیا، اینجل بھاٹیا، پپی بھاٹیا اور سونو بھاٹیا، دنتریگی پھاٹا پارا سے ہی رمنی ورما، پارس منی ورما، پشپیندر منی ورما اور نوکھے لال ورما، ये श्रोता हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, मेघा मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बीबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा, जी एस रामगढ़िया, ये श्रोता हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बीबी गर्वी चौहान और हिमाक्ष, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता, ये श्रोता हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इखा इसहाक, लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी, यवतमाल से राहुल मनवर, ये श्रोता है सनावत से शेख मूसम हुसैन, अशोक वर्मा और राजकुमार बुड़ाना, ग्राम दूल्हापुर जिला मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, अनुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता राजवाड़े, धिया राजवाड़े, काव्या और मंजू राजवाड़े, ग्राम लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रिया, रागिनी, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर, सुनील पाठक, ये श्रोता हैं पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, प्रिंस एकांश, सुमित गवाणकर, ध्वनि गवाणकर, परी, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही सरिता गवाणकर, प्रणिता सिद्धांत गवाणकर और टुक टुक गवाणकर, आप सभी के नाम ये अंतिम आखिरी पेशकश आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है बरसात की रात।

हमारे कुछ अन्य श्रोता हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से, तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। ज़िला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद शिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया अलीशा सिद्दीकी।

बरसात की रात फिल्म की सी कव्वाली के साथ आज का गीत आपके नाम कार्यक्रम समाप्त करने की रेणु तिवारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत आपके नाम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। एक बजने वाला है कुछ ही पलों के समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। 1:15 पर धरती गति कार्यक्रम में आज कलाकार होंगी उषा अग्रवाल। आंचल ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 1:30 पर। इसमें आज परिचर्चा होगी ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका। प्रतिभागी होंगी श्रीमती लक्ष्मी नीरज, श्रीमती यमुना देवी। सुनहरा दौर ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे 90 के दशक के कुछ फिल्मी गीत।

आज हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे। सभा के आरंभ में संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा। शाम 5 बजे सुनेगा कार्यक्रम आज शाम। युववाणी युवा साथी सुनेंगे अपना ये कार्यक्रम 5:15 पर। 6:10 पर आप आनंद लेंगे चित्रपट संगीत का। 6:20 पर किसान साथियों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम होगा कृषि जगत। इसमें आज ईद उल अजहा पर चर्चा होगी। साथ ही किसान साथी सुनेंगे खेल पत्रिका खेत खलिहान। इसी कार्यक्रम में डॉक्टर सुनीता पंत के साथ भेंटवार्ता सुनेंगे, कुटीर उद्योग अपनाकर बने आत्मनिर्भर। विविधा कार्यक्रम होगा 7 बजे। इसमें आज अवतार सिंह के साथ भेंटवार्ता का विषय होगा, वर्तमान समय में सामाजिक संगठनों की भूमिका। भेंट करता होंगे असीम सक्सेना। सुगम संगीत में 7:31 पर सुनिएगा सखावत हुसैन की आवाज़ में कुछ गजलें। गीत गाता चलिए कार्यक्रम अब तक पहुंचेगा 8 बजे। 8:30 पर सबरज में आज कलाकार होंगी श्री बोनी भट्टाचार्य। नाटक अपने अपने दायरे प्रसारित होगा 10 बजे और 10:30 पर कार्यक्रम होगा गीतांजलि। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी रामपुर है। 1:10 हुआ चाहते हैं इलाकाई खबरें कुछ ही देर में लखनऊ केंद्र से रिले होंगी।

0: भारत मिशन के दूसरे मरहले को मोसर तरीके से नाफिज करने पर जोर दिया है। वजीर आजम ने कहा कि यह मुहिम सिर्फ बुनियादी ढांचे की तामीर तक महदूद न रहे बल्कि मामूल के मुताबिक निगरानी, अवामी शराकत दारी और मुख्तलिफ फरीकों के कोऑर्डिनेशन से ठोस नतायज यकीनी किए जाएं। जनाब मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं पेशरफत मीटिंग की सदारत की। वजीर आजम ने रियासतों से कचरा प्रोसेसिंग और गोबरधन प्लांटों समेत ठोस वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े प्रोजेक्टों को तेजी से मुकम्मल करने के अहकाम दिए। मीटिंग में रेलवे, बिजली और सड़क हलकों के तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए लागत वाले 7 खसूसी प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: काबीना की इक्तिसादी मामलों की कमेटी ने अवामी तकसीम निज़ाम के तहत राशन, नकलो हमल और मैनेजमेंट इमदादी स्कीम सार्थक पीडीएस को जारी रखने की इजाज़त दे दी है। इसके लिए मरकजी हुकूमत ने 25,530 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। नई दिल्ली में नामानिगारों से बातचीत में वजीर बराए इत्तला तो नशरियात अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह स्कीम अवामी तकसीम निज़ाम को जदीद बनाने में तआवुन करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आमद और रफ्त के लिए पहले मरहले में 110 इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी यकीनी करने के अहकाम दिए हैं। कल लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी मीटिंग में सदारत करते हुए वजीर आला ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गीडा हल्के में 500 इलेक्ट्रिक बसों को चलाए जाने की पेशरफत का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 15 जून से मुजव्वजा परवाज से कबल अवामी नकलो हमल निज़ाम को पूरी तरह मुस्तहकम किया जाए। मीटिंग में वजीर आला ने रियासत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से तौसी पर भी जोर दिया। ईद उल अजहा का त्यौहार आज पूरी रियासत में मजहबी जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार पैगंबर हजरत इब्राहिम के जरिए अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने के जज्बे की याद में मनाया जाता है। सुबह से ही इस मौके पर मसाजिदों में खसूसी नमाज का एहतमाम किया गया जिसके बाद कुर्बानी के फराइज अदा किए जा रहे हैं। दारुल हुकूमत लखनऊ समेत गोरखपुर, आगरा, कौशाम्बी, कानपुर शहर, मुजफ्फरनगर, जौनपुर, चित्रकूट, रायबरेली, बिजनौर, अयोध्या, आजमगढ़, इटावा, शामली, वाराणसी, मेरठ, जौनपुर, उन्नाव, अमरोहा, प्रयागराज और सहारनपुर में हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान नमाज अदा की गई। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने पहले ही सभी सीनियर पुलिस अफसरान को अहकाम जारी करके ये यकीनी करने को कहा है कि कोई नई रवायत शुरू न हो और न ही पाबंदी शुदा जानवरों की कुर्बानी दी जाए। दरियसना गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती आवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की है। रियासत में शदीद गर्मी और लू का सिलसिला कल भी जारी रहा। कई अजला में दर्ज हरारत 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। बांदा में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के कई हिस्सों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। हालांकि कल से लू से राहत का इम्कान जाहिर किया गया है। रियासत के कई हिस्सों में कल से आइंदा 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का कयास जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात ने कल मगरबी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ज्वालाबारी और बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। दरियास्ता मशरकी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने का इंतबाह जारी किया गया है। कुछ मकामात पर ज्वालाबारी के भी इम्कान है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 1:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम धरती गाती है। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं उषा अग्रवाल।

उषा अग्रवाल के स्वर में अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। धरती गाती है कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आंचल।

0: आंचल कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को गुलफिशा बहन की राम राम आदाब और हमारे सभी बहनों को ईद मुबारक। हमारी बहनें आज ईद की तैयारी में लागी हैंगी और जिस सारी तैयारी हमारी बहनें बहुत दिनन से कर रही हैं, बाज़ार जानो, नए कपड़े खरीदनो, चूड़ी कंगन, तमाम सारी ख़रीदारी हमारी बहनों ने करी ही, जाके अलावा घर को साफ़ सफाई, तकी गिलाफ और कुशन को व्यवस्था करी ही, फर्नीचर को सेट करनो, व्यवस्थित करनो, घर की सजावट, ये सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी बहनों को ही होत है। और जो सारी जिम्मेदारी हमारी बहनें बखूबी निभात हैं और जब कोनो त्यौहार आत है तो काम और भी बढ़ जात है। और बहनों ईद को त्यौहार साल में 3 बार आत है, ईद मिलादुन्नबी हमारे नबी को जन्म की खुशी में मनाओ जाते हैं और बहनों ईद उल फितर इस्लाम धर्म को एक ख़ास त्यौहार है, पूरे महीने रोज़े रखे जाते हैं और फितर को मतलब होते है रोज़ा यानी उपवास खोल लो। बहनों ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहो जाते हैं और आज है बहनों ईद उल अज़हा जो कि इस्लाम धर्म को प्रमुख और पवित्र त्यौहार है। जो त्यौहार बहनों हम सबको त्याग और समर्पण और इंसानियत को संदेश देते हैं और दिखावे से दूर रहन को संदेश देते हैं। काम ऐसो करो जावे कि दूसरन को या हमारे पड़ोसी को कोनो परेशानी ना हो, हमारे पड़ोसी राजी हैं तो जे भी हमारे लिए खुशी की ही बात हैगी। साथ ही साथ अपनी आय में से थोड़ो सो हिस्सा अगर हम निर्धन व्यक्ति को देते हैं बको ज़रूरत पूरी ही जात है तो जे भी हमारे लिए खुशी और रब की रजामंदी की बात होगी। तो बहनों तमाम सारी बातन को ख्याल रखें और बहनों ईद को दिन प्यार बांटनो, एक दूसरे को गले मिलनो, जो एक दूसरे से गले मिलनो जे बात को संदेश देते है कि आपस में अगर कोनो मन मुटाव है गियो तो बाको भूल कर ईश्वर को दे जिंदगी को अच्छे से और खुशी खुशी जी लें। तो बहनों बहन गुलफिशा की तरफ से भी आप सभी बहनों को ढेर सारो प्यार और साथ ही साथ ढेर सारी दुआएं और एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक हो। और अब आओ बहनों जान लें गावन के विकास के बारे में, जा में हमार बहनें भी तो योगदान दे रही हैं। तो आज जाई बारे में एक परिचर्चा हम लेकर आए हैं जिसको विषय है ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका। प्रतिभागी हैं श्रीमती लक्ष्मी, श्रीमती नीरज और श्रीमती यमुना देवी। और बहनों जा परिचर्चा को संचालन करो है हमारी बहन गुंजन ने। तो आओ बहनों सुनते हैं जय परिचर्चा।
1: बहनों आज हम आपसे परिचर्चा करेंगे ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका, क्या भूमिका रही है और आजकल महिलाएं क्या क्या ऐसे कामकाज कर रही हैं जिसमें कि ग्रामीण हमारे जो क्षेत्र है उसका विकास हो रहा है। आज इसी विषय में परिचर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में है श्रीमती माया, श्रीमती नीरज, यमुना देवी और श्रीमती लक्ष्मी। आप सभी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, हमारा जो गाँव है, उसमें हम महिलाओं का क्या योगदान है उसको विकास के क्षेत्र पर ले जाने के लिए। तो हम विकास की अगर हम बात करें तो विकास के क्षेत्र में हमारी शिक्षा है, पशुपालन है, हमारा घर परिवार है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे विकास के अंतर्गत आती हैं। और क्या बदलाव अब हमारे गांव में आए हैं पहले के मुकाबले, क्योंकि दिन ब दिन हमारे जो गांव हैं वो विकसित होते जा रहे हैं, लोगों की सोच बदली है, ऐसी ऐसी योजनाएं आई हैं जिससे हमारे जो गांव हैं वो विकसित होते जा रहे हैं, तो उसमें हम महिलाओं की क्या भूमिका है आज हम इस विषय पर आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे श्रीमती माया जी आपसे कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो महिलाएं हैं उनकी भूमिका है तो उसमें शिक्षा का क्या योगदान है, शिक्षा के क्षेत्र में वो क्या कर रही हैं?
2: शिक्षा के क्षेत्र में उसे बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और बहुत आगे बढ़ के अपना खुद का बिजनेस भी कर रही हैं कुछ लोग, कुछ महिलाएं सिलाई कर रही हैं, घर पे ही कोई काम मिल गया वो कर रही हैं और भी काम बहुत सारे कर रही हैं।
1: अच्छा, शिक्षा की जहाँ बात आपने करी, अभी भी गाँव में जो है कि बेटा और बेटी की पढ़ाई लिखाई में फर्क करो जा रहा है,
2: अब तो कम कर रहे हैं, पहले बहुत लोग करते थे लेकिन अब से बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं, लड़कों के मुकाबले ही हैं, अब तो उनसे भी आगे बढ़ने की सोच रही हैं।
1: अगर हम बात करें आपके गांव में शिक्षा की विकास को लेकर, तो आप पढ़ी लिखी हैं?
2: हाँ।
1: क्या किया हुआ है आपने?
2: हमने 12th किया है।
1: अच्छा, आपने इंटरमीडिएट
2: हाँ
1: किया हुआ
2: हाँ
1: है, तो आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो आपके घर परिवार में काम आ रही है?
2: हाँ
1: आपको क्या लगा कि मैं पढ़ लिख कर है कि इस तरीके से अच्छे से काम कर पा रही हूँ मैं?
2: मैं अपने घर पे बच्चे आते हैं, कोचिंग पढ़ाती हूँ उन्हें, फिर मैं सिलाई भी कर रही हूँ, मैं कॉस्मेटिक का काम और ये दुकान है, पार्लर की दुकान भी चलाती हूँ, और भी बहुत सारे काम है। जैसे घर का कोई भी है, कुछ सामान मंगाना है तो वो बच्चों को लिख के दे दिया तो वो बच्चे ला के दे रहे हैं, ऐसे ही सारा काम मैं कर लेती हूँ।
1: अच्छा, आपने देखा होगा कि परिवार में या आपके जो आपका परिवार है, बड़ा परिवार ही होगा आपका,
2: हाँ,
1: तो उसमें कुछ महिलाएं जो हैं पढ़ी लिखी होंगी और कुछ
2: कुछ
1: नहीं हैं
2: नहीं
1: ये,
2: है।
1: तो आपस में कुछ इस चीज़ को लेकर आप में मतभेद होता है कि नहीं, कोई या कुछ अंतर आपने पाया है?
2: हाँ, पढ़ी लिखी है तो वो अच्छे से हर काम को कर पाती है। जो हमारे घर में जैसे हमारी सास है, वो पढ़ी हुई नहीं है, तो उन्हें हम बताते हैं कि मम्मी ऐसे नहीं है, ये काम ऐसे करो। कुछ भी होता है, अगर हमें मंगाना भी होता है कुछ भी दुकान से, तो हम उन्हें लिख के दे देते हैं, वो हमें ला के देती हैं। फिर और भी सारे काम हम उन्हें कुछ, जैसे कोई कागज़ है अब उन्हें नहीं मिल रहा है, तो हम उन्हें के वो बताते हैं कि मम्मी ये कागज़ है, ये लेके जाओ, ये कहीं भी जाना होता है तो।
1: तो उन्हें भी लगता होगा कि परिवार में पढ़ी लिखी बहू आई है तो मेरा परिवार कहीं ना कहीं विकास की ओर है, या मेरा
2: हाँ
1: परिवार अब अच्छे से चलेगा। वहीं जब बात शिक्षा की आती है तो महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी होती है घर परिवार और बच्चों की,
2: बहुत सारी
1: तो
2: जिम्मेदारी होती
1: बच्चों
2: है।
1: के विकास में और जो घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं वो आज महिलाएं किस तरीके से निभा रही हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी लक्ष्मी जी।
3: बच्चों की भी देख रेख करनी पड़ती है, सुबह को नहा धो के बच्चों को तैयार करना पड़ता है, उन्हें नाश्ता देना पड़ता है, के स्कूल भेजना पड़ता है, उनका होमवर्क देखना पड़ता है, काम अच्छे से किया है नहीं किया है, खेल कूद तो ज्यादा नहीं रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, मैडम काम दे रही है ना दे रही है।
1: पहले बात आती है हम महिलाओं की जिम्मेदारियों को लेकर, तो हम महिलाओं की जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी बनती है हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, तो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें घर परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर, बच्चों की जिम्मेदारियों को लेकर किस तरीका का योगदान हमारी बहनों का रहा है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी नीरज जी।
4: मेरा नाम नीरज है, पढ़े लिखे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम गांव में रहने वाले लोग हैं, इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि हम बच्चों की दो चार कोचिंगें लगवा पा रहे हैं या फिर कहीं बाहर भेज पाएं। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम पढ़े लिखे हैं, अपने बच्चों पर खुद से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बच्चा हमारा स्कूल 2-3 घंटे रह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारे ही साथ वक्त बिताता है। हमारा कर्तव्य ये बनता है, सबसे पहले सुबह को उठते हैं, उठने के बाद में झाड़ू पोछा, अगर हमारे घर में पशुपालन हो रहा है तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी सास है या ससुर हैं, पति हैं, वो करें। सबसे पहला कर्तव्य हमारा ये होता है सुबह को उठ के झाड़ू लगाने के बाद में हम अपने सास ससुर की देखभाल करें और उसके बाद हम अपना पशुपालन भी देखें, फिर अपने बच्चे को उठा के उसके लिए तैयार करते हैं, नाश्ता बनाते हैं, ये सब काम हमारे जो हैं महिला के ऊपर आते हैं। तो अगर हम पढ़े हुए हैं देखो तो इतना कर सकते हैं बच्चे के लिए, जरूरी नहीं उसके पापा या चाचा कोई देखें, और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे को
1: ध्यान रख सकती है और घर को अच्छे से चला सकती है।
4: जी
1: देखो, घर को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है पैसा, पैसा कि हम आर्थिक रूप से सशक्त हों।
4: सही बात है।
1: तो महिलाएं जो हैं वो उनका आर्थिक विकास में क्या उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, मैं आपसे जानना चाहूंगी लक्ष्मी जी, कि हम जो महिलाएं हैं आज अपने व्यवसाय वगैरह शुरू करने के लिए या अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद करने के लिए गांव में महिलाएं ऐसे कौन कौन से काम कर रही हैं जिससे कि उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो सके?
3: सिलाई भी कर रही हैं, कढ़ाई भी कर रही हैं, फिर पशुओं को, जानवरों को पालती हैं, भैंस को उनका दूध भी बेच रही हैं, डेयरी भी चल रही है, इनसे भी अपने घर की व्यवस्था सुधर सकती है।
1: महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, नई नई तकनीकी आ गई हैं तो उनको अपनाए रही हैं का?
3: और अपना भी रही है।
1: अच्छा, आप खेती बाड़ी करने जाती हो ना,
3: हाँ, जाते हैं,
1: का काम करती हो आप खेती में?
3: टमाटर भी होते हैं, टमाटर तोड़ लेते हैं, मिर्चा भी होती हैं तो मिर्चा भी तोड़ लेते हैं, तो हमें तो
1: अच्छा।
3: हाथ बटाने चले जाते हैं।
1: अब बात आती है हमारी जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए, कि महिलाएं अपने आप को समझें, उनका क्या अधिकार है,
4: जी
1: क्या क्या उनको
4: क्या
1: काम करने हैं। पहले क्या था कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी तो वे अपने अधिकारों को ना
4: नहीं समझ
1: समझ
4: पा
1: पा
4: रही
1: रही
4: थी,
1: थी, है ना, कि हमारे लिए क्या
4: सही
1: कानून है
4: क्या
1: या
4: नहीं,
1: हमारा क्या हक है। वो अपने हक के लिए भी अपने
4: नहीं
1: घर
4: लड़ पा
1: में
4: रही थी,
1: अपने पति से या अपनी सास
4: सास
1: से या
4: ससुर से नहीं
1: परिवार
4: कर
1: में
4: पाती
1: उनसे
4: है।
1: भी कुछ बात नहीं कह पाती
4: जी
1: थी। तो आज कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। यमुना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप पुरानी पीढ़ी की हैं और नई पीढ़ियां भी आपके साथ हैं, आपने अपने परिवार में देखी भी हैं, बहुएं भी हैं, बेटियां भी हैं, तो इस सोच को लेकर महिलाएं क्या आगे अपना योगदान दे

0: नहीं है वो, क्या अपने अधिकार को जान पाई है?
1: पहले की महिलाएं बिचारी अनपढ़ थी तो मजबूर रहती थी। आज की महिला पढ़ी लिखी है, उसे सब कानून का सारी बात का पता है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ती है। पहले पति मारते थे, महिलाएं पीट के घर में बैठ गई। आज की महिला खड़ी हो जाए कि मेरा भी इस घर में कोई हक है, अपना हक जमाने के लिए वो तैयार है, क्योंकि वो शादी होने के बाद जब आ गई तो उस घर की सदस्य है,
0: बिल्कुल।
1: उसका भी हक बन जाए। जितना उस सास का है उतना हक मेरा भी है इस परिवार में। कई बात अपने परिवार चलाने की वो ये समझती हैं कि हम अपने बच्चों को खुद पढ़ाएंगे तो कोचिंग का पैसा बचेगा,
0: बिल्कुल।
1: वो हमारे काम में आएगा। जानवरों को पालेंगे तो हमारे घर में पैसे की उन्नति होगी, वो हमारे काम में आएगी, हमारे परिवार के काम में आएगी। सिलाई करेंगे तो छोटे मोटे कपड़े भी अपने बना लेंगे, और है ना जो पैसे मिलेंगे वो हमारे घर के काम में आएंगे।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: सब्जी है, नमक मिर्च है, सारे खर्चे घर के होते हैं। किताबें नहीं है बच्चों पे, तो अपने पास जो पैसे हैं बच्चों को मंगा दिया, घर का पैसा बचा लिया। इस तरह से अपने घर को चलाने के लिए और अपना अधिकार अपने हाथ में है। जो महिला पढ़ी लिखी है वो सब जानती है कि हमें किसका सम्मान करना है, किससे क्या बात कहनी है।
0: बिल्कुल। देखिए, धीरे धीरे हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वो विकास करता जा
1: विकास
0: रहा
1: की
0: है,
1: तरफ आ गया है।
0: महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही
1: हाँ
0: है। वहीं
1: जी
0: बात करते हैं हम सामुदायिक विकास को लेकर
1: जी
0: ग्रामीण महिलाओं के लिए,
1: जी
0: महिला आज घर में सीमित ना है, चूल्हा चौका तक हर
1: सही
0: क्षेत्र में अपनों विकास कर रही है।
1: सही
0: तो
1: बात
0: सामुदायिक अगर विकास की हम बात करें तो महिलाएं आज किस किस क्षेत्र में अपने विकास कर रही हैं और कदम बढ़ा रही हैं?
1: आज महिलाएं किसी चीज में पीछे नहीं है, हर महिला पढ़ी लिखी है। और गांव में क्या, शहर में क्या, सभी महिलाएं आंगनवाड़ी, शिक्षा मित्र, और अब तो रोजगार सेवक, कोई हमारी लड़की है लड़का नहीं है। कुछ बहना होती हैं कि सास ससुर कहने मारे दैया रे दैया, अच्छे स्कूल में ना पढ़ाऊंगी, लल्ली है लल्ला ना है। लेकिन बहनों जो दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि पहले के बुजुर्ग जो हैं वो अब भी कहते हैं गांव में जो चीजें अब भी हैं कि मतलब लड़का है लड़की नहीं है तो लड़की को थोड़ा पढ़ाओ, ज्यादा अच्छे स्कूल में मत कराओ, थोड़ा पीछे रहने दो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जब हम अपनी लड़की को पढ़ाएंगे तभी ये अच्छे स्कूल में पढ़ेगी, अगले चल के ये अच्छी गृहिणी भी बनेगी,
0: बिल्कुल
1: और
0: सही
1: जब
0: बात
1: अच्छी
0: है।
1: गृहिणी बनेगी तभी ये अच्छा परिवार, अच्छे परिवार से ही अच्छा गाँव बनता है।
0: बिल्कुल।
1: तो सबसे पहला हमारा यही कर्तव्य होगा कि हम लड़की लड़का में भेदभाव ना करें और पढ़ाई में जो है ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। देखो अभी कोई सी भी नौकरी सही, हर नौकरी जितनी लड़के को उतनी लड़की, टीचिंग लाइन में देख लो चाहे पुलिस में देख लो, कोई भी हर चीज में बराबर से ही है। और हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, ये ना देखें कि हमारी लड़की अब बड़ी हो गई है। जो पहले की बातें औरतें ध्यान देती हैं कि ना लड़की बड़ी हो गई, अच्छे स्कूल में मत पढ़ाओ, अकेले मत भेजो, ये सब बहनों छोड़ दे, ये फालतू की बातें हैं। मैं तो ज्यादा से ज्यादा यही कहना चाहूंगी, अगर लड़की है तो उस पर और ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि लड़की अपना घर भी देखती है। मतलब अगर समझदार है तो मायके में भी माँ की भी पीठ भारी रहती है, उससे पढ़ी लिखी है, उसके पापा घर से बाहर हैं, तो वो देखो बैंक का वही काम कर सकती है हमारा, और वैसे भी कोई काम आते हैं तो कर सकती है। और ससुराल में जब अच्छे घर में पहुंच जाएगी तो अपने बच्चों को भी देखेगी और पति की भी सहायता करेगी और खुद भी अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है।
0: माया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बता रही थी आप बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हैं और अपने दुकान भी कर रखी है आपने,
1: हाँ
0: इस तरीके से एक मतलब आप घर परिवार दोनों की जिम्मेदारियां निभा रही हैं, तो इस बीच में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं दोनों जिम्मेदारियां निभा रही हूँ या मुझे नहीं निभानी चाहिए, मेरा ही क्यों फर्ज बन रहा है परिवार के लिए, इस
1: नहीं
0: तरीके की सोच कभी आपके दिमाग में
1: नहीं
0: आई?
1: ऐसा कुछ भी नहीं आया, इससे मुझे ही फायदा होता है। जैसे मैं अपना खर्चा भी खुद से कर लेती हूँ, मुझे दूसरे पे अपने हस्बैंड पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है कि ये मुझे पैसे देंगे मैं तभी कुछ खरीदूंगी, या अगर कोई मेहमान आता है तो मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं खुद से उनका नाश्ता पानी जो भी खर्चा होता है वो सारा मैं खुद से कर लेती हूँ, घर पे कोई नहीं होता है तो ये सब मैं खुद पे निर्भर हूँ।
0: लक्ष्मी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप खेती बाड़ी से जुड़ी हैं, आपके परिवार में खेती बाड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं हम जो महिलाएं हैं खेती बाड़ी से जुड़े कुछ व्यवसाय हैं जिससे कि हमारे परिवार में आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत हो गए, हम ये सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे ना आए लेकिन ऐसा कोई काम कर लें जिससे कि हमारे परिवार में जो है हमारी आर्थिक स्थिति जो अच्छी ही जाए, हम 2-4 रुपया कमा सकें, तो ऐसे कोई काम आप करती हैं? ऐसे घर में आपने सब्जी उब्जी उगा ली या बाहर, जैसे तो घर को पैसा बच जाए, वो घर में सब्जी है आस पड़ोस में लोगों को दे दी बेचने के लिए, इस तरीका को कोई काम कर रही हो?
1: हाँ भैंस भी पलती है, उसका दूध भी बेचते हैं, खेती बाड़ी भी होती है, बरेहाना गोभी है सब कुछ,
0: अच्छा,
1: उसे भी बेच लेते हैं।
0: तो जैसे आपने बताया कि गोभी वगैरह है तो खेत में ही रही है, घर के आसपास ही उगा ली है?
1: ना खेत में है।
0: खेत में है तो व्यवसाय के
1: हाँ
0: रूप में अपना लिया आपने,
1: हाँ
0: तो बाकी बेचने के लिए आपका बाहर जाती हो या गांव
1: हाँ
0: में बिक
1: मंडी
0: जाती
1: ले
0: है?
1: जाते हैं उसे काट
0: मंडी
1: के।
0: ले
1: नहीं
0: जाते हैं। तो जैसे आपने कभी ये ना सोची कि मैं घर में बैठी हूँ, ऐसा कोई काम है आप

0: कर लो, जिससे कि पैसा की मदद ही जाए घर में।
1: खेत में भी चले जाते हैं करने के लिए, जैसा कि पैसा की बचत हो, मजदूर हैं बोलेंगे तो हम खुद कर लेते हैं, मिर्च टूटती, मिर्च तोड़ने, टमाटर तोड़ने।
0: यमुना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि नीरज जी ने कहा था कि अभी भी लोगों की सोच में बदलाव नहीं है गांव में, बेटा बेटी को लेकर ले लो या अंधविश्वास वाली बातों को ले लो, अभी हमारा गांव है पीछे है और लोग ये सोचते हैं कि बहू बेटी घर में आ गई है, घर में ही है कि बाहर हमें से नौकरी करने नहीं जाने देना है, कुछ ऐसी बातें अभी भी हमारे गाँव में चल रही है।
1: हाँ, ये बात चल रही है, जो पुरानी बड़ी बूढ़ी हैं वो ऐसी बात करती हैं, लेकिन पढ़ी लिखी महिलाएं वो समझा देती हैं कि
0: अच्छा,
1: जो ये बात पुरानी है छोड़ो, उस समय आमदनी नहीं थी, खर्च
0: क्या
1: भी नहीं थे।
0: तो आपको लगता है कि बदलाव आया है?
1: हाँ, बदलाव आ गया बहुत, अब की
0: अच्छा,
1: लड़कियां सब पढ़ लिख के अपने अपने काम पे हैं, कोई की खाली ना मिलेगी।
0: जैसे कि एक नई पीढ़ी और एक पुरानी पीढ़ी, दोनों के
1: जी
0: बीच में सामंजस्य बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: जी
0: आज नई पीढ़ी है वो अपने तरीके
1: अपने
0: से सोच
1: तरीके से
0: रही है,
1: जी,
0: मोबाइल है, टीवी
1: टीवी
0: है,
1: है।
0: हर तरीके की जो है उनको सूचनाएं हैं, जानकारी मिलती रहती है,
1: हाँ,
0: लेकिन जो पुराना बुजुर्ग है उनके पास अपने अनुभव
1: अनुभव
0: है,
1: है।
0: ठीक है, वो अपने अनुभव से हम चीजों को बताते हैं,
1: हाँ,
0: कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर आपस में दोनों में मतभेद होता
1: मतभेद
0: है,
1: हो जाता
0: तो
1: है।
0: इसका क्या कारण?
1: बुजुर्गों को जो है उनका खेती बाड़ी से लेके घर का कामकाज और उनका अनुभव जो है खुद का अनुभव किया हुआ है,
0: बिल्कुल।
1: और हम जो आज की नई पीढ़ी हैं तो हम फोन पे नेट पे सर्च कर रहे हैं किसी चीज को, हम देख रहे हैं कि फूल गोभी की सब्जी को कैसे करके बनाना है, लेकिन हमारी दादी और नानी जो हैं वो तुम्हें साफ साफ बता देंगी, लल्ली ऐसे करके ऐसे, लेकिन हम फोन पे ज्यादा विश्वास करते हैं।
0: बिल्कुल
1: लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी, मैं भी आज की हूँ, कि मतलब हम लोग फोन पे इतना विश्वास ना करें।
0: बिल्कुल सही।
1: देखो, जो एक अनुभवी चीज है वो चीज अलग ही है, बुजुर्गों की कुछ बातें बहुत अच्छी हैं हमें समझने के लिए, और जो चीजें नहीं आ रही हैं हमें लग रहा है ये गलत बता रहे हैं, तो हमें उन्हें ठीक से कि दादी देखो ऐसे करके ऐसे, ये बात सही नहीं है ये सही है, और ऐसे करके नहीं ऐसे करके करना चाहिए, लेकिन उन्हें जैसे हम सोचे ना हमारी बात दादी सही है तुम्हारी गलत है, तो ऐसे तो वो नहीं मानेंगे। इस चीज को मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे कुछ चीजें हैं हमको खुद सोचना चाहिए कहाँ सही है और कहाँ गलत है,
0: बिल्कुल, दोनों के बीच में, दोनों पीढ़ियों के बीच में
1: बीच
0: जो
1: में
0: सबसे ज्यादा हमें तालमेल मिटाना
1: आना
0: ज्यादा
1: बहुत
0: जरूरी
1: जरूरी
0: हो
1: है।
0: जाता है।
1: हाँ
0: देखो, जब बात आती है विकास की और ग्रामीण
1: जी
0: क्षेत्रों में, आजकल क्या हो गया कि हम जो माएं हैं अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर, उनके विकास को लेकर,
1: जी
0: उनके आगे भविष्य को लेकर बहुत चिंताएं करते हैं,
1: जी
0: और महिलाएं जैसे अब कोई भी बात हुई हम उस चीज को लेकर, हमारे जो बुजुर्ग हैं या
1: जी
0: हमारी सास है उस चीज को हम नहीं मानते हैं कि सास ने हमारी कुछ कहा हमसे
1: कहा
0: कि नहीं ये हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं, तो
1: अच्छा
0: आपको कि
1: नहीं,
0: नहीं, आजकल तो ऐसा ही चल रहा है,
1: नहीं
0: हम अपने
1: ऐसा
0: बच्चे
1: नहीं
0: के
1: कहना
0: लिए यही
1: चाहिए।
0: करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो सोच
1: हाँ,
0: है ना दोनों के बीच में मतभेद
1: बहुत
0: बिठा
1: गलत।
0: देती
1: हाँ,
0: है, और ये
1: मतभेद बिठा
0: बहुत
1: देती है,
0: ज्यादा जरूरी है,
1: बहुत
0: हमें उनके अनुभव को भी जानना
1: जानना
0: चाहिए
1: चाहिए,
0: और उनको हमें अपने साथ लेके चलना
1: लेकर
0: चाहिए,
1: चलना
0: है ना,
1: चाहिए।
0: उनको हमें अपनी आधुनिक जो तकनीकी है
1: जी
0: उससे जोड़ना चाहिए, ताकि
1: देखो,
0: जो है
1: अब मेरे घर में भी मेरी भी बेटी है, पसंद है, लेकिन वो जो चीजें गलत हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इन चीजों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, वो यही कहते हैं देखो बच्चे को तुम जितना हो सके हमारे घर में भैंसे पल रही हैं, दूध पिलाओ, देसी घी खिलाओ, दही खिलाओ, मट्ठा खिलाओ, लेकिन हम लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। अब आज की नई पीढ़ी क्या है, फोन में देख लिया कि भैया आज हमारे लिए पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, लेकिन ये चीजें बुजुर्गों की बहुत अच्छी हैं, वो खान पान पे जो पहले की चीजें हैं वो बहुत अच्छी चीजें हैं, जो हमारे बुजुर्ग बताएं खाने पीने पे ज्यादा से ज्यादा हम ध्यान दें।
0: यमुना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कृषि और पशुपालन को लेकर महिलाएं इसमें अपना क्या क्या योगदान कर रही हैं, ऐसे कौन कौन से काम है जो महिलाएं कर रही हैं?
1: पशुपालन तो एक महिला का ही काम है, पुरुष लोग हैं बेचारे घास काट के घर डाल देंगे, महिला
0: सही
1: घर पे
0: बात है।
1: रहती है, बार बार सानी करेगी, पानी पिलाएगी, नहलाएगी, दुएगी, सारे काम करेगी, तो इससे पुरुष का भी काम बचेगा और महिला भी काम में लगी रहेगी, और
0: बिल्कुल।
1: बचत भी, जब दूध देंगे तो महिला के भी काम में आएगा, पुरुष के, हमारे घर की स्थिति अच्छी होगी। खेती है, अगर हम खेत पे काम करने जा रहे हैं तो हम भी चले जाएंगे घर पे खाली हैं, क्योंकि एक मजदूरी की मजदूरी बचेगी, वो हमारा पैसा हमारे काम आएगा। सब्जी अगर है थोड़ी सी निकली तो गांव में भी बिक जाती है, लेने वाले आते ही हैं, उन्हें दे दी, वही हमारा पैसा हमें मिल गया, इसलिए हमारे घर की स्थिति भी संभलेगी और हम पैसे वाले भी बनेंगे।
0: कर
1: जब
0: रही है।
1: तक परिवार में सब लोग आज के जमाने में ना कमाएंगे तब तक घर की स्थिति नहीं सुधरेगी, क्योंकि
0: बिल्कुल,
1: खर्चे ज्यादा हैं।
0: अगर देखो हम अपने गांव को, अपने परिवार को या हम खुद अपना ही विकास
1: हाँ
0: करना चाहते हैं, तो सबसे
1: जी,
0: ज्यादा जरूरी है कि हम पढ़े लिखे
1: पढ़े
0: हों।
1: लिखे
0: अगर हम
1: होंगे
0: पढ़े लिखे हैं तो हम हर काम अच्छे से कर
1: कर
0: पाएंगे,
1: पाएंगे।
0: सोच समझने की हमारे अंदर क्षमता अच्छी होगी और हर चीज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, तो जरूरी यही है कि हम पढ़े लिखे और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाए लिखाए, और हमारी जो पुरानी पीढ़ी है कोशिश करें उनके साथ अच्छे से हम तालमेल मिलाकर चले, हम उनको पीछे ना छोड़ें, क्योंकि उनके अपने अनुभव है, पढ़ाई एक जगह है और उनके अपने अनुभव है, अगर दोनों मिल जाए तो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र बिल्कुल हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है या हमारा घर परिवार है वो अच्छे से विकास करेगा। आप लोग हमारे स्टूडियो में आई और ग्रामीण महिलाओं की हमारे जो विकास है ग्रामीण क्षेत्र में उसमें क्या उनकी भूमिका है इस बारे में आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका जा विषय पर बहनों अभी आपने परिचर्चा सुनी। प्रतिभागी हैं श्रीमती लक्ष्मी, श्रीमती नीरज और श्रीमती यमुना देवी, और बहनों जा परिचर्चा को संचालन कर रही हैं बहन गुंजन। जानकारी तो हुई बहनों, और अब कर लेते हैं खान पान, चलते हैं रसोई की ओर। ईद को दिन है, सिवैयाँ तो तैयार कर ली होंगी, और अगर बात करें दही बड़े की तो हमारे कुछ बहनें दही बड़े बोलते हैं और कुछ बहनें कहते हैं दही भल्ले। मजेदार दही बड़े, लेकिन मैनो दही बड़े वही मजेदार लागत हैं जो मुलायम हुए। सबसे पहले सामग्री जान ले, दही बड़े बनाने के लिए काका सामग्री लंगी। दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले दाल भिगोवे, उड़द को दाल के या मूंग की दाल के दही बड़े बनाते हैं, लेकिन आज हम दोनों दालन को मिलाए के दही बड़े बनाने की विधि बताएंगे, क्योंकि ये खान में थोड़ो हल्को और सुपाच्य रहते हैं। तो सबसे पहले सामग्री इकट्ठा कर लें। मुलायम मजेदार दही बड़े बनाने के लिए हमें काका लेनो होएगो। सामग्री जान लें, मूंग दाल आधा कप, उड़द दाल आधा कप, बारीक कटो 1 इंच अदरक को टुकड़ा, बारीक कटो 2 हरी मिर्च। ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं, और नमक 1 छोटा चम्मच, स्वाद अनुसार भी नमक ले सकते हैं। तलन के लिए मैंने तेल लेंगी। दही बड़े हम खूब तलकर भी बना सकते हैं और कम तेल में भी बनाए सकते हैं। और बहनों दही बड़े बनाने के लिए दही तैयार करने के लिए सामग्री लेंगी। ताजा दही 2 कप, शक्कर का बूरा 2 छोटे चम्मच, काला नमक 1/4 छोटा चम्मच। जाके अलावा बहनों दही बड़े के लिए मसालन भी लेंगी, जो कि आप दही बड़े में मिलाएंगी या ऊपर से डालेंगी। तो जो भी जान लें, कुटो लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, चाट मसालो 1 छोटा चम्मच, पुदीना पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच, और बहनों भुनो हुओ दरदरो पिसो जीरा 1 छोटा चम्मच। जाके अलावा बहनों गरम पानी में डालन के लें 1 छोटा चम्मच नमक और चुटकी भर हींग लेंगी। तो बहनों दही बड़े बनाने के लिए सामग्री हो गई, और अब आओ बहनों दही बड़े बनाने की विधि समझ लेते हैं। देखो बहनों हमने सब सामग्री इकट्ठा कर ली है, उका है ना बहनों उपयोग करने वाली सामग्री जब आप एक साथ रख लेते हैं तो पकवान बनाते समय इधर उधर ना जानो पड़ता है, और आप तसल्ली के संग स्वादिष्ट पकवान तैयार कर लेते हैं। तो सामग्री तो इकट्ठा हो गई, और अब आओ बहनों दही बड़े तैयार करने को विधि भी समझ लें। और यहाँ पर हम खानवारे तेल में तल कर ही बड़े तैयार करेंगे। तो सबसे पहले बहनों बिनो छिक्कल वाली 1/2 कप मूंग दाल और 1/2 कप उड़द दाल लेंगी, अच्छे से धोवंगी और फिर 3-4 घंटे के लिए भिगोए रखें। फिर जब पानी निकाल दें, एक बात यह है कि आप चाहें तो ये दालन को अलग अलग भिगोवे या फिर इन दालन को मिला के भी भिगो सकते हैं। और अब ये दालन को मिक्सी में हल्को दरदरा पीस लें। पीसत समय बहनों 4 चाय चम्मच पानी को इस्तेमाल करें, और हाँ बहनों ये ध्यान रखें कि पीसत समय दाल मैदा जैसो बारीक ना होए, दाल ना तो एकदम मोटी होए और ना ही बिल्कुल मैदा जैसो बारीक। ध्यान रहे बहनों दाल दरदरी ही पीसन है, और जाई के बाद 8-10 मिनट तक फेट लें। बहनों अच्छे से जब आप दाल फेटेंगी तो उतनो ही नरम मुलायम दही बड़े तैयार होंगे। दाल अगर ज्यादा गाढ़ी लाग रही तो आप 1 चाय को चम्मच और पानी डालकर फेट सकते हैं। बहनों जब आप दाल को ज्यादा अच्छे से फेटेंगी तो दाल सफेद लगेगी और मात्रा में भी ज्यादा लगेगी। फिर 1 कटोरी में पानी भरकर जब जामे थोड़ो सो दाल डालेंगी, यानी कि 1 चम्मच दाल डालेंगी, तो जे पानी में तैरन लगेगी, जाको मतलब है दाल अब तैयार है। अब जा में 1 इंच बारीक कटो अदरक और 1 चाय को चम्मच नमक डालें। बहनों नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक कटी हरी मिर्च दाल में अच्छे से मिलावें और अब तेल गरम कर लें और हाथ को उंगलियां पानी में भिगोवें। अब आप धीमी आंच कर लें, दाल के छोटे छोटे गोले बनावें और जा गोलन को तेल में डालें और अब गोलन को धीमी आंच में अलट पलट कर तेज भूरो होन तक पकावें और जब ये दही बड़े अच्छे से अंदर से सिक जावें तो जा को तेल से निकाल लें। और बहनों अब आप पानी को हल्को सो गरम कर लें, जा में 1 छोटा चम्मच नमक और चुटकी भर हींग डाल के अच्छे से घोल लें और फिर दही बड़ों को जा पानी में भिगोए दें और प्लेट से ढाकें और ऊपर प्लेट पर थोड़ो वजन रख दें ताकि दही बड़े अच्छे से पानी में डूब जावे और साथ ही साथ 2 कप ताजा दही लेके 2 छोटे चम्मच शक्कर और 1/4 चम्मच पिसो वो कालो नमक डाल के थोड़ो मथ लें, चिकनो कर लें। और बहनों अब है मसालन को इस्तेमाल करनो। जो मात्रा सामग्री आपने मसालन में ली है बेऊ ले लें। 1/2 छोटो चम्मच पुदीना पाउडर, 1 छोटो चम्मच चाट मसाला, 1 छोटो चम्मच कुटो लाल मिर्च, 1 छोटो चम्मच भुनो वो पिसा जीरा, 1 छोटो चम्मच काला नमक ले लेंगी और साथ ही साथ बहनों लाल चटनी और हरी चटनी भी बना के रख लें। इतनो मेहनत के बाद बहनों अब खान की बारी आनवारी है, क्योंकि अब लो वे जो पानी में बड़े भिगोए हैं वे भी फूल कर तैयार रह गए हैं। अब दही बड़े को हल्के से दबाई के निचोड़ लें और फिर प्लेट में रखें और जाके ऊपर तैयार दही डालें, थोड़ी सी लाल मीठी चटनी और थोड़ी सी हरा धनिया को चटनी और अब ऊपर से थोड़ो थोड़ो सभी मसाले, भुना जीरा, काला नमक, लाल मिर्च, थोड़ो सो पुदीना पाउडर और थोड़ो सो चाट मसाला डालें और अब नरम मुलायम स्वादिष्ट दही बड़े खान के लिए तैयार हैं। खुद भी खावें और मेहमानन को भी खवावें। तो बहनों खात पीत रहें, व्यंजन को आनंद लेते रहें और त्योहार अच्छे से मनावें। और अब आओ बहनों सुनते हैं जे लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आंचल, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 2 बजने वाले हैं कुछ ही पलों में, अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

0: 80 in various parts of the country today. People offered prayers in Eidgahs and mosques this morning. Later, they exchanged Eid greetings. Eid al-Adha is celebrated to commemorate the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his only son in obedience of God's command. In the national capital, main congregations were held at Jama Masjid, Fatehpuri Mosque and Shahi Eidgah. Reports of Eid prayer congregations are also pouring in from other parts of the country. Elaborate security arrangements have been made for the occasion. In West Bengal, lakhs of devotees offering prayers at mosques and Eidgahs. Our correspondent has the details.
1: In Kolkata, the Eid prayers were held at the Brigade Parade Ground instead of the traditional Red Road. At the historic Nakhoda Mosque, prayers were conducted in two sessions, ensuring roads remained clear. The state government has strictly enforced the old Calcutta High Court directive, urging peace and discipline during the festivities. Millions gathered at more than 5,000 mosques and prayer grounds in Murshidabad. In Malda, the state's second largest congregation took place at Sujapur's Noy Mauja Idga. Large gatherings were also reported in Nodia, North 24 Parganas and South 24 Parganas, with women joining prayers in many locations. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
0: Cities across Madhya Pradesh are celebrating Eid al-Adha today in a peaceful and joyful atmosphere. We have a report.
2: In Bhopal, thousands gathered at the historic Tajul Masjid for special prayers. The Imam prayed for unity, brotherhood and progress in the country. A heartwarming scene came from Indore. Following a 50-year-old tradition, a Hindu family welcomed the city Qazi with a garland of flowers. They then took him to the Eidgah in a decorated carriage. In Gwalior, people from other faiths also gathered outside mosques to greet the Muslim community. Meanwhile, the Madhya Pradesh Waqf Board has issued important guidelines for the animal sacrifice. People have been asked not to post photos or videos of the sacrifice on social media so that the communal harmony is preserved. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
0: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. The fragile ceasefire between the United States and Iran has come under severe strain after both sides exchanged military strikes near the strategically important Strait of Hormuz. The U.S. military said it shot down four Iranian attack drones and struck a drone control station in Bandar Abbas. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps confirmed the strikes and said it retaliated by targeting an American military base as Kuwait, a U.S. ally, said. Earlier it was responding to hostile missile and drone attacks. In badminton, India enjoyed an impressive day at the Singapore Open today, with Lakshya Sen, PV Sindhu, the men's doubles pair of Chirag Shetty and Satvik Sairaj Ranki Reddy, and the mixed doubles duo of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto all advancing to the quarterfinals. Sindhu defeated Japan's Riko Gunji in pre-quarterfinals of the women's singles round of 16. Lakshya sailed into the last eight after Thailand's world number two Kunlavut Viditsarn retired hurt just moments into their round of 16 clash. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu urges police forces to be more citizen-centric and sensitive towards vulnerable sections. Education Minister Dharmendra Pradhan assures resolution of all grievances of students regarding discrepancies in CBSE Class 12 examination evaluation process. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announces resignation. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar set to take over. Fragile ceasefire between US and Iran under strain as both sides exchange fresh strikes near the strategically vital Strait of Hormuz. And in badminton, PV Sindhu and Lakshya Sen storm into singles quarterfinals of Singapore Open. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
4: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
5: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही, इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
6: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
3: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
7: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
3: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
8: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
9: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से नहार।
3: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
10: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर 2:30 में हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर।

सुनहरा दौर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं 90 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। सबसे पहले ये गीत कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है एक लड़का एक लड़की।

एक लड़का एक लड़की, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। सुनहरा दौर इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं 90 के दशक के यादगार फिल्मी गीत। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है सातवां आसमान।

सातवां आसमान। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। आइए अब सुनते हैं ये गीत। लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में फिल्म का नाम है लम्हे।

परंपरा, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और अभिजीत की आवाज़ों में। सुनहरा दौर इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं 90 के दशक के फिल्मी गीत। अब सुनिए ये गीत आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है आईना।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर 3 बजे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी पहली सभा के प्रसारण। इन्हीं मीटर्स पर शाम 4 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। अब से लेकर शाम 4 बजे तक एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती के प्रसारण उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।
1: नई उड़ान,
2: युवा जोश और नई सोच के साथ बदल

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: और आरती कैसी हैं आप?
1: बस ठीक है, गर्मी में जितना ठीक हो सकते उतना ही ठीक है, क्योंकि जो धूप के हाल है गर्मी के हाल है ना, बस पूछिए मत।
0: नहीं पर हम अगर गर्मी की बातें करते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है।
1: हाँ ये बात भी है,
0: इसलिए हमें ना गर्मी की बात ही नहीं करना है, बस
1: सोचना ही नहीं है कि हाँ। गर्मी है, अरे बिल्कुल गर्मी नहीं है
0: तभी तो हम खुश रह सकते हैं ना,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि खुश रहने के लिए हमें बस वजह ढूंढना चाहिए, है ना।
1: ये तो है,
0: क्योंकि खुशियों की वजह अगर हम ढूंढते हैं तो सचमुच जिंदगी हमारी बहुत खुश हो जाती है।
1: बिल्कुल। और मैं तो कहती हूँ वजह भी ढूंढने की क्या जरूरत है, बस हंसिए मुस्कुराइए खुशियां मनाइए,
0: बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनिए, विविध भारती सुनते रहिए, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और आज के विषय बता दें।
1: आज के विषय हैं, हम बात करेंगे आज अपने बच्चों की जो झूठी झूठी प्रशंसा करते हैं उनके ऊपर। देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत सभी लोग अक्सर करते हैं, क्योंकि अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं तो वो आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप तो नहीं है, या आप हैं तो आप भी कितनी मतलब इस चीज को करते हैं कि झूठी प्रशंसा करते हैं, कितना करते हैं, तो इसके बारे में आप बताइए। या कोई आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो, किसी पड़ोसी ने कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दिया हो। और आज हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंदर किसके बारे में,
0: के चल्लमल नारियल अम्मा, उनकी
1: बिल्कुल
0: बारे में हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है, इसमें हमें श्रोताओं से हम गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि गेमिंग का दलदल क्या है, इसमें आपके इर्द गिर्द के आसपास के लोग इस दलदल में क्या फंसे हुए हैं या आप इससे दूर है, इस विषय पर हमें लिखिए कमेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ श्रोताओं का सेगमेंट है ना।
1: और एक बात मैं आपको बता दूं सोनाली, इस दलदल में थोड़े से पहले मैं खुद भी फंसी
0: फंस गई थी,
1: बिल्कुल। और मुझे ऐसा हो गया था ना कि मैं बस खेलती चली जा रही हूँ, और एक लेवल दो लेवल मैंने कहा कि बस किसी तरह से अगले लेवल पहुंच जाऊं, फिर मैंने कहा ये मुझे हो क्या रहा है, मैं पूरे टाइम सिर्फ इसी को कर रही हूँ। तो ये चीज से आप बाहर निकले, तो इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से बाद में। और भी तो विषय है।
0: और आज एक खास दिन है आरती, ईद उल अजहा, इन
1: हाँ
0: बकरी ईद भी है आज, तो उस बारे में भी हम बहुत सारे सखियों को श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और साथ ही उपयोगी टिप्स, ये बहुत
1: बिल्कुल
0: जरूरी टिप्स है आज की।
1: हाँ, ताकि हमारा नेट जो है वो एकदम चलता रहे और हम अपना आराम से विविध भारती बिना उसके रोक टोक के सुन सके आराम से। और साथ ही और भी अगर हम कुछ देखना चाह रहे हैं, कुछ मनोरंजन करना चाह रहे हैं तो कर सकें, तो उसके लिए जरूरी है वाईफाई, क्योंकि डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो वाईफाई होता है ना वो बहुत आराम से चलता है, पूरी फैमिली भी उससे कर सकती है, लाभ उठा सकती है। तो उसकी स्पीड अगर धीमी है तो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
0: और आप क्या करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: तो भाई सच में बहुत महके हुए से आज कभी देखो ना किसी को कि कोई अपनी फ्रेंड है तो बहुत मुस्कुरा सी रही, तो हमें पता चल जाता है कुछ तो राज उसने छुपा के रखा है। जैसे अभी मुझे लग रहा है सोनाली को देख के कि कुछ राज तो है, कि यानी वो पढ़ने वाली है, कोई कमेंट या कुछ बताने वाली है।
1: जी नहीं, आज हम सबसे पहले तो हमारे सभी सखियों को, श्रोताओं को बकरीद या ईद उल अजहा की हम
0: बहुत बहुत
1: मुबारक।
0: मुबारकबाद देते हैं जी।
1: जी, और ये जो इस्लाम का दूसरा सबसे प्रमुख और पवित्र त्यौहार है, जो पैगंबर हजरत इब्राहिम की अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है। ये त्यौहार इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये रमजान के खत्म होने के लगभग 70 दिन बाद आता है। ये चांद के देखने पर निर्भर करता है, इसलिए देश और स्थान के अनुसार इसकी तारीख में थोड़ा अंतर हो सकता है।
0: जी बिल्कुल। और बकरीद के दिन सुबह ईदगाह या मस्जिदों में विशेष ईद की नमाज भी अदा की जाती है, और नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन घरों में खास तौर पर बिरयानी और अन्य लजीज पकवान बनाए जाते हैं, और गरीबों और जरूरतमंदों को दान या जकात देना इस त्योहार का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।
1: तो सारे हम सखियों को, श्रोताओं को ईद की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते
0: जी
1: हैं।

0: हाँ तो सुनाली कुछ सच में इतना बढ़िया लगता है ना गाना ये.
1: जब है ना, जब कोई भी त्योहार हो तो वे अलग ही इतना आनंद की अनुभूति होती है ना,
0: बिल्कुल.
1: फिर घर में सब लोग मिलते हैं और खुशियों की बरसात होती है।
0: सच में.
1: वैसे कुछ शख्सियत भी ऐसी होती है ना जिनके व्यवहार के कारण, जिनके कार्यों के कारण हमें ना हर बार एकदम खुश खुश रहते हैं, हमें ना उनके
0: बिल्कुल.
1: काम
0: हमें एक प्रेरणा मिलती है, कुछ
1: जी
0: ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनके जैसे हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी कुछ आगे करने का सोचते हैं या हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें अपने लिए आगे क्या करना चाहिए. हम ऐसे बैठे हैं तो हमें और कुछ, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टैलेंट को किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनमें से आज हम एक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं.
1: जी
0: आज हम बात
1: के
0: करेंगे
1: चेलम्मल
0: जी.
1: जी, जिनका जन्म 6 फरवरी 1957 को उनका हुआ था जन्म, और उनका नाम है श्रीमती चेलम्मल, जिन्होंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई की और नारियल अम्मा के नाम से जो मशहूर है। और चेल्लम्मल दक्षिण अंडमान के रंगाचांग की रहने वाली है, और चेल्लम्मल 10 एकड़ जमीन पर एकदम अलग तरह से उन्होंने खेती की, यानी जैविक तरह की उन्होंने
0: जी
1: खेती की।
0: बिल्कुल. और वो जैविक खेती के माध्यम से अनानास, केला, लौंग और अदरक की खेती करती हैं. इसके अलावा वो अपने बगीचे में अनोखे तरीके से नारियल की खेती करती हैं, जिसके कारण वो किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई और लोग उन्हें नारियल अम्मा कहने लगे.
1: और उन्होंने 150 से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कई सरल तरीके निकाले जिससे नारियल की खेती बहुत आसानी से की जा सके, इसमें लागत भी कम आती है और पेड़ों को भी नुकसान से बचाया भी जा सकता है।
0: बिल्कुल. और उन्होंने नारियल और ताड़ के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए सस्ते तरीके खोजे हैं. वो हमेशा दूसरे किसानों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए तैयार रहती हैं. उन्होंने आसपास के गांवों के 170 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है.
1: और कृषि कॉलेज और संस्थान अपने छात्रों को अध्ययन के लिए उनके खेत पर भेजते हैं, जहां वे नारियल के पेड़ उगाती है। उन्हें दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, पान का पत्ता, रतालू, सुपारी, अदरक, हल्दी, पपीता, केला, चीकू, हेलिकोनिया फूल और गेंदा और बहुत सारी सब्जियों की फसलों को उगाकर उन्होंने अपनी आमदनी में भी बढ़ाई की।
0: बिल्कुल. कितनी ज्यादा चीजों को उन्होंने, वो भी देखिए आज के समय में जब फसलों को इतना ज्यादा जब नुकसान पहुंचता है या इस रासायनिक चीजों से, उस समय वो जैविक खेती कर रही, कितनी अच्छी बात है. और श्रीमती चेल्लम्मल ने नारियल को चूहों से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए नए उपाय विकसित किए. वो अपने खेत में जैविक कृषि तकनीकों को अपनाती हैं, साथ ही कीटों से फसलों को होने वाले रोगों और नुकसान से बचाव के लिए भी उन्होंने बहुत से कारगर उपाय विकसित किए जो बहुत काम के साबित हुए.
1: और चल्लमल ने अपने खेत में हरित खाद और गोबर की खाद का उपयोग किया है, साथ ही वो परागण के लिए मधुमक्खी पालन करती है और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करती है। अंडमान में खेती करते हुए श्रीमती चेल्लमल ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है।
0: बिल्कुल. देखिए कितनी बड़ी बात है, वो मधुमक्खी जो जिसके बारे में कहा था कि बहुत जरूरी है ना इस पृथ्वी को जीवन को बचाए रखने के लिए,
1: जी
0: तो वो परागण के लिए कि बहुत सारी फसलों का परागण वो करती है मधुमक्खी,
1: देखिए।
0: तो उसके लिए भी उन्होंने कितना किया. तो बहुत ज्यादा वो समझ लीजिए पर्यावरण की रक्षा की तरीके से एक तरह से. और लेकिन उनका अब जो खेत है वो लोगों के लिए, कृषि और छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है. उनका खेत फसलों और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखते हुए बहुत अच्छी आय का साधन है. उन्होंने अंडमान में एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में एक अवसर देखा, इसलिए उन्होंने अपने खेत में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया है.
1: अब स्थानीय और पूरे देश के अलावा विदेशों से पर्यटक उनके खेत को देखने समझने आते हैं, और श्रीमती चेल्लम्मल को अब तक बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें केरल के नारियल विकास बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नारियल किसान का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है।
0: बिल्कुल. और मसालों और फूलों की खेती के क्षेत्र में प्रगति के लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड, साथ ही इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, ICAR और CIARI पोर्ट ब्लेयर द्वारा आयोजित किसान मेले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी मिला है.
1: और द्वीप पर्यटन महोत्सव 2014 के दौरान कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित फल फूल और सब्जी के लिए प्रथम पुरस्कार, और वर्ष 2016 में केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर की ओर से प्रगतिशील सर्वश्रेष्ठ कृषक का पुरस्कार भी आपको मिला है।
0: बिल्कुल. और उनके अनोखे जैविक कृषि तरीकों, नवाचार और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया.
1: और सचमुच ऐसी जब महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं तो हमें कितना इन्हें गर्व महसूस होता है कि हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छे अच्छे काम किए और हमारी सरकार उन्हें पद्मश्री
0: बिल्कुल.
1: से
0: अब वो
1: सम्मानित
0: पढ़ाई
1: कर।
0: ना होने का रोना भी नहीं रोती है.
1: बिल्कुल।
0: पढ़ाई सिर्फ देखिए हमें एक डिग्री देती है और हमें थोड़ा हमारा ज्ञान हमारा विकसित करती है, लेकिन जो हमारे अंदर जो जो एक कला होती है ना, वो
1: जी
0: हर चीज को, वो जो कला होती है जो मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाए, तो वो कला को अपने निखारना चाहिए.
1: और अब एक संदेश सुन ले।
0: बिल्कुल.
2: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: तो आरती, हमारी अपना कार्यक्रम सखी सहेली, उसका जन्मदिन है तो हमारे मन में भी बहुत खुशी है कि हम बहुत धूमधाम से पूरे श्रोताओं के संग, सखियों के संग ये हमारा जन्मदिन मनाएंगे। तो आप आ रही है ना?
0: बिल्कुल आ रहे हैं। आना ही है भाई, जन्मदिन मनाना है तो जश्न में शामिल तो होना ही है।
1: और हमारे बहुत सारे श्रोता है, हमारी सखिया वे भी आएंगे, पर इससे पहले हम एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो आंखों ही आंखों में हम पता कर लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है सच बोल
1: हाँ बिल्कुल, वो तो
0: रहा
1: पता चल ही जाता है चेहरे को देख के।
0: है कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, हाल ही में रिजल्ट आए बच्चों के, तो कुछ कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि भले उनके 57% हो तो कहेंगे कि हमारे बच्चों को 75%
1: हाँ ये तो
0: आए
1: होता है, ये तो होता है।
0: और वो ये भी नहीं, वो उन्हें मालूम होता है कि कोई थोड़ी मार्क लिस्ट देखने आने वाला है, उन्हें तो नहीं मालूम पड़ेगा। पर देखिए एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ
1: 100 झूठ
0: बोलना
1: बोलने
0: पड़ता है।
1: पड़ते हैं।
0: और क्या होता है ना, बच्चों को जब ये झूठ सुनने की आदत हो जाती है ना, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी झूठी तारीफ हो। और फिर आगे चल के जब उन्हें आगे की दुनिया में जाके अगर किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो वे टूट कर बिखर जाते हैं,
1: सही
0: क्योंकि
1: बात है।
0: उन्हें जो है ना असफलता का सामना करने की आदत ही नहीं होती है
1: नहीं
0: उन्हें।
1: उनको लगता है कि नहीं, अब हमारे साथ जब आप उनके सामने उनकी तारीफ कर देते हैं झूठी ना, तो उनको लगता है नहीं कोई बात नहीं, हमारे अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी मम्मी या मेरे जो परिवार वाले हैं वो कह ही देंगे, किसी ना किसी से कुछ तो कह ही देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर वो उतनी मेहनत भी नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस भी नहीं होते, और फिर अपने वो खेल में उसी तरह से अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। जबकि आप उन्हें जब समझाएं चीजें, वो चीजों को कि नहीं तुम्हें आगे अच्छा करना है, और वो जो चीज उनकी रिजल्ट है वही आप सबको बताएं, तो
0: जी
1: उनको लगेगा नहीं हमें अब आगे करना पड़ेगा कुछ।
0: जी एक हमारे साथी ने लिखा है, बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चों में अहंकार आ जाता है, वे वास्तविक चुनौतियों का सामना करने से डरने लगती है और माता पिता की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: बिना किसी खास वजह के तारीफ करने से बच्चे खुद को हर चीज में परफेक्ट समझने लगते हैं। जब वे असल दुनिया में असफल होते हैं तो गहरे गुस्से या निराशा में चले जाते हैं। जब बच्चों को लगता है कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और हमेशा सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके भीतर नई चीजें सीखने, मेहनत करने की ललक कम हो जाती है। उनके प्रयास की तारीफ करें परिणाम की नहीं, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही है। कहना तो ये चाहिए कि मुझे अच्छा लगा तुमने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितनी मेहनत की। प्रयास अपना होता है, परिणाम दूसरों के हाथ में होते हैं। इससे बच्चों में लगन बढ़ती है। और बहुत बार बच्चों के टीचर अभिभावकों को शिकायत करते हैं, कुछ भी करने पर कहता है तो मैं कर लूंगा पर बहुत तेज हूं, करता कुछ नहीं है। तो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है, उन्हें
1: बिल्कुल
0: सिखाए। और हर काम परफेक्ट हो कोई जरूरी नहीं, उस काम में निराशा भी नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और लेकिन उस चीज को लेके इतना ज्यादा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को आप कहें कि ऐसी तरह से, तो बच्चे का वो जो मनोबल है ना, वो जो उसकी ललक होती है वो कम
0: जी
1: हो जाती है। इसलिए एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बात अगर झूठी प्रशंसा की हो तब बच्चे तो क्या बड़ों की भी नहीं करनी चाहिए, और अरे विविध भारती की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हालांकि वो हमें ऐसा मौका कभी देता नहीं कि हमें उसकी झूठी तारीफ करनी पड़े। तो झूठी प्रशंसा खासकर बच्चों की तो नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, इसलिए झूठी तारीफ के बजाय उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सच्ची सराहना करनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए
0: क्या बात है।
1: ताकि
0: एक
1: वो और
0: हमारे
1: आगे कर सकें।
0: जी एक हमारे साथी लिखते हैं, तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकती है, तुमसे अच्छा कोई नहीं। ऐसी बातें सुनकर बच्चा धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होने लगता है। जब बच्चे को बिना मेहनत के बार बार प्रशंसा मिलती है तो अपनी कमियों को समझ नहीं पाता। अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों की तुलना कभी दूसरों से ना करे और ना ही झूठी प्रशंसा करके उन्हें भ्रम में रखे। सच्चाई, प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन ही बच्चे के अच्छे भविष्य की नींव बनते हैं। इसलिए बच्चों से प्रेम करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, लेकिन प्रशंसा हमेशा सच्ची और उचित होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है, इन्होंने बहुत बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं इसमें से। तो उन्होंने लिखा है कि बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है, ये उन्हें आत्ममुग्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है, और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है। सच्ची और विशिष्ट तारीफ जैसे कि मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए, उनके आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए। झूठी प्रशंसा के जो दुष्प्रभाव है वो ये देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्ममुग्ध भी हो जाता है, और साथ ही अनावश्यक तारीफ बच्चों को अपने साथियों से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है, और वो विफलता से डरने भी लगते हैं, और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूं, तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है आरती, कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है। मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला अफजाई जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कुछ इस तरह की बात लिखते हैं, लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरह की जो चीजें हैं वो उन्होंने लिखी हैं। और साथ ही बच्चों की, एक और जो श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है, और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने से डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं, और उनको तारीफ की लत लग जाती है, वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए काम करने लगते हैं, और उनके अंदर सीखने की इच्छा खत्म होने लगती है, उन्हें लगता है कि वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ है, उन्हें और मेहनत की जरूरत ही नहीं है। और परिणाम की बजाय अगर बच्चे की मेहनत की हम तारीफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा, कि तुम बहुत अच्छे हो की बजाय कहें कि तुमने ये चित्र बहुत ध्यान से बनाया है, तो और साथ ही गलती होने पर उसे प्यार से सुधारने की प्रेरणा भी दें।
0: बहुत अच्छी बात। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपनी जान पहचान परिवार में देखा है कि जिसका बच्चा औसत दर्जे का छात्र है, बहुत मेहनती भी नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं, हर बच्चा अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उसके गार्जियन अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा जब 12 तक अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेहनत भी नहीं करना चाहता, तो क्यों उसे IAS IPS का ख्वाब दिखाया जाए। एक दिन कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, पर भगवान का शुक्र है लड़का आज सही सलामत है और अपने साधारण सी नौकरी और जिंदगी में खुश है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि भाग्य चमत्कार कभी कभी ही होते हैं, सब चमत्कार एक साथ नहीं होते। ये भी सही बात कही है। और आरती, अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।

0: ब्रेक
1: सच
0: के
1: में।
0: बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली।
1: सहेली सच में सोनाली, जो बच्चों की अगर हम जब तारीफ करते हैं ना, तो उनकी अगर हम सकारात्मक तारीफ करें ना कि कहें कि ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है या बहुत मेहनत करता है, तो बजाय नंबर बताने के हम ये इस तरीके की अगर तारीफ करें तो बच्चे के अंदर भी सकारात्मक जो एक एनर्जी आती है वो आएगी, और
0: जी
1: वो भी सोचेगा कि नहीं अब मुझे और मेहनत करनी है ना, और मेहनत करके आगे बढ़ना है, ना कि मुझे सिर्फ अब झूठी तारीफ पे रहना है। इसलिए बहुत जरूरी है
0: और
1: इस
0: अब
1: तरह
0: क्या
1: से।
0: करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: आरती
1: दिल की बात।
0: सचमुच दिल की बात असली नकली चेहरा बता ही देता है। एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि बच्चों की तारीफ तो कीजिए परंतु उन्हें चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। अक्सर झूठी प्रशंसा करने से वे आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाते और आभासी दुनिया में जीते हैं। ये बहुत
1: जी
0: सही बात लिखी है ना।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की हर बात पर झूठी प्रशंसा करना सही नहीं होता, क्योंकि इससे वो अपनी असली मेहनत और काबिलियत को समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है कि जब हम बिना वजह हर काम की तारीफ करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे सच और दिखावे का फर्क भूलने लगते हैं। सच्ची और सही प्रशंसा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है, लेकिन झूठी प्रशंसा उन्हें केवल दूसरों की तारीफ पर निर्भर बना सकती है। इससे वो असफलता को स्वीकार करना भी मुश्किल समझने लगते हैं। और मेरे अनुसार बच्चों को उनकी मेहनत, ईमानदारी और कोशिशों के लिए सराहना मिलनी चाहिए, ना कि सिर्फ खुश करने के लिए। इससे वो जीवन में सच्चाई, आत्मविश्वास और मेहनत की असली कीमत को समझ पाते हैं।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चे वास्तविकता से दूर हो सकते हैं और आलोचना को स्वीकार करने में असमर्थ हो सकते हैं। सच्ची
1: बिल्कुल
0: और सही तारीफ करने के लिए उनके प्रयासों पर ध्यान दें, ना कि उनके परिणामों पर। यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है। उनके लालन पालन में हमेशा सकारात्मक रवैये की जरूरत होती है, जिससे कि वो प्रोत्साहित महसूस हो। बच्चों को जब माता पिता से प्रोत्साहन मिलता है तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वे एक कामयाब जीवन जीते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो प्रोत्साहन कैसा हो। जरूरी है कि प्रोत्साहन भी सही तरीके से किया जाए, जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे और साथ में अपने मनपसंद क्षेत्र में भी सफलता पाए।
1: बिल्कुल
0: यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी कि भैया अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा ना करें,
1: बिल्कुल
0: जैसे हैं बच्चे, और उन्हें उनके बारे में बताएं कि भैया इतने ही नंबर मिले हैं उन्हें,
1: जी।
0: उसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए ना, कभी ऐसा नहीं है कि
1: नंबरों से उनकी काबिलियत को आप नहीं बता सकते
0: कभी
1: कि
0: कभी ऐसा भी
1: जी
0: होता है कि कुछ कुछ लोगों को बहुत परीक्षा में कम नंबर मिलते हैं पर अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल। आप आइंस्टीन वगैरह इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए उनको देखिए। तो आप एक छोटा सा कमेंट उसको ले लेते हैं। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आप बच्चों की झूठी तारीफ करेंगे तो घर पर अगर कोई मेहमान आए तो उनके सामने बहुत लंबी लंबी फेंकेंगे कि हमारा बच्चा इतने नंबर लाता है, अरे ये तो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाया और इसके बहुत सारे दोस्त हैं, इससे अच्छे नंबर तो उसके स्कूल में कोई लाता ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी ऐसा मत कीजिए, क्यों ऐसा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी आदत भी होती है उनकी आदत भी यही होती है कि वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता तो हमारी तारीफ कर ही देंगे, हम कुछ भी करें हम तो बोल तो हमें तो बोलना नहीं है। तो इससे बच्चे की आदत बन जाती है, तो इससे जो बच्चा है ना वो बिल्कुल झूठ में जीने लगता है। तो इसलिए उनको कहने का मतलब है कि आप इसलिए बच्चों की जो झूठी तारीफ है वो मत करिए।
0: और है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना आरती कि वो बच्चा बहुत ज्यादा गेम में उलझा हुआ है, तो भी है ना बहुत सारे घर के सदस्य जो होते हैं, मम्मियां होती हैं, पापा होते हैं, घर के लोग है ना छुपाते हैं कि नहीं नहीं नहीं वो तो पढ़ाई करता है, वो तो मोबाइल में
1: बिल्कुल
0: लगा रहता है, तो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, आजकल तो मोबाइल में देख के प्रोजेक्ट करना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जाने अनजाने में गेमिंग के दलदल में फंस जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: ये आज का युग जो है ना, तकनीक और इंटरनेट का युग है, जैसे
1: बिल्कुल
0: मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम ने बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के जीवन में जगह बना ली है। मनोरंजन के साधनों में गेमिंग सबसे लोकप्रिय
1: बहुत
0: माध्यम है
1: ज्यादा
0: आरती, और थोड़ी देर का खेल मन को ताजगी देता है, पर लेकिन जब यही मनोरंजन आदत और फिर लत बन जाए तो ये गेमिंग का दलदल ये बन जाता है और इसमें व्यक्ति धीरे
1: बिल्कुल।
0: धीरे धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है।
1: और इस गेमिंग की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जो बच्चे हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम कर दिए इन गेमिंग में के चक्कर में फंस के। तो अपने माता पिता या किसी से रिश्ते में भी जो भी उनके अपने हैं उनको भी वो नहीं समझते, सिर्फ गेम के अंदर इतने ज्यादा वो लग जाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं। और साथ ही
0: यानी
1: बहुत बड़े अपने जो जो माँ बाप की जो कमाई होती है उसको भी गेम के चक्कर में, वो गेम को खरीदने के चक्कर में वो भी पूरा गंवा देते हैं।
0: यानी कहने का मतलब है कि वो ये जो दलदल है इसमें फंसने से हमने अपने बच्चों को बचाना है।
1: बिल्कुल
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि इस बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे दिन रात मोबाइल गेम्स में लगे रहते, पढ़ाई और बाकी जरूरी चीजों से उनका ध्यान हटता जा रहा है। मेरी बेटी ने अभी अभी 10वीं के एग्जाम दिए और उनकी छुट्टियां चल रही है। आजकल उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मम्मा मुझे गेमिंग वाला फोन चाहिए। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जो बच्चा अभी 11वीं में जाने वाला है उसे इस उम्र में गेमिंग के फोन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। फिर फिर मुझे अपना समय याद आता है कि हमारे समय में तो मोबाइल दूर की बात थी, घर में सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था। मेरे पिताजी तो इतना डांटते थे कि किसी से 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन आज के बच्चों की दुनिया ही बदल गई है, उन्हें बस गेम खेलना है। तकनीक अच्छी है लेकिन उसका सही और सीमित उपयोग बहुत जरूरी होता है, वरना
1: बिल्कुल
0: धीरे धीरे बच्चे गेमिंग की ऐसी आदत में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गेमिंग का दलदल ऐसा खतरनाक भंवर है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। ये एक ऐसी स्थिति है जहां गेमिंग जो है वो मनोरंजन नहीं, एक मानसिक बीमारी बन जाती है जो मकड़ी के जाल से भी बदतर जाल है। इसमें फंसने वाला अपने करियर, सेहत और पैसों से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। थोड़ा मुनाफा होने के बाद ज्यादा मुनाफे के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद करने में देर नहीं लगता।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि गेमिंग के दलदल एक टाइप का नशा है, एक ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति वीडियो गेम, मोबाइल गेम या ऑनलाइन गेम खेलने का इस हद तक आदी हो जाता है कि वो अपनी असल जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी और सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगता है। ये दलदल की तरह इसलिए है क्योंकि शुरुआत में सिर्फ मनोरंजन लगता है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इसमें ऐसा फंसता जाता है कि चाहकर भी बाहर निकल पाता। सोशल मीडिया, समाचार पत्र में आए दिन ये खबरें पढ़ती हूँ कि ऐसा नहीं, कम पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे डिग्रीधारी सारे लोग इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: और जब आप बुरी तरह से फंस जाते हैं तो उनका एक ही परिणाम होता है कि अपने को दुनिया से खत्म कर लेते हैं, और उन्हें भुगतना पड़ता है कि परिवार को निराशा और पूरा परिवार जो है दुखी हो जाता है, ऐसा उन्होंने
1: बिल्कुल
0: लिखा है।
1: बिल्कुल। और एक और जो श्रोता है हमारे, वो लिखते हैं कि जो गेमिंग का दलदल है उसमें जो यानी कि जो खेल कूद है और उसमें भी, अरे ये गेम मतलब जो गेम है जो जो बाहर हम गेम खेलते हैं, जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं घर के बाहर, तो वो गेम होते हैं उसको कहते हैं खेल। वो आपके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ाते हैं
0: जी
1: और उसके लिए हमारे दिमाग के जो विकसित विकास होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। बल्कि जबकि गेमिंग जो होता है उसमें स्क्रीन पे पूरे समय देखते रहने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है और मानसिक विकास पर भी बुरा असर
0: और
1: पड़ता
0: ये
1: है।
0: जो गेमिंग जो है ना, जो होते हैं ना, इसमें ना हमेशा हम जीतते ही हैं। पानी में गिर जाए तो भी
1: तो
0: उन्हें
1: भी
0: कुछ पॉइंट्स
1: हाँ
0: अगर हमारे पास है तो उससे हम फिर से जिंदा हो जाते हैं।
1: जी
0: तो ये बच्चे और कुछ कुछ बच्चे तो वो वीडियो गेम देख के वैसे ही रास्ते पर भी उसी तरह से कार वगैरह चलाते हैं, तो उसके साथ उनके जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी बहुत खतरा होता है।
1: बिल्कुल
0: एक हमारे साथी ने लिखा है, दीपा
1: हाँ जी कोई
0: सॉरी
1: नहीं
0: समय सीमा निर्धारित करें, गेम खेलने के लिए अलार्म लगाए या माता पिता दोस्तों की मदद से एक निश्चित समय तय करें, नई आदतें अपनाएं, ऊब से बचने के लिए कोई नया शौक पाले, व्यायाम करें या किताबें पढ़ें।
1: बिल्कुल। और एक कुछ श्रोता है जो लिखते हैं कि आज के जो जो बच्चे जो गेम में लगे रहते हैं, उसमें कंप्यूटर गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं, वो वास्तविक दुनिया से उनका जुड़ाव कम होने लगता है। और शुरुआत में ये गेम मनोरंजन और तनाव दूर करने का साधन लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत गेमिंग का दलदल बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति गेम खेलने की लत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, काम, परिवार और सामाजिक जीवन को नजरअंदाज करने लगता है, तो ये आदत धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। और याद रखिए, गेम्स खेलना बुरा नहीं है, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। पढ़ाई, खेलकूद और परिवार के समय के साथ गेमिंग को सीमित रखिए ताकि हम इस दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकें।
0: और अब क्या करें,
1: एक गीत सुने
0: सुनते हैं गीत।

अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: गालिन साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जाज कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहे ना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहे ना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे समझे।

0: तो आरती एक साथी लिखते हैं कि आजकल गेम खेलने की लोगों में लत सी लगी है। लोग देर रात तक जागकर मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं। कई बार तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, ना तो खाने की चिंता होती है, ना उन्हें कुछ काम की चिंता होती है। कुछ ऐसे गेम तो उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिसके कारण लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर
1: बिल्कुल,
0: लेते हैं।
1: बहुत से ऐसे गेम आ गए हैं खतरनाक।
0: जी
1: और साथ ही एक श्रोता जी लिखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑडियो या ऑनलाइन गेमिंग में इतना उलझ जाता है कि उसका अपनी दैनिक दिनचर्या, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर से नियंत्रण हट जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया है।
0: और वैसे आरती ऐसी बात है कि ये जो मोबाइल गेम है, या फिर मोबाइल कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए, या फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनमें अगर वाईफाई ना हो, इनमें अगर नेट ना हो, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही
1: सही बात है, फिर हम
0: है।
1: एकदम फोन लेके बैठे रहते हैं कि क्या करें इस डिब्बे काम।
0: नहीं, पर अगर हमें बहुत इन्हें ऑफिशियल काम करना है, हमें अगर कुछ काम करना है, तो बात समझ सकते हैं। पर अगर हमें सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम पढ़ना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, परिवार के साथ बैठना भूल रहे
1: बिल्कुल,
0: हैं, तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी मनोरंजन का साधन होना, वो सिर्फ सीमित मात्रा
1: बिल्कुल
0: तक
1: वो
0: हो।
1: मनोरंजन तक ही रहना चाहिए,
0: जी
1: बाकी रिश्तों के बीच में या हमारे स्वास्थ्य के बीच में उसको नहीं आना चाहिए।
0: जी और अब वाईफाई की रफ्तार अगर धीमी हो जाए तो क्या करना
1: जिंदगी की
0: चाहिए?
1: रफ्तार, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की रफ्तार जब वो धीमी हो गई है,
0: धीमी हो गई
1: क्योंकि
0: है।
1: बहुत कभी कभी बहुत जरूरी काम होते हैं, क्योंकि
0: जी
1: हमें उसको करना होता है, लिखना होता है या कुछ
0: जी
1: हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी चीजें देखनी है। तो आजकल तो न्यूज भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं, कहीं बाहर हैं तो हमें किसी कुछ जरूरी देखना है, तो वो अगर नेट नहीं सही से चल रहा है, या हम अपने जैसे कि हम लोग जब जब देखते हैं, सब पूरी फैमिली जो होती है, अगर पूरी फैमिली ले रखी है उसने वाईफाई से चला रहे हैं, तो उसकी रफ्तार अच्छी होनी जरूरी है।
0: जी
1: तो कभी कभी ये होता है ना, कुछ चीजों को हम सावधानियां करें तो उससे हम उसकी रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि राउटर को अगर हम सिर्फ बंद करके 2 मिनट बाद उसको स्टार्ट करें तो उससे भी स्पीड बेहतर हो जाती है।
0: यानी जो मोबाइल, टीवी या लैपटॉप उपयोग में नहीं हो, उन्हें नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कमजोर पासवर्ड होने पर भी लोग जो है नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं, जिससे स्पीड
1: कोई आपके
0: कम।
1: घर के सामने से जा रहा है, निकल रहा है थोड़ी दूर तक है, तो वो आपके नेट का आसानी से उपयोग कर सकता है, तो वहीं खड़े होकर अपना उपयोग करता रहेगा, लेकिन आपकी वाईफाई की जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी।
0: साथ ही पुराने राउटर नई तकनीक के अनुसार सही गति नहीं दे पाते, जरूरत पड़ने पर नया राउटर ले। ऑनलाइन पढ़ाई के समय वीडियो डाउनलोड या भारी गेमिंग से बचे, ताकि इंटरनेट की गति स्थिर बनी रहे। फोन में चल रहे उन ऐप्स को बंद करें जो बैकग्राउंड में डेटा जैसे ऑटो अपडेट या सिंक का उपयोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ना, जितने भी पेजेस, उनको आप बंद करेंगे ना, तो फिर उसकी आपके फोन की स्पीड पे बहुत असर पड़ेगा।
0: यानी हमने अभी खोला फेसबुक, फिर थोड़ी देर में खोला व्हाट्सएप, फिर उसके बाद में हम चले गए यूट्यूब पे। तो अगर सारे ऐप्स खुले हुए हैं,
1: हाँ,
0: अगर हम इस्तेमाल तो सिर्फ एक ही का
1: एक ही
0: करेंगे
1: कर
0: कि
1: रहे हैं,
0: टाइम, तो सारे अगर ऐप्स खुले रहेंगे तो भी हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है।
1: बिल्कुल, तो आप उसका भी ध्यान रखें। और साथ ही थोड़ी सावधानी और है, जैसे कि अपना जैसे कि अगर जो आपका राउटर है वो घर के बीचों बीच में और ऊंची जगह पर होना चाहिए, और साथ ही जो मोटी दीवार और माइक्रोवेव जैसे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी मत रखिए, जैसे टीवी है, टीवी के पास एकदम से आपने रख दिया उसे पीछे, तो उसका जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ता है, तो उस वजह से भी आपका स्पीड धीमी हो जाती है, तो उसे थोड़ा सा अलग करके रखें और थोड़ा ऊंचा ही रखें उसे, उसी जगह पर ही लगाएं, जैसे कि और बाकी उपकरण उसके उसके आसपास नहीं होंगे, तो बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी आपको
0: और
1: इंटरनेट की।
0: राउटर का जो एंटीना होता है उसे भी अच्छे से सेट करें। यदि दो एंटीना है तो एक को वर्टिकल यानी खड़ा रखें, और दूसरा एंटीना को हॉरिजेंटल यानी आड़ा रखें। यह सिग्नल का दायरा बढ़ा देता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही एक है ना, फ्रीक्वेंसी के बैंड बदलते रहना चाहिए हमें, कि जो तेज फ्रीक्वेंसी का राउटर हमें लेना चाहिए ना।
1: बिल्कुल, उससे क्योंकि अगर ज्यादा फोन चलाने हैं उसको, उससे आपको कंप्यूटर वगैरह ज्यादा चीजें चलानी है, तो आप उसी हिसाब से आप लीजिए अपना राउटर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी चल सकें वाईफाई, और उसकी स्पीड भी अच्छी रहे। और
0: अब एक गाना सुन ले,
1: बिल्कुल, एक गीत सुन
0: सुनते
1: लेते
0: हैं
1: हैं।
0: गीत।

0: तो अब हम बात करते हैं वही जो हम बात कर रहे थे, यानी कि राउटर की। तो जैसे कि बताया कि हमने कि आप राउटर को बंद करें और फिर दोबारा चालू करें, तो उससे ये इसकी जो मेमोरी होती है उसको साफ करता है, और साथ ही राउटर की जगह को भी बदलें। या जैसे कि हमने बताया था कि आप उसको EMI श्रोता लिख के भेज रहे हैं, उसको घर के बीच में रखें और इसे ऊंचाई पर स्थापित करें, और कई सारी बाधाओं से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसको दूर रखें, और अनचाहे डिवाइस जो भी रखें उसके आसपास उनको हटा दीजिए, और वाईफाई का पासवर्ड बदलें और ताकि और कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही बैकग्राउंड लोड जो डाउनलोडिंग बंद करें। ये वही चीज़ें जो हैं जो हमने अभी बताई वही हमारे श्रोता ने भी लिख कर भेजा है। तो एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि धीमी वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने राउटर को रीस्टार्ट करना, और इसके अलावा वही उनका है कि ऊंची जगह पर लगाने से भी इसकी स्पीड बेहतर होती है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि ज्यादा गेम खेलने से मेरा भी स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा था, मुझे भी कंप्यूटर गेम की लत लगी थी लेकिन अब छूट गई है। क्या
0: अरे
1: बात
0: वाह,
1: है तो
0: देखा,
1: पढ़ाई हो
0: बिल्कुल बधाई हो आपको अपने, क्योंकि गेम की लत लग जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
1: जी
0: आपने उस चीज को छोड़ा, बहुत अच्छी चीज करी है आपने। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि देर रात तक गेम खेलने से नींद का चक्र बिगड़ जाता है, जिससे डिप्रेशन और एनजाइटी का खतरा बढ़ जाता है, और साथ ही एकाग्रता में कमी भी आती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर वर्चुअल गेम खेलने से वास्तविक दुनिया से या पढ़ाई पर या काम पर ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है।
1: ये तो है ना, टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं,
0: बिल्कुल
1: तो हमें उसके फायदे लेना चाहिए और नुकसान को हमें बाय बाय कहना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल, उसको ध्यान रखिए, इतना मत किसी चीज में लग जाइए कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे,
1: जी, और
0: क्योंकि
1: अभी
0: अति हर चीज के लिए भी
1: अब
0: बुरी होती
1: बिल्कुल
0: है।
1: अति सर्वथ वर्जित, तो भाई अति से दूर रहे कि बस वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम इतने इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें
0: बिल्कुल
1: कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, उसके जो नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए। और अब क्या करना चाहिए हमें,
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो आंटी आज की
1: आज की
0: मुलाकात
1: मुलाकात बस
0: बस
1: इतनी।
0: इतनी, और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। अभी तक 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण। मीडियम वेव और FM पर हमारी दूसरी सभा अब एक साथ आरंभ हो रही है। 4 बजे हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के माध्यम से।

नंदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष

0: पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है। इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से सिपाहियों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हों या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है। और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकेंड इन कमांड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कैप्टन अभिराम पंकज सेकेंड इन कमांड 139 बटालियन CRPF डिप्लॉयड हैं मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कमांडेंट अभिराम पंकज का। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और आपको 90 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक बधाई देता हूँ। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं CRPF की तरफ से जय हिंद बोलता हूँ। और ये एक प्योर नॉस्टेल्जिया है मेरे लिए, बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुँचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफ़र से जुड़ी होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए तो नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं। लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है, अगर हम CRPF की बात करें तो आप किन शब्दों में CRPF को परिभाषित करना चाहते हैं?
1: CRPF 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज CRPF हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है CRPF। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइंड हैं, जैसे BSF इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, CISF वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और SSB इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही CRPF इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। तो CRPF ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक CRPF ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे। और आज CRPF ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो जिस तरीके का CRPF ने काम किया है। और ऐसा वही नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो CRPF को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूँ कि CRPF सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बल का पार्ट हूँ, मैं इस बल का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ कुछ करने का मौका मिला है
0: जी। होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं। और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह। और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070, इस जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप हम तक पहुँचते हैं। तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार हैं भेजिए ज़रूर।

0: संदेश टू सोल्जर्स की आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है। और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चलें। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यूर ऑनर्स इन केमिस्ट्री, MBA इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप CRPF ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली CRPF। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये CRPF ऑर्गेनिकली हुआ, मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था, वर्दी की तरफ एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज ए चाइल्ड आपको कई बार ही लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था। बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
0: आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप CRPF ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, CRPF भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है। तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप

0: सब कुछ भी कर सकते हैं जीवन में।
1: मैं बहुत भाग्यशाली था, मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे, वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस ज़माने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है चारों तरफ, आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस ज़माने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोज़गार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पर जा सकता है, और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।
0: जी, तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी, ये बताएं।
1: 2004 तक ये एग्जामिनेशन CPOs कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से UPSC ने ले लिया। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और CAPF के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्ज़ाम निकालती हैं। तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 3-4 पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाय फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू, आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीज़ें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और UPSC की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नज़र बना के रख सकते हैं। आज की डेट में बहुत आसान है।
0: जी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत CISF, BSF और CRPF।
1: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, SSB इंडो नेपाल बॉर्डर, ITBP इंडो चाइना बॉर्डर, CRPF ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आल्सो, बट वो सारे केवल VIP सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स आल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस।
0: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता
1: है? इसमें NSG और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है। बाकी ये जितने CISF, CRPF, ITBP, BSF और इन सब की सिलेक्शन उस UPSC के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कितनी वैकेंसीज है उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है, जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं आप, असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं।
0: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
1: मैं MBA करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी। तो ऑफकोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फ़ोन नया नया आया था, तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई, दूरभाष फ़ोन के माध्यम से लोगों ने बताया, तो बधाइयाँ आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात, तो काफ़ी बधाई संदेश आने लगे। और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था, मेरे बैंक में सारे बहुत खुश हुए क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफकोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया।
0: वाह, क्या बात है। घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि सरकार का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुँचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
1: निसंदेह बहुत खुशी के भाव थे। मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया, कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए कि हाँ देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों, उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे और ऑफ कोर्स मैं भी काफी खुश था।
0: जी निश्चित रूप से जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुँचना है, ऐसे सुखद बात और कोई छू नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जो जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके MBA या फिर आप मान लीजिए आपके जब आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस प्रकार के बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता CRPF तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
1: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। ये आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था, आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था। मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था। खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था, तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो जहाँ भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफ़ी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व एक डिफरेंट, एक अलग अलग अलग तरीके का निखर कर आता है। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था, वो मुझे बहुत हैंडी रहा CRPF में भी। यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
0: अपने हाँ
1: बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे भी मुझे, और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो, मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो, तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकलकेट करती है, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
0: जी जी, तो CRPF तक का रास्ता सहल किया और उसके बाद CRPF में रहते हुए, यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से, यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
1: जी
0: तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आतुर हूँ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे, यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही, एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके, कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ FM रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन है, किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी की FM रेनबो पर हमें। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल। और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जी मौजूद हैं, कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी ज़ुबानी सुन रहे हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है। और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज़्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आप से मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें, तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें CRPF के बारे में।
1: CRPF हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और इस CRPF की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में जब ही चाइनीज़ ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में CRPF ने लड़ाई लड़ी थी, और उसमें हमारे CRPF के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था, और बहुत ही एक्स्ट्रा

0: ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था। तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट के की याद में वैलर डे मनाया जाता है सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ ने इन तीनों थिएटर्स जम्मू कश्मीर, एलडब्ल्यूई थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में। तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो सीआरपीएफ का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, सीआरपीएफ अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो सीआरपीएफ एक मिनी इंडिया। आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो सीआरपीएफ उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन रिलीजन के लोग मिल जाएंगे। और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो सीआरपीएफ के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं। सीआरपीएफ एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है और इसका रिकग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है। सीआरपीएफ को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। सीआरपीएफ को 1 अशोक चक्र, 10 कीर्ति चक्र, 39 शौर्य चक्र, 200 से ज़्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक। तो ये इनके जो बलिदान का, सीआरपीएफ के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है वो गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सीआरपीएफ को एक काफ़ी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती है।
1: जी निश्चित ही आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं सीआरपीएफ ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए, तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ। सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है। जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे और ये खेलना आज तक जारी है, और आपको लगता है कि ये जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हो, कौन कौन से गेम्स हैं?
0: देखिए सीआरपीएफ में हमारा चूंकि मूवमेंट काफ़ी फ्रिक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है। तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं। उसके अलावा जब मौका लगा फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला, टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफ़ी पॉपुलर गेम है, जो आपस में टग ऑफ वॉर, रस्सा कसी का जो गेम होता है वो, उससे काफ़ी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी, मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है। तो चाहे मैं एक छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में।
1: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बन जाती होगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेचर के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स हैं जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की
0: भावना।
1: क्या बात है, तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडर अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन सीआरपीएफ में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको सीआरपीएफ ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: ये जो सीआरपीएफ का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है

0: हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है, और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी हैं, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पीनल कोड्स है, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
1: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
0: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा, अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी, और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा। उसमें बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा, और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में। लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा CRPF की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और CRPF ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उन दिनों मैं याद करता हूँ, एक नक्सल अभियान में ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था, और उसमें CRPF की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था, और CRPF ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था, जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और पहली पोस्टिंग थी तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
1: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
0: जम्मू कश्मीर मैं दो मौक़ों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया, तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफ़र डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला, और CRPF ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहाँ का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में। तो CRPF का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो CRPF आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी CRPF के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब भी रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर। तो CRPF एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं। तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते होने के अलावा CRPF का एक मानवीय पहलू भी है। तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी CRPF, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है, और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए CRPF हमेशा तैयार रहती थी।
1: वाह, क्या
0: बात। तो एक काफ़ी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा, और दो मौक़ों पे मैं गया, 8 साल मैं कश्मीर में मैं बिता कर आया, तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
1: वाह, क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या क्या क्या क्या आपको जिम्मेदारियाँ दी गई, चाहे वो बिहार के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज़्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
0: निसंदेह CRPF, आप CRPF में हम लोगों को 15 दिन कैजुअल लीव और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन। तो आप उसके अलावा जो टाइम आप पूरे वर्ष का है वो आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव है और आप उसको जीते हैं और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं। तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है जब मैं जवानों के साथ इतने साल, अब मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है।
1: जी, एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है मुझे ऐसा महसूस होता है। सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज़्यादा स्थापित कर सके। तो क्या आपकी किसी, ये कहूँगी कि जो आपने सोचा हुआ था आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
0: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो CRPF में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं CRPF का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे मीडिया के साथ जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ PRO की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
1: 90 वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिया आकाशवाणी नित्य प्रति अपनी श्रोताओं तक पहुंचना है, तो उस कड़ी में आप भी सम्मिलित थे।
0: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो CRPF करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी CRPF करती थी। तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का, उनको उनसे बातचीत करने का मौका मिला था उनके अधिकारियों से स्टूडियोज, लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
1: क्या बात है, चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में, इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसा कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे, और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं। हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम। अच्छा, अब जब आप CRPF में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है, ना केवल CRPF का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जैसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे। तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ?
0: निसंदेह ये होता था, एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था। तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे। तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूँगा कि भाई आप अपनी फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो वो ना करें। तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं। तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था, और CRPF भी जहाँ कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप्स तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए, तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का CRPF के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की। तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के, CRPF ने लोगों के

0: जीवन को छुआ है, जहाँ भी आज छूती रही है, आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो सीआरपीएफ का है, और सीआरपीएफ लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है। और मैं इसलिए सीआरपीएफ मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
1: क्या बात है, जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक, इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है, कैसा होता है?
0: बिल्कुल रोंगटे खड़े होते हैं। आप एक जो आपका आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में। एकदम बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर, आप एक सोल्जर हैं, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
1: जी।
0: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है, आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है। तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहन कर था, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है। तो मैं तो और मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी यूनिक है। आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा,
1: शायद समझना मुश्किल है। और आपकी बातों से जब आपके भाव पढ़ रही हूँ, सो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत, बिल्कुल वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवां आज तक कायम है, क्योंकि रोज जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वही पहली मोहब्बत से आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत से आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो वह अधूरा, यकीन मानिए, अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज़ के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी ज़बानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुँचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी ज़िंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशन्स पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं। ऐसे में उनका योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं CRPF ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: माँ बाप मुझे टाइम ट्रेवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं CRPF ज्वाइन करूंगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूंगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर, प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियाँ मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में मैं कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, तो एक मैं इस मामले में, अगेन, मैं काफ़ी काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
0: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य से आपने बैठा लिया, और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है, वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
1: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना, और वो कॉरपोरेट सेक्टर में है, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ।
0: जी, निश्चित रूप से कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड इज़ द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हों या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में वो क्या वैल्यू रखती हैं। अब आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहाँ आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहाँ पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
1: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो, उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी ज़िंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं, जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। मैं अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
2: हाँ।
1: तो
2: जी,
1: जी, तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी. और मेरा मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएम रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा बिनाका गीतमाला लेकर आते थे.
0: हाँ.
1: और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे.
0: हाँ.
1: और उसको हम बहुत इंतज़ार करते थे और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतजार करते थे जब वो बिनाका गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे. क्या हाँ. गोल्डन वॉयस थी उनकी.
0: बिल्कुल.
1: तो ये सारी यादें थी और आज वो सारी यादें ताज़ा हो गई. और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का इस मौके के लिए.
0: बिल्कुल. और ये जो सफ़र है ये बहुत ही सुखद सफ़र है. हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो जो सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द मैं बोलना, दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा. खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है. तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने.
0: बिल्कुल.
1: अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश, अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी.
0: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी. और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से कि आप अपने बच्चों को ना खेल में ज़रूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स तो एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल. तो अपने बच्चों को ज़रूर खेलों से आप जोड़ कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है.
1: निसंदेह.
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की. एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी, अगर आप कहें तो, आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है. निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर.
1: धन्यवाद. धन्यवाद. जय हिंद.
0: जय हिंद.

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज शाम।

कार्यक्रम आज शाम के सभी श्रोताओं को अंकुर राजपूत का प्यार भरा नमस्कार। हमारे सभी सुनने वालों को सबसे पहले तो ईद की ढेरों शुभकामनाएं और मुबारकबाद। दोस्तों, दिन ढल चुका है और स्टूडियो आते वक्त हमने देखा कि सभी लोग इधर से उधर बधाइयां देते हुए आते जाते दिखाई पड़ रहे थे और सुबह से ना सही यूँ कहो तो कल शाम से ही ये बधाइयों का सिलसिला जारी है। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी के ज़िंदगी में ये जो त्यौहार है ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। और इसी त्यौहार के लिए तहे दिल से हमारा दिल का सलाम कबूल कीजिए।

श्रोताओं, शाम का वक्त यानी कि हर परिंदे का, हर इंसान का घर वापस लौटने का समय, और ये समय ऐसा समय होता है जब हर इंसान को अपने परिवार की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। जब वो चाहता है कि मैं अपने परिवार के पास रहूं, उसके साथ रहूं, उनके पास बैठूं और अपने दिन भर का हाल उनसे कह दूं। ऐसा करने से

बर्दाश्त नहीं कर सकते या हम किसी से कहते हुए भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, अगर हम उसको किसी से साझा ना करें, अपने परिवार के जनों से साझा ना करें, तो हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। डिप्रेशन कोई एक दिन में आने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों, ये धीरे धीरे आता है, जैसे शाम ढलते ढलते अंधेरा। शुरू में पता भी नहीं चलता कि रोशनी कम हो रही है, बस इतना महसूस होता है कि मन पहले जैसा नहीं रहा। हंसी अब मेहनत लगती है और चुप्पी सुरक्षित लगने लगती है। ये जो डिप्रेशन शब्द है ना, इसका सबसे ख़तरनाक रूप है कि ये शोर नहीं करता, ये चीखता नहीं, बस आपको थका देता है। सुबह उठना भारी लगता है, रात को सोने नहीं देता, भीड़ में अकेलापन लगता है और अकेले डर लगता है। आप जी रहे होते हैं लेकिन जीना महसूस नहीं होता। हर इंसान डिप्रेशन की वजह से अलग अलग तरह से परेशान रहता है। किसी के लिए घरेलू कलह, रोज़ का तनाव, रोज़ की तकरार, रोज़ का अपमान, तो किसी के लिए असफलता, चाहे वो किसी परीक्षा में हो, नौकरी में हो, व्यापार में हो या फिर प्यार में हो। किसी के लिए उम्मीदों का बोझ, आपने नहीं दूसरों के सपनों का, और किसी के लिए वो दर्द जिसका नाम तक नहीं होता, बस अंदर लगातार चुभता रहता है। घर वो जगह होती है जहां मन को आराम मिलता है, और इसीलिए हर इंसान चाहता है कि मेरे साथ जो सुबह से लेकर अब तक हुआ वो मैं अपने साथी से, अपने परिवार के किसी सदस्य से कह दूं, ताकि मेरा मन हल्का हो सके। तो श्रोताओं, यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ पूरे दिन में घटित होता है तो अपने परिवार के जनों से ज़रूर उस चीज़ को साझा करें और अपने मन को हल्का करें।

इसी के साथ कार्यक्रम आज शाम से अपने साथी अंकुर राजपूत को दीजिए अनुमति। नमस्कार। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है युवा साथियों के दैनिक कार्यक्रम युववाणी का।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज के प्रोग्राम में मैं हूं आपका रेडियो साथी हर्ष
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त खुशी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी?
0: आशा करते हैं अच्छे होंगे और उमंग और उत्साह के साथ सुन रहे होंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की आज के सवाल के साथ। तो आज का हमारा सवाल है, मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं?
1: दोस्तों, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना होगा हमारे आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर, और आज के अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए हमें अपना सही जवाब, सवाल का सही जवाब, और जवाब देने वाले सभी श्रोता साथियों के नाम अनाउंस करेंगे प्रोग्राम के अंत में।
0: खुशी, आज तो हर तरफ बकरीद की खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही हैं।
1: बिल्कुल हर्ष, ईद उल अजहा, जिसे बकरी ईद के नाम से भी जाना जाता है, ये त्यौहार सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि त्याग, इंसानियत और भाईचारे का संदेश देने वाला पावन अवसर है।
0: दोस्तों, ईद उल अजहा इस्लाम धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये त्यौहार इज़्ज़त इब्राहिम की उस महान कुर्बानी की याद में मनाया जाता है, जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने सबसे प्रिय बेटे हज़रत इस्माइल की कुर्बानी देने का फैसला किया था। उनकी निष्ठा और विश्वास को देखकर अल्लाह ने उनके बेटे की जगह एक जानवर की कुर्बानी स्वीकार कर ली थी।
1: तभी से ये पर्व कुर्बानी और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग सुबह ईदगाह या मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं।
0: ईद उल अजहा हमें यह भी सिखाता है कि इंसान को अपने स्वार्थ, अहंकार और बुरी आदतों की कुर्बानी देकर अच्छाई और मानवता का रास्ता अपनाना चाहिए। आज के समय में जब समाज से दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ऐसे त्यौहार हमें प्रेम, सद्भाव और एकता का महत्व समझाते हैं।
1: भारत जैसे विविधताओं वाले देश में हर त्यौहार मिलजुल कर मनाने की परंपरा रही है। ईद उल अजहा भी हमें यही संदेश देती है कि धर्म चाहे कोई भी हो, इंसानियत सबसे बड़ी होती है। इस दिन लोग अपने घरों में स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं, बच्चों में खास उत्साह देखने को मिलता है और हर तरफ खुशियों का माहौल हो जाता है।
0: आइए इस पावन अवसर पर हम भी इस संकल्प लें कि अपने जीवन में प्रेम, दया और सहयोग की भावना को अपनाएंगे और समाज में भाईचारे को मजबूत बनाएंगे।
1: इसी खूबसूरत संदेश के साथ हम आप सभी को ईद उल अजहा की दिल से मुबारकबाद देते हैं।
0: दोस्तों, अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार है बहुत कुछ खास।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी को लेकर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर।
3: कुछ ख्वाबों की बात,
4: कुछ अपनों का साथ,
3: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
4: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
3: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
4: वाकई कुछ खास है आज,
3: कुछ खास है आज।
5: दोस्तों, कुछ खास है आज में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में साहस, राष्ट्रभक्ति और संघर्ष के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। वे थे महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं।
6: दोस्तों, आज हम मना रहे हैं इनकी जयंती 28 मई। आज ही के दिन 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में जन्मे विनायक दामोदर सावरकर बचपन से ही तेज बुद्धि और देशभक्ति की भावना से भरे हुए थे। जब देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब सावरकर जी ने अपने विचारों और क्रांतिकारी गतिविधियों से युवाओं के दिलों में आजादी की आग जगा दी।
5: कहते हैं ना, कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास बना जाते हैं। वीर सावरकर उन्हीं लोगों में से एक थे। दोस्तों, सावरकर जी ने बहुत छोटी उम्र में ही मित्र मेला नाम का संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना था। बाद में यही संगठन अभिनव भारत के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ।
6: उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1857 का स्वतंत्र समर, जिसमें 1857 की क्रांति को केवल विद्रोह नहीं बल्कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया गया। उनकी ये पुस्तक अंग्रेजों को इतनी खतरनाक लगी कि उसे प्रतिबंधित कर दिया गया।
5: दोस्तों, देशभक्ति का रास्ता आसान नहीं होता। 1910 में सावरकर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें जहाज से भारत लाया जा रहा था, तब उन्होंने समुद्र में छलांग लगाकर भागने की कोशिश भी की। उनकी यह हिम्मत आज भी लोगों को प्रेरित करती है।
6: इसके बाद उन्हें काला पानी की सजा दी गई और अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, उस जेल की कठिनाइयों की कल्पना करना भी मुश्किल है। कैदियों से बेलों की तरह तेल निकलवाया जाता था, उन्हें कोड़ों से मारा जाता था और कई दिनों तक भूखा रखा जाता था।
5: लेकिन इतनी यातनाओं के बाद भी सावरकर जी का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने जेल की दीवारों पर कीलों और पत्थरों से कविताएं लिखी। सोचिए जरा, जिस इंसान से कागज और कलम छीन लिए जाएं, वो भी अगर लिखना बंद ना करे तो उसके इरादे कितने मजबूत होंगे।
6: दोस्तों, वीर सावरकर केवल क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक महान लेखक, कवि और समाज सुधारक भी थे।
5: दोस्तों, वीर सावरकर जी का जन्म हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां भी इंसान को झुका नहीं सकती।
6: दोस्तों, आज का दिन और भी खास है क्योंकि ये जुड़ा है उस शक्ति से जो परिवार को संभालती है, समाज को आगे बढ़ाती है और हर रिश्ते में प्रेम और त्याग का रंग भरती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ, यानी महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस की।
5: दोस्तों, हर साल 28 मई को यह दिवस मनाया जाता है ताकि महिलाओं के स्वास्थ्य, उनके अधिकारों और जागरूकता पर ध्यान दिया जा सके, क्योंकि अक्सर महिलाएं पूरे परिवार का ध्यान रखते रखते अपने स्वास्थ्य

0: ही नजरअंदाज कर देती है।
1: कहते हैं ना, घर की नींव अगर मजबूत हो तो पूरा घर सुरक्षित रहता है, और एक स्वस्थ महिला ही परिवार और समाज की मजबूत नींव होती है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज कर देती हैं। थकान, कमजोरी, तनाव, नींद की कमी या सही भोजन ना लेना, ये बातें धीरे धीरे बड़ी परेशानियों का रूप ले सकती हैं।
0: दोस्तों, महिला स्वास्थ्य केवल बीमारी से जुड़ा विषय नहीं है, इसमें पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, आराम और आत्मसम्मान सब शामिल है।
1: खासकर किशोरावस्था में लड़कियों को सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। मासिक धर्म यानी पीरियड्स को लेकर आज भी कई जगहों पर खुलकर बात नहीं की जाती, जबकि ये एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है। जरूरत है जागरूकता की, ताकि लड़कियां बिना डर और शर्म के अपनी सेहत का ध्यान रख सकें।
0: और दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। कई बार महिलाएं अपनी भावनाएं दिल में दबा कर रखती हैं।
1: ऐसे में परिवार का सहयोग और खुलकर बातचीत बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि एक मुस्कुराती हुई महिला के पीछे भी कई बार अनकही परेशानियां छुपी होती हैं।
0: दोस्तों, आज हमें यह समझना होगा कि महिलाओं का स्वास्थ्य केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अगर घर में माँ स्वस्थ होगी तो परिवार खुशहाल होगा, और बेटी स्वस्थ होगी तो देश का भविष्य मजबूत होगा। दोस्तों, ये था हमारा सेगमेंट कुछ खास है आज।
2: कुछ ख्वाबों की बात,
3: कुछ अपनों का साथ,
2: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
3: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
2: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
3: वाकई कुछ खास है आज,
2: कुछ खास है आज।
0: दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट फेसबुक लाइव की ओर। दोस्तों, आज है मंथ का अंतिम गुरुवार, और आज के दिन फेसबुक लाइव पे हमारा टॉपिक होता है फरमाइश विशेष, जिसमें आप फेसबुक पर कमेंट के माध्यम से हमें अपनी गीत की फरमाइश भेजते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सेगमेंट की पहली फरमाइश के साथ।
4: हमें पहली फरमाइश भेजी है नरीन नेतम, मोहम्मद फरमान, सुरेश राठौर, मुकेश कश्यप, जिशान वर्सी, गंगा सिंह रावत, धर्मेंद्र छिपा, मोहम्मद वकील अहमद, शाहजी बोटके, निसार सलमानी, राष्ट्रपाल गजबिये, पंकज गुप्ता। सुनते हैं इनकी फरमाइश का गीत।

दोस्तों अगली फरमाइश हमें भेजी है अनिल कुमार गोट के वैशाली, अनिल गोट के वैष्णवी, गायत्री, अजीत कसाना, दुर्गाराम साहू, संजय ढींगिया, राजू मिगलानी, रामचंद मखीजा। चलिए सुनवाते हैं इनकी फरमाइश का ये गीत।

दोस्तों, हमें तीसरी फरमाइश भेजी है राजवीर सिंह यादव, यूनस खान, सोफिया खान, उमा सिंह, हीरामणि वर्मा, परसमनी पुष्पेंद्र, नोखेलाल, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव। आइए दोस्तों, सुनवाते हैं अब इनकी फरमाइश का गीत।

इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें दी है माधव नामदेव जाकिर मंसूरी जॉन्डी कैस्ट्रो हाजी गफ्फार खां दिनेश वर्मा तुलसी मस्कीन सुरेश सुदर्शन साहा देवेंद्र।

आइए दोस्तों जानते हैं हमें अगली फरमाइश किसने भेजी है। रिमझिम चौबे, सक्षम चौबे, मोहम्मद सईद अब्बासी, लाडला जी, बीएल धाकर, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, चौधरी राजवीर सिंह, एसके अलबक्स, परवीन चौहान, रामधारी अवाना, वेद प्रकाश। आइए दोस्तों आपको सुनवाते हैं इस फरमाइश के साथ एक गीत।

अगली फरमाइश हमें भेजिए शेखर टेलर, उदय वनपल, दिग्दर्शन गौंड, निसार सलमानी, लाल मोहम्मद अंसारी, राम कुमार रेवार, नंद किशोर घटे, सुरेश खुराना की तरफ से। आइए सुनते हैं उनकी फरमाइश पर ये गीत।

0: तो दोस्तों ये था हमारा सेगमेंट फेसबुक लाइव।
1: की गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: तो साथियों ये थे हमारे आज के सेगमेंट। अब वक्त हो गया है कार्यक्रम की स्टार्टिंग में पूछे गए आपसे सवाल के जवाब को जानने का। और आज का हमारा सवाल था, मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? और इसका सही जवाब है 3 जोड़ी, यानी कि 6। आइए जानते हैं उन सभी श्रोता साथियों के नाम जिन्होंने दिया है इस सवाल का सही जवाब।
3: अजीत कसाना, पुंजाजी नवकर, धर्मेन छिप्पा, नानक खन्ना, राणा तलत, हीरामणि वर्मा, अशोक साहू, सुदर्शन शाह, मोहम्मद रफीक पनवार, बालकरण वर्मा, जॉन डे कैस्ट्रो, लाडला जी, दिनेश वर्मा, रियासत हुसैन, चौधरी राजवीर सिंह, मोहम्मद यासीन, रामकुमार रेवर, बीएल धाकर, तुलसी मस्कीन, मसरूर हसन, सुरेश खुराना, विनोद मुन्नत, राष्ट्रपाल, उत्तम कुमार भागत, कमल बालूजा, हाजी गफ्फार खान, नजमुल हुड्डा, निसर सलमानी, राजू मिगलानी, राजवीर सिंह यादव, राधेश्याम पांडे, रवि कुमार राहुल, प्रवीण चौहान, धीरज भाई राबरी, अक्ष सक्सेना, राम शरण, विथल सुरोशे, अजीत बफसर, कैलाश, सुरेश जायसवाल, सिद्धार्थ गोंडने, मोहम्मद जाहिद अली, नरीन नेतम, नारायण लाल, नवी हसन अब्बासी, दीगदर्शन गौर, आमिर हुसैन, संजय धिंगिया, विजय सुरालकर, नजमुल हुड्डा, भाई रफत साहब, विमल सक्सेना भारती, सुरेश गगनेजा, मोहम्मद सईद अब्बासी, नेमचंद्र सक्सेना, सुनील पाठक, गजानन येले, अनिल बी गोटके, जगदीश धाकर, शाहजी बोटके,

0: उत्तम सिंह, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, शकील अहमद, गंगा सिंह रावत, रवि रस्तोगी, इरशाद अहमद, लाल मोहम्मद अंसारी, के आर चौहान, आकाश रस्तोगी, मोहम्मद दानिश, अरविंद कुमार, उतारा दिवाकर, देवशंकर तामूरिया, शानूर अंसारी, जिशान वर्सी, नवी हसन अब्बासी, मुकेश कश्यप, नितेश कुमार, शाहजी बोटके, गुरमीत सिंह मीता, दुर्गरम साहू, रियासत हुसैन।
1: आप सभी को इस सवाल का सही जवाब देने के लिए बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे इस पते पर, हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आइए, युववाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन संख्या है 244901। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876।
0: दोस्तों, हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नई उमंग, नए विषय और नई आवाज के साथ। तब तक के लिए आपकी रेडियो दोस्त खुशी
1: और हर्ष को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धारमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देवरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देवरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं अब सुनिए आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP शौर्य, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञापन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल AWARDS.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 6:10 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म अजनबी से, आवाज है किशोर कुमार की।
1: हसीना से यूं मुलाकात हो गई

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आरजू से, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। अब किसान साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत, पर उससे पहले आइए सुनते हैं कुछ आवश्यक संदेश।
1: गिनती देश किसान जनगणना से जन कल्याण
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनन बारे सभी भैया बहनों को आपकी बहन मीना
1: और आपके भैया दीपक की
0: राम राम। और सुनाओ दीपक भैया, कैसे हाल चाल है आपके?
1: मीना बहन, हम तो ठीक हैं, और जो हमारे किसान साथी हैं वे ठीक ठाक होंगे, अपने खेती बाड़ी के कार्य समय से कर रहे होंगे।
0: हाँ भैया बिल्कुल।
1: और देखो मीना बहन, आज पर्व मनाया जा रहा है वो ईद को।
0: हाँ भैया।
1: और बहुत चहल पहल दिख रही, हम जब आ रहे घर से तो हमने देखी सब भैया बहन आपस में ईद उल अजहा को जो है मना रहे थे।
0: हाँ भैया। हाँ हाँ,
1: तो हम सब किसान साथियों को हमारी ईद उल अजहा की बहुत बहुत बधाई हो।
0: बधाई हो भैया। हाँ देखो दीपक भैया, हमारा देश भारत तीज त्योहारों को देश है
1: जी,
0: और सभी धर्मों के लोग एक दूसरे को त्योहार मिलकर मनाते हैं।
1: हाँ,
0: ये अपने आप में बड़ी बात है भैया।
1: बिल्कुल मीना बहन, आपने सही कहा, गांव की जो असली खूबसूरती है वो हमारी त्योहार से ही होती है।
0: हाँ भैया बिल्कुल।
1: चाहे होली हो घर की, दीपावली हो, चाहे भैया ईद हो, जब लोग आपस में मिलजुल कर अपनी खुशी बांटते हैं तो भैया ईद उल अजहा भी जो है वो त्याग, सेवा और आपसी भाईचारे को संदेश देता है।
0: हाँ भैया, देखो भैया, आज सुबह जब हम गांव की तरफ से आ रहे थे तो देखा कि मस्जिदों के आसपास काफ़ी चहल पहल थी, बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे थे, महिलाओं के घरों में भी सुबह से तैयारियां चल रही थी। सच कहें तो त्यौहार गांव की ज़िंदगी में नई ऊर्जा भर देता भैया।
1: सही बात कही मीना बहन, ईद उल अजहा जो है केवल खुशी को ही त्यौहार ना है बल्कि त्याग और इंसानियत को ही संदेश देता है।
0: हाँ भैया बिल्कुल।
1: और इस दिन जो है लोग जरूरतमंद, जो खासकर गरीब लोग होते हैं, उनके लिए जो है मिठाई बांटनों और कपड़ा देनों, इन सबको साथ में लेकर चलता है। यही बात हमारे गांव के माहौल को बहुत खूबसूरत बना देती है।
0: हाँ दीपक भैया, और हमारे गाँव में तो यही परम्परा रही है कि किसी के घर त्यौहार हो तो पूरा गाँव उसमें शामिल होता है। आज भी कई जगह हिंदू परिवार अपने मुस्लिम भाइयों के घर ईद की मुबारकबाद देने जाते हैं, और मुस्लिम परिवार भी सबको प्यार से मिलते हैं। यही तो भारत की असली पहचान है भैया।
1: जी मीना बहन, किसान के जो जीवन में जो है आपसी सहयोग बहुत जरूरी है।
0: हाँ भैया
1: देखो, खेती बाड़ी में आपसी सहयोग हो या भाईचारा हो तो तई काम चलता है।
0: हाँ भैया।
1: देखो खेत हो, चाहे मौसम हो, चाहे कोई भैया परेशानी हो।
0: हाँ भैया।
1: गांव में लोग एक दूसरे के साथ देते हैं, तो इसी प्रकार जो है अगर त्यौहार को अपनेपन से मनाया जाए तो वास्तव में बहुत मजबूत हमारे रिश्ते होते हैं।
0: हाँ भैया, और इस समय खेतों में भी काम तेजी से शुरू हो रहा हो भैया।
1: हाँ,
0: कहीं धान की नर्सरी डाली जा रही है तो कहीं खरीफ फसलों की तैयारी चल रही है। ऐसे समय त्योहार थोड़ी खुशी और आराम भी दे जाता है भैया।
1: बिल्कुल मीना बहन, लेकिन किसानों को इस मौसम में कुछ सावधानी अवश्य रखनी चाहिए।
0: हाँ भैया।
1: देखो बारिश के शुरू होने से जो है पहले अपने खेत की मेड़बंदी जरूर कर लें।
0: हाँ भैया।
1: और जब बीज को बोवें तो बाको भैया शोधित कर लें, और एक बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें कि पानी की निकासी को अवश्य ध्यान रखें। त्यौहार के साथ साथ खेती को काम भी समय से चलता रहे।
0: हाँ भैया, त्यौहार हमें यही सिखाता है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं भैया
1: जी।
0: गांव में अगर कोई गरीब परिवार हो या कोई अकेला हो तो उसे भी त्यौहार की खुशी में जरूर शामिल करें भैया।
1: सही बात कही मीना बहन, आज के दौर भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है, जिसमें जो है लोग जो है एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे कुछ गाँव हैं उनमें परम्परागत जो है सभी लोग आपस में मिलकर रहते हैं।
0: हाँ,
1: इसी प्रकार जो है ईद उल अजहा को हम प्यार और भाईचारा और इंसानियत से जो है मनाते हैं।
0: दीपक भैया, बच्चों को भी त्योहार को सही मतलब समझाना चाहिए
1: जी।
0: केवल नए कपड़े और खाने तक ही त्योहार सीमित नहीं है, बल्कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, जरूरतमंदों की मदद करना और मिलजुल कर सहना भी त्योहार का हिस्सा है भैया।
1: बिल्कुल, देखो गाँव की जो संस्कृति है वह
0: हाँ।
1: हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
0: हाँ,
1: खेतों की हरियाली तभी अच्छी लगती है जब लोगों के दिलों में कुछ अपनापन हो।
0: हाँ, एक बार भैया फिर से सभी भैया बहनों को हमारी तरफ से ईद उल अजहा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका घर आंगन खुशियों से भरा रहे, खेतों में हरियाली बनी रहे और जीवन में सुख समृद्धि आती रहे भैया।
1: जी मीना बहन, जा तो रही हमारी ईद उल अजहा जहाँ पर बातचीत। अब आज दिन है गुरुवार।
0: हाँ भैया।
1: और कौन सा गुरुवार आज?
0: आज भैया चौथा।
1: हाँ, तो चौथे गुरुवार में क्या होता है?
0: कृषि पत्र का खेत खलियान में अगली पृष्ठ पर है भैया कृषि समाचार।
1: तो कृषि पत्र का खेत खलियान में देखो आज गुरुवार है तो सुनते हैं।

0: कृषि पत्रिका खेत खल्याण में अगले प्रश्न पर है कृषि समाचार भैया।
1: जी ममता मीना बहन, अब कृषि समाचार में है हमारो, जैसे कृषि में नए शोध करे गए हैं जो किसानों के लिए बहुत काम आता है, जिसमें जुआ सूखा सहन वाली एक किस्म को वैज्ञानिकों ने नई किस्म तैयार करी है जो कम बारिश में भी हमारे किसान साथी लगा सकते हैं, जो बाजरा की नई हाइब्रिड बीज है जिसको नाम है 3W Pearl Millet हाइब्रिड। इसको भैया हमारे किसान साथी लगा सकते हैं जो ऊंचे के खेत होते हैं, बामा लगा सकते हैं जहाँ पर भैया बरसात बहुत कम होती है वहाँ पे भी लगा सकते हैं, और जो भैया कम पानी में जो है सूखे में बहुत अच्छी पैदावार देती है। इसके अलावा जो इसके डंठल होते हैं वो हरे चारे के रूप में हम अपने पशुओं को खिला भी

0: सकते हैं और इन बातों को हमारे किसान साथी ध्यान रख सकते हैं। अब देश में जो और हमारे कई राज्यों में जो है भैया प्री मानसून गतिविधि बढ़ने लगी है, तो कुछ इलाकों में जो हल्की बारिश और तेज़ हवाओं की संभावना भी जताई जा रही है और किसानों को सलाह दी जा रही है कि भैया आजकल अपनी खेती बाड़ी अपने जो बरसात है बाको देख करें।
1: हाँ भैया, और जैसे खरीफ सीजन की तैयारी तेज हो गई है, कृषि विभाग ने धान मक्का बाजरा और दालों के प्रमाणित बीज समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। किसानों से कहा गया है कि वे बीज उपचार करके ही बुआई करें।
0: देखो पशुपालन विभाग में भी गर्मी को देखते हुए पशुओं की विशेष देखभाल की सलाह दी है और देखो पशुओं को जो है साफ पानी और हरा चारा और जैसे छायादार जो वृक्ष होते हैं उन्हीं स्थानों पर बांधना चाहिए।
1: हाँ भैया, और जैसे सब्जी फसलों में कीट प्रबंधन को लेकर कृषि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है। टमाटर मिर्च और बैंगन की फसल में सफ़ेद मक्खी और तेला की निगरानी करने की सलाह दी गई है। ज़रूरत पड़ने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का प्रयोग करें
0: जी। और प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि होती है जय योजना में जो लाभार्थी हैं हमारे जिनकी ई KYC नहीं पाई है उनसे अपील है कि वे अगली किस्त समय से लेन के लिए जो अपने खाते की ई KYC अवश्य करवा दें। तो ये तो रहे हमारे कृषि समाचार। अब देखते हैं कृषि पत्रिका खेत खलिहान में अगले पृष्ठ पर है हमारी भेंट वार्ता और भेंट वार्ता को जो विषय है पशुपालन व पशुओं में जीवाणु जनित बीमारी व बचाव, जिस पर डॉक्टर ऋषि चंद्र से जानकारी दिलवाई हमारे डॉक्टर विनय वर्मा जी ने।
2: किसान भाइयों, समय समय पर जो हम पशुओं को पालते हैं उनमें कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनसे बचाव के लिए जरूरी है कि हम जानकारी प्राप्त करें और बिना जानकारी के कभी कभी हम पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं और हमारा जो पशु है वो इन बीमारियों का शिकार हो जाता है, नुकसान भी उठाना पड़ता है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि पशुओं में जीवाणु जनित बीमारियां कौन कौन सी हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। इस जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर ऋषेंद्र वर्मा जी जो कि पूर्व सीनियर साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। हमारे जो पशुपालक हैं वो बहुत अधिक जानकारी नहीं रखते हैं और बीमारियां कुछ ऐसी हैं जिनके लक्षण कभी कभी मिलते जुलते भी हैं और लक्षणों को बहुत देर में पहचान पाते हैं जिसकी वजह से समय से इलाज नहीं हो पाता है, नुकसान होता है। यदि हम जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियों की बात करें जो कई ऐसी बीमारियां हैं जो पशुओं को नुकसान पहुंचाती हैं तो वो कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं?
3: बहुत अच्छा विषय है और जैसा कि आपने कहा कि कई बार ऐसे पशुओं में बीमारियां हो जाती हैं जिनके लक्षण या तो देर से पता चलते हैं या पता चलते ही नहीं है या आपस में समान जैसे लक्षण दिखते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि पशु किस बीमारी से ग्रसित है या शिकार हो चुका है। और इसी क्रम में जीवाणु जनित बीमारी में सर्वप्रथम प्रमुख बीमारी पशुओं की गलघोटू कहलाती है।
2: जी
3: हेमरेजिक सेप्टिसीमिया भी कहते हैं। यह पास्टुल्ला मल्टोसिडा नामक जीवाणु से होती है।
2: जी
3: और बरसात में और दिसंबर के महीने में, क्योंकि अभी बरसात आने वाली है, ये बीमारी का प्रकोप बढ़ता है।
2: अच्छा,
3: ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी मानी गई है हिंदुस्तान में कि इसमें लक्षण प्रकट होते भी हैं और नहीं भी होते हैं या बिल्कुल समझ में नहीं आते और पशु चंद घंटों से लेकर 24 घंटे में मर जाता है। मृत हो जाती है या अचानक मर जाता है। रात में किसान या पशुपालक सोए सवेरे उठे तो पता लगा कि पशु मर गया। इसको गलघोटू इसलिए बोलते हैं कि जैसा कि नाम बता रहा है कि इस जीवाणु हैं वो सामान्यतः पशु के गले में रहते हैं ऐसे मान के चलिए।
2: अच्छा।
3: लेकिन जैसे आर्द्रता गिरी या आर्द्रता बढ़ी, मौसम में परिवर्तन हुआ तो यही जीवाणु जो है घातक हो जाते हैं और ये पशु में बुखार यानी ज्वर, बहुत तेज बुखार, आंखों का लाल होना, लार गिरना और गले का सूजना, सुस्त हो जाना, खाना पीना सब बंद कर देना, कपकपी आना भी लगता है। ऐसे लक्षण देखने पर कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। जब तक समझते हैं तब तक पशु की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इस पशु के लक्षण के बारे में जब हमने बताया तो अब आपका प्रश्न यही होगा कि फिर क्या किया जाए, कैसे बचाया जाए ऐसे पशुओं को। सबसे बेहतर है कि हम इसका नियमानुसार इसका टीकाकरण करें। इस बीमारी के विरुद्ध टीका बनता है, प्रदेश में भी बनता है, प्राइवेट कंपनियां भी बनाती हैं, गलघोटू का टीका उपलब्ध है और साल में दो बार लगाना तो निश्चित ही तौर से है, बरसात से पहले लगाना आवश्यक है, आजकल का मौसम है, आजकल लगाया जा सकता है ये टीका
2: जी।
3: और ये प्रतिकारता 6 महीने की देता है, इसलिए साल में 2 बार लगाना जरूरी है। वैसे अमूमता लोग पहले 4 माह पे लगा देते हैं, फिर 9 महीना पे लगा देते हैं, फिर साल में 1 बार लगा देते हैं, लेकिन चूंकि अपने यहाँ जो वैक्सीन उपलब्धता है वो ऐसी वैक्सीन है जिसमें 2 टीके लगाना आवश्यक है
2: जी।
3: तो इस प्रकार से इस बीमारी से बचा जा सकता है और टीका पूर्ण कार्य करता है। टीका लगने के बाद सामान्यता कोई इस प्रकार का प्रकोप जानवर में होना संभव दिखता नहीं।
2: जैक साहब, आपका कहने का तात्पर्य यह है कि गलघोटू एक ऐसी बीमारी है जिसका बचाव ही उपचार है।
3: जी जी बिल्कुल,
2: और बचाव के माध्यम से ही हम इस बीमारी से अपने पशुओं को बचा सकते हैं।
3: जी जी।
2: एक बात और आती है कि क्या बीमारी संक्रामक है, यानी यदि एक पशु में हो जाती है तो क्या दूसरे पशुओं में भी फैल जाती है?
3: जी बिल्कुल संक्रामक है, इसलिए जो ग्रसित पशु है उसे दूर रखे, स्वस्थ पशुओं से दूर रखे और उसका लार और उसका चारा दाना बर्तन इन सब से सावधानी बरते,
2: अलग रखे,
3: उनको अलग रखे, उनको ठीक से धोएं, जो मृत पशु है उसे दूर ले जाके गड्ढे में गाड़े ताकि औरों को संक्रमण ना हो सके,
2: ना होने पाए। एक और सवाल बनता है कि ये बीमारी छोटे पशुओं में भी होती है या जो बड़े पशु होते हैं उनमें भी?
3: ये 4 महीने से अधिक उम्र के पशुओं में सामान्यता होती है और भैंसों में ये प्रबल रूप से होती है,
2: प्रबल रूप से होती है। इसका गाय
3: के मुकाबले में
2: वैक्सीनेशन की यदि बात की जाए, टीकाकरण की बात की जाए, तो सभी पशुओं में टीकाकरण लगवाया
3: जी बिल्कुल, सभी पशुओं में टीका लगाया जाए।
2: तो ये तो बात हुई गलघोटे की और हमारे किसान भाई समझ चुके होंगे कि इस बीमारी से यदि हमें बचना है, अपने पशुओं को बचाना
3: जी,
2: है
3: जी, जी।
2: तो सावधानी बरतें और टीकाकरण जरूर करवाएं। और कौन सी बीमारी है जो कि वायरस बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से पनपती है?
3: दूसरी एक बीमारी सामान्य रूप से हमारे पशुपालक जानते हैं, लंगड़िया बोलते हैं गाँव में, कि लंगड़िया हो गई, ब्लैक क्वार्टर भी बोलते हैं, ये इसका जीवाणु बड़ा खतरनाक है। इस गलघोटू से बिल्कुल अलग जीवाणु है
2: जी।
3: इसमें टॉक्सिन पैदा करता है, विष पैदा करता है।
2: अच्छा।
3: और ये पशु के 18 माह तक के पशु पे ज्यादा असर करता है ये बीमारी।
2: अच्छा।
3: और उसका पिछला पुट्टा फूल जाता है।
2: हाँ।
3: और आगे की भी टांग में सूजन आ सकती है और भी कहीं भी सूजन आ सकती है, और जब पट्टा है पीछे का जब वो सूजता है तो उसे दबाने से कड़कड़ की सी आवाज आती है।
2: अच्छा।
3: आगे चल के वो घाव सा बन जाता है वहाँ और सड़ जाता है
2: जी, जी।
3: जिससे इसमें भी पशु की मृत्यु हो जाती है,
2: लेकिन इसका इलाज संभव है,
3: बचाव ही इलाज है,
2: बचाव इसका भी,
3: इसका भी टीका उपलब्ध है और इसका भी टीका इसी समय लगवाना चाहिए।
2: अच्छा।
3: और टीका स्टेट बायोलॉजिकल यानी प्रदेश वाले भी बना रहे हैं, प्राइवेट वाले जैसा मैंने बताया बना रहे हैं
2: जी।
3: और टीका लगाने में अगर दोनों बीमारियों में कोई कोताही करता है तो नुकसान तो होने की पूर्ण संभावना है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि सभी हमारे पशुपालकों को ध्यान रखना चाहिए कि लंगड़िया या गलघोटू से बचने के लिए टीकाकरण जरूर करवाएं। जैसा आपने बताया कि लंगड़िया कम उम्र के जानवरों को ज्यादा होती है,
3: ज्यादा प्रभावित
2: करती है, प्रभावित करती है
3: जी, 18 माह तक।
2: अच्छा। तो इसका मतलब है कि जब टीके की बात आए तो हमें सभी पशुओं में, सभी उम्र के पशुओं में
3: 4 माह से सामान्यता हर टीका 3 माह या 4 माह से ही हम लोग शुरू करते हैं
2: जी।
3: उससे पहले ये मान के चलते हैं कि माँ से बच्चे में पैसिव प्रतिकारता मिली हुई है
2: जी, जी।
3: जो कोलेस्ट्रम जो खीस खाता है बच्चा
2: तो बच जाता है
3: जी,
2: कुछ दिन के लिए।
3: उससे रोग क्षमता उसमें
2: जी
3: मिलती है।
2: तो ये बीमारी भी एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है?
3: बिल्कुल, देखिए कोई भी जीवाणु जनित रोग है
2: जी,
3: कोई भी रोग है तो समान रूप से सभी पे एक ही नियम लागू होते हैं।
2: अच्छा।
3: ऐसा कोई संक्रमण नहीं है कि चारे से, दाने से, पानी से
2: हाँ।
3: दूसरों में ना फैले
2: जी, जी।
3: जब जीवाणु का प्रसार होगा तो बीमारी फैलेगी।
2: इसके अलावा और कौन सी ऐसी जीवाणु जनित बीमारी है जो ज्यादा प्रमुखता से पाई जाती है?
3: संक्षिप्त में मैं बताऊंगा, गर्भपात।
2: अच्छा।
3: ये जानवर के आखिरी त्रैमास में गर्भपात, जिसे ब्रुसेलोसिस बोलते हैं
2: जी, जी,
3: वो होता है। और इसमें एक बार जो भी जानवर गर्भपात करता है वो जिंदगी भर उसके लिए पॉजिटिव रहता है, ब्रुसेल्ला बीमारी के लिए पॉजिटिव रहता है
2: जी।
3: और ये एक ऐसा रोग है जो मनुष्य में भी चला जाता है।
2: अच्छा।
3: तो इसलिए इसमें सावधानी बरतने की भी जरूरत है और इसका परीक्षण हम लोग करते हैं और इसका भी टीका है जो 3 माह के बच्चे में लगाते हैं, उसे काफूट वैक्सीनेशन अंग्रेजी में बोलते हैं।
2: अच्छा।
3: मतलब बच्चा है तो बच्चे में टीका लगा देते हैं ताकि प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और ये बैक्टीरिया या जीवाणु संक्रमण ना कर सके,
2: ना कर सके। यानी बड़े जानवरों में लगाने की जरूरत नहीं है
3: जी,
2: जो छोटे बच्चे,
3: छोटे ही में लगता है।
2: अच्छा।
3: मादा में नहीं, फीमेल में ही लगता है
2: जी,
3: मादा में लगता है, नर में नहीं जी जी। और ये बीमारी भी आम तौर से मौजूद है, मतलब यहाँ देश में देखी गई है, विभिन्न पशुओं में देखी गई है।
2: और सावधानी पूर्वक इसका इलाज यही है कि टीकाकरण करवा ले,
3: टीकाकरण करा ले।
2: थनैला भी जैसा एक बीमारी है
3: जी,
2: ये किस प्रकार की बीमारी?
3: थनैला बीमारी तो बहुत ही आवश्यक बीमारी है और ये कोई बीमारी नहीं है।

0: हम लोग कहते हैं आम भाषा में कि थनेला रोग हो गया,
1: ये समस्या है
0: जी, ये उत्पादन की बीमारी है
1: जी।
0: क्योंकि जो गाय उत्पादन करती हैं उनमें थनों के हम लोग ध्यान नहीं रखते
1: जी।
0: तो थन में चोट लग जाना, आयन में चोट लग जाना, उससे जो जीवाणु हैं कई बार बाहर से भी प्रवेश कर जाते हैं। हम गंदी जगह जानवर को बैठा दिया, कीचड़ में बैठा दिया
1: जी।
0: या हमने जब उसका दूध दुआ तो हमने ना अपने हाथ साफ करे, ना हमने थन साफ किया, ना हमने ऐन साफ किया, मट्टी लगी हुई है, तो जीवाणु संक्रमित उसके टीट से थन से कर सकते हैं। और उसमें फिर ये बीमारी इसलिए बहुत नुकसानदायक है कि इससे पशुओं के थन खराब होने लगते हैं
1: जी।
0: और उत्पादकता गिरती है, पशुपालक को बहुत नुकसान होता है, चिंता होती है, स्वाभाविक है
1: जी, जी।
0: और इसमें थनों में सूजन आना, आयन का गर्म हो जाना, मतलब आप छुएंगे हाथ से तो लगेगा थोड़ा गर्म है, और सूजन हो जाना, फिर जो दूध आता है उसमें कई बार छिछड़े आने लगते हैं, कई बार खून आने लगता है। जब खून आने लगता है तो समझ लीजिए कि गंभीरता बहुत अधिक बढ़ गई है। तो ये थनेला रोग का मात्र कारण है रख रखाव
1: जी।
0: इसमें जीवाणु तो मैं नंबर दो पे रखता हूँ कि जीवाणु का जो प्रकोप है या उनके द्वारा संक्रमण है वो तो नंबर दो पे रखा जाए, पहला प्रबंधन आवश्यक है। अगर हम साफ सुथरा और मजबूती से और सफाई से पशु के थन के ऐन को ठीक से रखें, कहीं चोट ना लगे। कई बार क्या, पशु दौड़ा और तार आ गया, उसके थन कट गया, या बछड़ा दूध पी रहा है या बछिया दूध पी रही है, उसने जोर से दांत मार दिया
1: जी।
0: या हमने जब दूध दुआ तो पूरे हाथ से नहीं दुआ, हल्का दूध दुआ या बहुत तेजी से दूध दिया
1: जी।
0: तो ये भी सारी चीजें इस बीमारी के लिए प्रकोप बढ़ाती हैं।
1: तो इसका इलाज ये जैसा हो सकता है?
0: इसका इलाज ये है कि हम लोग थन में एंटीबायोटिक का ट्यूब चढ़ाते हैं
1: जी।
0: ये भी बहुत से लोग कहते हैं कि बिहाने से पहले थन में दो ट्यूब चढ़ा दिए जाए, और ट्यूब चढ़ा के, और बहुत से लोग पेरेंट्रल मतलब एंटीबायोटिक भी लगा, इंजेक्शन भी लगा देते हैं
1: जी।
0: लेकिन इसको ना होने देना ही हितकारक है,
1: सावधानी बहुत जरूरी है
0: जी, सावधानी बेहद जरूरी है।
1: साफ सफाई और सावधानी बरतेंगे तो फिर थनेला जैसी बीमारी नहीं हो पाएगी
0: जी।
1: डॉक्टर ऋषेंद्र वर्मा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि पशुओं में जो जीवाणुओं से फैलने वाली बीमारियां हैं, विशेष रूप से गलघोंटू, थनेला, लंगड़िया, इन बीमारियों से बचाव ही इसका बेहतर उपचार है, इलाज है। किसानों को चाहिए, पशुपालकों को चाहिए कि गर्मी के मौसम में यदि अपने पशुओं को टीका लगवा दें इसका, और बहुत आसानी से हो जाता है
0: जी,
1: तो इस प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं
0: जी। जी
1: डॉक्टर साहब, आपने जानकारी दी और कार्यक्रम में हमारे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आपने सुनी जा भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय था पशुओं में जीवाणु जनित बीमारी व बचाव। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर ऋषि चंद और जानकारी जुटा रहे थे डॉक्टर विनय वर्मा
3: जी। बिल्कुल मीना बहन, और हमारे किसान साथी जानकारी सुनकर लाभ उठाएंगे पूरे। अब कृषि पत्रिका खेत खलियान में अगले पृष्ठ पर है लोकगीत। हम अपने किसान साथियों को एक लोकगीत से मनोरंजन करवाते हैं।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुनो जो लोकगीत, और हमें उम्मीद है हमारे किसान भैया बहन के लिए जो लोकगीत जरूर पसंद आओ होगा। और लोकगीत के बोले मैं तेरे संग नाए जाऊंगी, और सुर दोहो मृदुला निगम जी ने।
1: तो कृषि पत्रिका खेत खलियान में अगले पृष्ठ पर है विशेषज्ञ की राय।
0: तो भैया, कृषि विशेषज्ञ की राय, गन्ना में रोगों से बचाव बस सावधानियाँ, श्री वीरपाल गंगवार, और इनसे बातचीत करिए दीपक भैया ने। काका बातचीत करिए, आप सुनते हैं जा बातचीत।
2: किसान साथियों, इस समय हमारे साथ एक कृषि के सलाहकार हैं जो खेती की दवाइयों की विक्रेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया आपका नाम?
3: मेरा नाम वीरपाल गंगवार है।
2: अच्छा जी, आपका ये दुकान है, ये किस जगह पे दुकान है?
3: ये चुरई रोड चर्च के पास मीरगंज में है।
2: अच्छा, जिला
3: बरेली
2: जी। लेकिन अब बात करें, इस समय हमारे खेतों में गन्ने की फसल भी लगी हुई है, मक्का की भी किसान साथियों की फसल लगी हुई है, और आपके यहाँ पर आते हैं दवा लेने के लिए। तो आप किस तरीके से, किस दवा को किस समय पर किस तरीके से देते हैं?
3: सर, दवा जो है वो बीमारी के हिसाब से, मतलब किसान यहाँ लेने आता है, मान लीजिए उसके खेत में जैसी प्रॉब्लम होती है वो हमें बताता है, हम उसको प्रयास करते हैं वैसी दवा दें उसका, वो निवारण मतलब हो जाए। जैसे मान लीजिए इस समय जो मेन फसल है यहाँ जहाँ बैठे हैं हम लोग, ये शुगर कैन का एरिया है, फैक्ट्री यहाँ पास ही पड़ती है, तो सबसे मेन गन्ने की फसल यहाँ पे।
2: अच्छा, इस समय आपने गन्ने की फसल की बात करी, तो गन्ने की फसल में इस समय कुछ रोग लगते हैं, कुछ खरपतवार होते हैं, उनका नियंत्रण किस तरीके से किया जाना
3: चाहिए? खरपतवार की बात करें तो खास करके जैसे आपकी जो कुछ पत्ती ऐसी होती है, सगड़ी पत्ती खरपतवार होते हैं, कुछ चौड़ी पत्ती के होते हैं, और कुछ बोलते हैं कंद वर्गीय।
2: अच्छा,
3: तो जो सगड़ी पत्ती के खरपतवार हैं
2: जी,
3: और जो आपकी चौड़ी पत्ती खरपतवार

0: बोतल लगभग लगभग खत्म हो जाती है। अगर उसमें आप 248% का इस्तेमाल भी करवाओ तो 40-50 खरपतवार लगभग, और अगर ज्यादा हो रहा है उसके अंदर तो आप 240 मैट्रीबुजन अल्ट्रा जिनका भी आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। वो अल्ट्रा इनका इस्तेमाल आप गन्ने में और आप मक्का दोनों खेतों में आप कर सकते हो। मतलब जो अगर इसकी डोज की बात करें
1: जी,
0: तो 250 ml आप जो है अल्ट्राजिन, 100 ग्राम मैट्री और 500 ml 240 नॉर्मल। अगर घास है तो आप लगा सकते हैं, और घास अगर ज्यादा हो रही है, पानी की संभावना लगाने की ज्यादा बढ़ रही है, मालिक के लिए ऐसा होता है घास बड़ी हो जाती है
1: जी,
0: और आपका जो गन्ना है वो भी आपका बड़ा हो रहा है
1: जी,
0: तो उस स्थिति में इस डोज को आप बढ़ा भी सकते हो। उसको अगर मिलाने की बात करें तो पहले आप जो दवा है वो पाउडर बेस मिलाई जाती है, जैसे आपका जो अल्ट्राजिन है वो भी पाउडर बेस में आएगी
1: जी,
0: आपकी मैट्रीबुजन है वो भी आपकी जो है पाउडर बेस में होगी। 240 पाउडर बेस में आती है, बाकी लिक्विड बेस में भी आती है।
1: अगर हमारे किसान साथी इसकी स्प्रे करें तो खरपतवार की, तो क्या क्या सावधानी रखें?
0: सबसे पहले तो वो अपनी स्वयं सुरक्षा रखें
1: जी,
0: क्योंकि जो ये जितना भी लगा रहे हैं ये, तो स्प्रे करें तो आप अपने मुंह पे मास्क लगा लें, मतलब जो
1: जी,
0: और कभी कभी ये होता है कि किसान डायरेक्ट हाथ डालता है और दवाई को घोल देता है, घोल बनाते समय, तो वो ऐसा भी ना करे, कोई डंडा या लकड़ी का इस्तेमाल करे जिससे कि जो है उसकी त्वचा पे वो ना लगे। उसका कारण ये है, कभी बाई चांस ऐसा होता है कि कहीं चोट लगी हुई है आपके या वैसे कुछ है, तो दवाई जहर जब जाएगा पॉइजन, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी दे सकता है। सबसे ये कि आप घोल बनाते समय डंडे का इस्तेमाल करें।
1: जैसे हमारे किसान साथी ऐसे होते हैं जो खरपतवार की कुछ दवाई जैसे टंकी बच जाती है तो दोबारा स्प्रे कर देते हैं उसी घास, ठीक है क्या?
0: दोबारा करना उचित नहीं है, क्योंकि जो दुकानदार ने आपको दवाई दी होगी वो डोज के हिसाब से दी होगी। अगर आप रिपीट स्प्रे मारते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी फसल पे भी नुकसान कर सकती है। प्रयास यही करें कि उसको एक ही बार लगाएं, दोबारा ना लगाएं।
1: इस समय हमारा मई का अंतिम सप्ताह है और इस समय जून आने वाली है, बरसात की सीजन शुरू हो जाएगी, तो इसमें गन्ने में कौन कौन से प्रमुख कीट लगते हैं?
0: कीट की बात करें तो सबसे मेन इस समय का आपका टॉप बॉर्डर का आने की संभावना रहती है। टॉप बॉर्डर पहले भी आता है, लेकिन इस समय में दूसरी पीढ़ी आने की उसकी ज्यादा संभावना रहती है। टॉप बॉर्डर की पहचान यही रहती है खास करके, जब उसमें आपकी जो सफेद रंग की तितलियां हैं
1: जी जी,
0: वो लगभग खेतों में आपको उड़ते हुए दिखाई देंगी
1: जी।
0: अगर ऐसी स्थिति में दिखाई दे तो वो समझ लेना कि टॉप बॉर्डर कहीं ना कहीं हमारे खेत में अटैक करने वाला है जो, तो उसका पहले ही आप कोशिश करें कि उसका निवारण कर दें।
1: अच्छा।
0: अगर एक बार वो आ गया तो कहीं ना कहीं नुकसान आपको वो
1: जी,
0: मतलब ज्यादा नुकसान देने की संभावना उसमें रहती है।
1: अगर
0: ऐसे तितलियां आपकी अगर बोले
1: जी,
0: तो ये प्रयास करें कि उसमें कोई ना कोई आप पहले ही उसको नियंत्रण करें। नियंत्रण करने के लिए से आपका प्रोफेनोफास साइप्रोमेथिन भी आप ले सकते हैं और थाइमोक्सम ले सकते हैं, FS 30% भी आता है, आपका 25% भी आता है।
1: अच्छा,
0: हाँ, इसको साथ में आप मिला के भी इसकी स्प्रे कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो कुछ तितलियां पहले ही मर जाएंगी, और जो सुड़ी ने लार्वा दे दिया होगा या अंडा होगा उसका, तो वो कहीं ना कहीं मतलब सुड़ी भी मरने का काम करेगा, और आपके जो भुनके हैं और जो उड़ने वाले कीड़े हैं या चूसने वाले कीड़े हैं गन्ने में, खास करके नुकसान करते हैं रस चूसते, वो भी इससे आपके खत्म हो जाएंगे
1: जी। और हमने ये देखा है कि कुछ गन्नों में जो है जड़ में जो है बीमारियां लग जाती है, उसकी रोकथाम के लिए क्या करना?
0: जड़ में खास करके क्या है, ये जितने भी रोग हैं लगभग लगभग फंगस की वजह से ही आते हैं।
1: अच्छा,
0: अभी आपने देखा हो खास करके जो 038 वैरायटी हमारे यहाँ पे है
1: जी,
0: वो लगभग लगभग धीरे धीरे बीमारी की ग्रस्त हो जाती है, जड़ एकदम काली पड़ जाती है और वो सूखने लगती है मतलब
1: जी,
0: और उसका लगभग लगभग कोई तोड़ या वो कुछ लगभग अभी कोई ज्यादा दवाई भी काम उस पर नहीं करती है। उसका एक ही चीज है जो
1: जी,
0: सबसे मेन है गन्ने का जो बीज उपचार है
1: जी,
0: वो अति आवश्यक है। असल में होता क्या है, दुकानें भी हैं, फैक्ट्रियां भी दवाई देती हैं या वैसे भी करती हैं, तो ये ज्यादातर जो है मतलब सीड ट्रीटमेंट पे ध्यान किसान भी कम देता है और वैसे भी लोग जो है कम देते हैं। खास करके सीड ट्रीटमेंट गन्ने का अति आवश्यक है। जिस समय गन्ने की आप बुवाई कर रहे हैं तो उस समय ध्यान ये रखें, जो तो काटते हैं बीज से
1: जी जी,
0: तो 2 से 3 पोई से ज्यादा मतलब वो ना कटे। उसका एक कारण ये भी है काटने का कि गन्ने में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं
1: जी।
0: आप जितना छोटा गन्ना काटेंगे वो हार्मोन्स वहीं रुक जाएगा और उसका जर्मेशन उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए कहते हैं गन्ने की 1 से 2 पोई 3 पोई से ऊपर का ज्यादा गन्ना मतलब ना काटें बुवाई समय। दूसरी चीज वही ये कि उसमें फंगस जो आता है
1: जी,
0: उसके निवारण के लिए आपको उस समय ही उसकी जो रोकथाम करनी है, तो उसके लिए आप जैसे आपका वो थायफिड मिथाइल भी ले सकते हैं इस समय पे।
1: इनकी मात्रा क्या रखनी चाहिए?
0: मात्रा 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से वह डलवाते हैं।
1: अच्छा,
0: ठीक है, अनाज में। तो
1: आपने बीज उपचार की बात करी, तो कहीं बीज होते हैं कि हमारे किसान साथी उसका जो है बीज उपचार नहीं कर पाते हैं, फिर फसल लगा देते हैं तो फिर उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है, बीमारी तरह तरह की।
0: रोग जो आने का तरीका है वो 3 प्रकार से आता है
1: जी।
0: एक आपका एयर बॉन्ड, सीड बॉन्ड और सॉइल बॉन्ड
1: जी।
0: सॉइल बॉन्ड का मतलब है यानी मिट्टी के माध्यम से
1: जी।
0: एयर बॉन्ड का माध्यम है यानी हवा के माध्यम से
1: जी।
0: सीड बॉन्ड का माध्यम है यानी बीज के माध्यम से
1: जी।
0: जब आप गन्ने में शुरू में दवाई डाल रहे हैं, सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने जो जो गन्ने से जो बीज रोग आने वाला है वो लगभग आपका नहीं आएगा, वो हम उसका पहले ही

0: कंट्रोल करके चल रहे हैं।
1: दूसरा
0: जो हमने दवाई मिट्टी में मिलाई तो जो मिट्टी से जो रोग आएंगे वो भी लगभग हम कंट्रोल कर लेंगे।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान साथियों को, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि पत्रिका खेत खलियान में अब अगले पृष्ठ पर हैं बाजार भाव। तो अनाज की बात करें तो भैया गेहूं को भाव रहो 2500 रुपये प्रति कुंटल, और सामान्य चावल की बात करें तो 3000 से 3300 रुपये प्रति कुंटल।
3: और भैया अगर हम सब्जी की बात करें तो मटर को भाव रहो 1200 रुपये प्रति कुंटल, और अगर हम आलू की बात करें तो 600 रुपये प्रति कुंटल, और प्याज की बात करें तो 12000 रुपये प्रति कुंटल, और बैंगन की हम बात करें तो 15000 रुपये प्रति कुंटल। भैया
2: देखो, और फल की बात करें हम तो केला को भाव रहो 2400 रुपये प्रति कुंटल, और सेब की बात करें तो 6000 रुपये प्रति कुंटल, और अनार की बात करें तो 6200 रुपये प्रति कुंटल, और पपीता की बात करें तो 2000 रुपये प्रति कुंटल। और भैया दाल की बात करें तो चना को भाव रहो 6000 रुपये प्रति कुंटल, और अरहर दाल की बात करें तो 6000 रुपये प्रति कुंटल, और मूंग दाल की बात करें तो 9000 रुपये प्रति कुंटल, और मसूर की दाल की बात करें तो 7000 रुपये प्रति कुंटल अनाज को इनको दाल को भाव रहो। तो कृषि पत्रिका खेत खलियान किसान साथियों यहीं तक।

0: अब समय हो चलो कार्यक्रम में कृषि संकेत को।
1: हाँ भैया, और
0: कृषि संकेत में है भूमि संरक्षण के लिए मेड़बंदी कितनी जरूरी है। हाँ, तो मीना बहन बताओ हमारे किसान साथी इनको, बरसात को मौसम आएगा हुआ तो का करें।
1: हाँ दीपक भैया, बरसात को मौसम धीरे धीरे करीब आ रहा है, खेतों में तैयारी भी शुरू हो गई है, लेकिन कई बार किसान भाई मेहनत तो पूरी करता है फिर भी खेत की उपज कम हो जाती है। वजह होती है मिट्टी का बह जाना। खेत की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी अगर पानी के साथ बह जाए तो समझिए खेत की ताकत ही कम हो गई है।
0: बिल्कुल सही बात कही मीना बहन। गांव में जो हमारे पुराने जो लोग होते तो वे कहते कही भैया, मिट्टी बची तो हमारी खेती बची, और आज कल तेज बारिश होए तो बहाव में जो है मिट्टी बह जाती है। जो अच्छी मिट्टी होती है भैया निकल जाती है, तो इससे जो है हमें मेड़बंदी अवश्य कर लें जिससे जो उपजाऊ मिट्टी हमारी ना कटे।
1: हाँ भैया दीपक भैया, पहले गांव में खेतों के चारों तरफ मजबूत मेड़ बनाई जाती थी, इससे बारिश का पानी सीधे नहीं बहता था, पानी थोड़ी देर खेत में रुकता था जिससे नमी बनी रहती थी और मिट्टी से सुरक्षित रहती थी। अब कई जगह किसान जल्दी के चक्कर में मेड़े हटाए देते हैं और लेकिन बाद में नुकसान दिखाई देता है। भैया
0: सही बात कही। देखो मेड़बंदी को सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि मिट्टी को कटाव तो रुक जाता है, जब पानी धीरे धीरे खेत में चलता है तो भैया जमीन की जो पानी होती है, पानी होता है वह हमारी जमीन पूरा सोख लेती है, जिससे जो है हमारा जो जल को स्तर होता है वो अच्छा बना रहता है, और जिन खेतों में मेड़बंदी मजबूत होती है वहाँ पर खेती भी भैया बहुत अच्छी होती है।
1: एक बात और भैया, किसान भैया बहन ध्यान रखें कि मेड़ सिर्फ मिट्टी की दीवार नहीं होती है बल्कि खेत की सुरक्षा होती है। भैया अगर मेड़ चौड़ी और मजबूत बनाई जाए तो उसमें घास या छोटे पौधे भी लगाए जा सकता है, इससे मेड़ और मजबूत हो जाती है। भैया
0: हाँ बहन, कई किसान मेड़ों पर जैसे अरहर है और सहजन है या जो नेपियर घास आएगी ये बाको लगा दें, जिससे जो है दोहरों फायदा हो जाता है।
1: हाँ भैया
0: देखो बास है जो है हमारी मेड़ की जो है सुरक्षा बनी रहती है, और जो पशु उनको चारा होता है ना वो मिल जाता है, और जो गांव में भी ये पुरानी खेती के तरीके आज भी काम में आ रहे हैं।
1: हाँ दीपक भैया, बरसात के दिनों में अक्सर देखा जाता है कि पानी तेजी से बहकर नालों में चला जाता है, अगर खेतों में सही मेड़बंदी हो तो वही पानी खेत की नमी बढ़ाने में काम आता है, इससे बार बार सिंचाई की जरूरत भी कम पड़ती है। भैया
0: बिल्कुल।

0: तो खेतों में जो है मेड़बंदी की अब बहुत ज़रूरी है भैया। देखो खरीफ का मौसम चल ही रहा है अब, और बाद में जो है कुछ हमारे किसान साथी धान थोड़े समय के बाद लगाएंगे,
1: हाँ
0: तो
1: भाई,
0: मेड़बंदी जो है भैया अवश्य कर लें। और अब हम बता दें अपने किसान साथियों को कल के कार्यक्रम को। तो
1: हाँ भाई,
0: कल के कार्यक्रम में चर्चा हुई चौधरी चरण सिंह पुण्यतिथि पर, और कल कार्यक्रम में जो है कार्यक्रम हो लोक मंजरी, और बाद में जो है मौसम होए, और कल के मौसम का अनुमान बता दें। कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और आर्द्रता की बात करें तो 51%, और हवा की बात करें 26 किलोमीटर प्रति घंटा, और वर्षा की बात करें तो 30% रहने की उम्मीद है। तो किसान साथियों हमारा कार्यक्रम कैसो लगो जाके लय हमारे किसान साथी हमारे लय पत्रों लिख सकते हैं, और भैया कार्यक्रम में कुछ हमारे बदलाव करेंगे उनमें फ़ोनों कर सकते हैं। तो हम अपने किसान साथी उनको बता दें अपने कार्यक्रम को पतो। कार्यक्रम है कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन है 2449-01। तो कार्यक्रम में अब समय ना बचो जो और बातें करी जाती हैं, इसलिए जो है कार्यक्रम से अपनी बह अपने भैया दीपक
1: और अपनी बहन को मीना को दो अनुमति।
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत वर्तमान समय में सामाजिक संगठनों की भूमिका, इस विषय पर अवतार सिंह से असीम सक्सेना की ये भेंटवार्ता।
1: श्रोताओं नमस्कार। मंजिल मिले मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। एक कारवां लेकर चले हैं, वो सबको साथ लेकर सामाजिक मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए, और हमारा ये सौभाग्य ही कहूँगा मैं कि वो आज हमारे साथ हैं। रामपुर की जानी मानी शख्सियत, जिनका अपना नाम है, जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, छवि है, श्री अवतार सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रामपुर के स्टूडियो में। अवतार सिंह जी, एक संगठन का आप नेतृत्व करते हैं, और वो संगठन ऐसा है जो हर सुख दुख दोनों घड़ियों में लोगों के साथ खड़ा है। लोग उससे अपना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, अपने परिवार की तरह मानते हैं, और हर बात साझा भी करते हैं। तो संगठन को लेकर आपके मन में ये जो विचार था, सबको साथ लेकर चलने की बात थी, ये क्यों करा गई?
2: पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये आप लोगों के बीच बैठा हूँ और अपनी बात रखने का आप समय दे रहे हैं। देखिए, संगठन बनाना बहुत आसान होता है, संगठन कोई भी बना सकता है, लेकिन जिम्मेदारी तब होती है जब संगठन को चलाया कैसे जाए, उसका विस्तार कैसे किया जाए, और जो रूपरेखा हमने संगठन चलाने की होती है उस पर कैसे अमल किया जाए। 9 जनवरी 2004 को हमने एक संगठन वीर खालसा सेवा समिति गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में कुछ लोगों के, कुछ युवा लड़कों के साथ बनाई थी, और यही संकल्प था। उसमें दो चीजें हमारी प्राथमिकता थी, गरीब बच्चियों की शादी में सहयोग और खून के बिना किसी की जान ना जाए। ये दोनों चीजें मन में रखी और इन दोनों चीजों का संकल्प लिया, और इन दोनों चीज़ों को तो रखा ही रखा। दो चीज़ों की जो सोच थी कि एक खून की कमी नहीं होने देंगे ब्लड बैंक में, एक गरीब लड़की की शादी में जो भी हम दहेज नहीं कहते, सहयोग समान देना, वो देते रहेंगे। आप यकीन करें, ये दो चीज़ें हमने प्राथमिकता रखी, हम इस पर ही निर्भर रहे, इसके अलावा ये तो करते ही चलेगा। लेकिन तमाम लोगों का प्यार, सभी धर्मों के लोग, हम पता नहीं कौन कौन से काम निस्वार्थ सेवा से रामपुर के अंदर, आसपास के शहरों में, इसके अलावा भी गरीब लड़कियों को सिलाई मशीन रोजगार से, मजदूरों को साइकिल, गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद, फीस में मदद, जेल के अंदर कैंप लगाने, गुरुद्वारे के अंदर स्वास्थ्य शिविर लगाने, अनेकों ऐसे काम हैं, बहुत लंबी लिस्ट है मैं आपको बताऊं तो। हम लोग सिर्फ एक गरीब लड़की की शादी, सहयोग और रक्त के अलावा भी और भी सामाजिक कार्यों में बहुत युद्ध स्तर पर रामपुर के अंदर कार्य कर रहे हैं।
1: बीते सालों में आपके जो काम हैं वो लोगों के जहन पर भी लिखे हुए हैं और लोगों के दिलों पर।

0: लिखे हुए हैं। आज पता नहीं क्यों मुझे आपको देखकर बार बार कुछ शेर याद आ रहे हैं। एक शायर ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये कारवां आपने कैसे बढ़ाया लोगों को साथ लेकर, क्योंकि किसी को भी मुतमईन करना, किसी को भी संतुष्ट करना, किसी को भी अपने साथ लेकर चलना खासा मुश्किल है, क्योंकि सबकी अपनी सोच है, अपनी अलग विचारधारा है।
1: चोरी नहीं, बेईमानी नहीं, किसी का अगर काम किया तो पानी पीना भी हराम है। ये चीज़ें हमारी पहले भी कायम थी, आज भी कायम है। कोई व्यक्ति नहीं सिद्ध कर सकता कि हमने अगर किसी की किसी स्तर से, छोटे स्तर से, बड़े स्तर से मदद करी हो तो हमने उसके साथ विश्वासघात किया हो या किसी का कोई लालच किया हो। ये इसी ईमानदारी का हमारा कारवां बढ़ता गया, लोग सभी धर्मों के हमसे जुड़ते गए। जितने भी आज राजनेता या अधिकारी हमें प्यार करते हैं, वो हमारी सेवाओं को प्यार करते हैं, हमारी सच्ची सेवाओं को प्यार करते हैं। इसी से ये कारवां आगे पता नहीं कितना आगे निकल गया, ये तो हमें भी नहीं पता।
0: अच्छा, बहुत सारी यादें आपके जहन में ज़रूर होंगी, कुछ खास यादें जो हमारे श्रोताओं के साथ आप अपने इस सफ़र की बांटना चाहें।
1: देखिए, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में दान देने से पहले अगर हमारे पड़ोस में या हमारे सामने कोई भूखा या जरूरतमंद है तो पहले उसकी मदद करें। अगर हम सक्षम हैं किसी की मदद करने के लिए तो हमें निस्वार्थ सेवा से उसकी मदद करनी चाहिए।
0: हमें याद है कोविड का वो दौर जब आपके संगठन ने, आपके संगठन के लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की मदद दिन रात की थी। तो
1: देखिए, कोविड में तो सुबह से शाम तक हम घर से निकल जाते थे। हमने कभी कोविड वोविड चेक नहीं कराया, ऊपर वाले की कृपा से हम सही भी रहे, हमें कभी कोविड भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक तरफ हम कच्चा राशन लेकर जाते थे घरों में जिनके पास राशन नहीं होता था, एक तरफ हमारी दूसरी टीम पका हुआ राशन लेकर जाती थी। जो लोग बाहर से रामपुर के अंदर
0: जी
1: एंटर
0: जी जी
1: करते थे
0: जी
1: उनको
0: जी
1: हम पका हुआ राशन और साथ में पानी, जो जो चीजें चाहिए थी वो देते थे। शासन की तरफ से हमें डेली कई सौ लोगों की लिस्ट आती थी और वो लिस्ट के माध्यम से, उनके कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से हम उनको घर तक पहुंचा के आते थे राशन को। और आपको मैं बता दूं कि जिस दिन ऑक्सीजन वाला जब वेयर आया तो हमने अपनी आंखों से मौतें देखी हैं अस्पताल के अंदर। डीएम रविंद्र कुमार मादर जी ने हमारी सेवा लगाई थी कि आप जिला अस्पताल के अंदर, क्योंकि वहां पे सारी कैंटीनें बंद हैं और कोई भी खाने का साधन नहीं है, परिवार के लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो आप खाने की व्यवस्था सुबह शाम की करो। तो हमारी पूरी टीम सुबह शाम जाती थी और जो मरीज हम दोपहर को देखते थे, मुझे लगता वो शाम को नहीं मिलता था, डेथ हो गई थी। हमने अपनी आंखों से मौतों को देखा है। लेकिन सेवा भावना, हमने कोरोना काल में ब्लड कैंप लगाया, तो हमारी ये निस्वार्थ सेवाएं भगवान भी देख रहा है, आप लोग भी देख रहे हो।
0: इस समय संगठन में आपके साथ कितने लोग हैं और किस तरह से वो आपकी गतिविधियों में शामिल हैं?
1: देखिए, रामपुर जिले क्या, आसपास के अगर हम दूसरे शहरों में जाएं तो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी लोग निस्वार्थ सेवा भावना से काम कर रहे हैं। इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख समाज के लोग भी हैं, और हमने समाज की सेवा करनी है, किसी धर्म की सेवा नहीं करनी, मानवता की सेवा करनी है। और वो चाहे किसी भी स्तर पर हो तो हम लोग वो सेवा भावना से काम कर रहे हैं, करते रहेंगे और आखिरी दम तक आगे भी करते रहेंगे।
0: अवतार सिंह जी, समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके बारे में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। आपने बहुत सारे ऐसे मुद्दों को छुआ है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की शादी को लेकर आपने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, शिक्षा को लेकर भी आपके विशेष प्रयास रहे हैं, तो उस पहलू के बारे में जानना
1: देखिए,
0: चाहेंगे।
1: शिक्षा का स्तर आजकल के समय में बहुत जरूरी है। आजकल शिक्षा के बगैर हम बिल्कुल अधूरे हैं। अब हर चीज़ हम फेसबुक पे या अखबार में नहीं देते, हम कई ऐसे बच्चे हैं, हमारे पास लिस्ट है कई, जिनकी पढ़ाई में हम पूरी की पूरी फीस की मदद करते हैं। उनकी ड्रेस, कॉपी, किताबें, हमने तो एक बार कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चों का भी एडमिशन स्कूल के अंदर कराया। तो हम तो ऐसे, अब भी कभी कोई बच्चे अगर आ जाते हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ाओ, हम सक्षम नहीं हैं, तो शिक्षा के स्तर से मैं उनको कभी मना नहीं करता हूँ। और शिक्षा का स्तर हमेशा हर घर में होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता रही और आगे भी रहेगी।
0: अवतार सिंह जी, कोई भी काम करने चलो तो चुनौतियाँ आपका रास्ता ज़रूर रोकती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका सफ़र भी बहुत आसानी के साथ आगे बढ़ता रहा। बहुत सारी दिक्कतें भी आई होंगी, बहुत सारी रुकावटें भी आई होंगी जिनसे आपको दोचार होना पड़ा होगा।
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये वाकई ही है कि बिल्कुल सही बात है, चुनौतियाँ भी आई हैं, कठिनाइयाँ भी आई हैं, और लोग आगे बढ़ते को रोकने के लिए भी कोशिश करते हैं कि ये कल का लड़का, ये आज आगे चला गया है, इसकी इतनी बात है, इतनी बात है। तो आप भी आगे आओ, आप ये आगे बढ़कर छोटी लकीर के सामने

0: की कोई चीज़ चाहिए तो वो उनको दे और उनको हम समझाएं, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है हम सहयोग करने के लिए ले आ रहे, लेकिन स्वच्छता हमारे घर में बाहर आजकल के समय में बहुत ज़रूरी है। और ऐसी चीज़ें ना खाएं जो ठेलों पर हम लोग आम बच्चों को खिलाते हैं, जिससे कि वो बीमार होते हैं, फिर हम उनका इलाज भी नहीं करा पाते हैं और आखिर हमें उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है।
1: अवतार सिंह जी, शुभ संकल्पों के साथ आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। आज बहुत सारे श्रोता आपको आकाशवाणी रामपुर के इस कार्यक्रम में सुन रहे हैं, अपने दिल की बात उनसे आप अगर करना चाहें, कुछ कहना चाहें।
0: देखिए, मैं तो बस इतना ही कहूँगा, रामपुर शहर भाईचारे का शहर है, तो मैं समझता हूँ, मैं अपने सौभाग्य समझता हूँ कि मैं रामपुर शहर में पैदा हुआ हूँ और यहाँ सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्मों के सम्मान के साथ आपस में प्यार भी रखते हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि ये प्रेम और प्यार आगे भी रामपुर शहर में बना रहे।
1: हमारी भी ये शुभकामना आपके लिए है कि जिस मकसद के साथ आप ईमानदार कोशिश करते रहे हैं, ये कोशिशें आगे भी जारी रहें, लोगों का साथ आपको मिलता रहे और उन लक्ष्यों को आप प्राप्त कर पाएं जो आपके मन में हैं, जिनको पाने की आपने कोशिश की है। आकाशवाणी रामपुर के स्टूडियो आने के लिए अवतार सिंह जी, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।
2: अभी आपने सुना वर्तमान समय में सामाजिक संगठनों की भूमिका, इस विषय पर अवतार सिंह से असीम सक्सेना की भेंटवार्ता। कार्यक्रम था विविधा, हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर यानी 7:31 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज आपको सुनवाई जाएंगी सखावत हुसैन की कुछ गज़लें। साथी कलाकार होंगे जुनेद अख्तर। समय याद रखिए शाम 7:31 पर। रात्रि 8 बजे होगा फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस में कुछ गज़लें। आज के कलाकार होंगे श्री बोनी भट्टाचार्य, तबले पर संगत करेंगे मोहम्मद उस्मान और सिंथेसाइजर पर होंगे गुलवेज। साथी कलाकार होंगे ओमकार व साथी। रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे रमेश उपाध्याय का लिखा नाटक अपने अपने दायरे। समय याद रखिए रात्रि 10 बजे। रात 10:30 पर होगा फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीतांजलि। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।
1: जल के बिना तो जल जाओगे, पानी की एक बूंद बिना तुम कैसे प्यास बुझाओगे।
2: कीमत समझो पानी की अब, वरना फिर पछताओगे।
3: रिश्ते नाते पीछे होंगे जब जल की होगी मारा मारी। रुपयों से भी जल न मिलेगा, जल की होगी पहरेदारी।
2: जल है तो कल है,
3: यही चिंतन पल पल है।
4: पानी को बचाकर रखिए, इसका सदुपयोग कीजिए।
5: सच्ची कहानी है पानी, जिंदगानी है सच्ची कहानी है पानी,
0: जिंदगानी। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:18 होने वाले हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ, कहा किसानों की आजीविका को बेहतर और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्लांट का किया उद्घाटन, कहा शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का किया जा रहा है उपयोग। अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार, प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई नमाज। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाएं चलने का जताया अनुमान, लोगों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय, और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में आज दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। श्री चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री सिंह ने कहा कि दो दिन का यह सम्मेलन खरीफ कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए एक रोड मैप तैयार करने में सहायक होगा।
4: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिला के जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है।
3: सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा और समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
5: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता और मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर आवासीय एवं कार्य सुविधाएं आवश्यक हैं। उन्होंने पुलिस लाइन, थाना बैरक, अग्निशमन केंद्र के कार्य गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निवेशकों को सहयोग उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। एनटीए ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आज लखनऊ में जोन 4 के भैंसोरा क्षेत्र में अत्याधुनिक फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन प्लांट का उद्घाटन किया। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह प्लांट प्रतिदिन 150 टन कूड़े के निस्तारण की क्षमता रखता है। इस दौरान महापौर सुषमा खरकवाल भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है।
6: लखनऊ ऑलरेडी शिवरी में और भेला में 20 लाख टन कूड़े का निस्तारण करके देश में एक चुनिंदा शहर बना है। लखनऊ ऑलरेडी स्वच्छता सर्वेक्षण में 30वें स्थान पर आकर के देश में अपना नाम बना चुका है। अब ये 51 ट्रांसफर स्टेशन जो इस तरह से बन रहे हैं उनकी वजह से लखनऊ नगर में कहीं भी कूड़े का बड़ा ढेर जो है खुले में नहीं दिखेगा। सब कुछ कॉम्पैक्टिंग होगी, सब कुछ बंद गाड़ियों में ट्रांसफर होगा।
3: इस अवसर पर महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य लखनऊ को देश के सबसे स्वच्छ और हरित शहरों में शामिल करना है।
7: आज लखनऊ स्वच्छता में एक कदम और आगे बढ़ा है। भरवारा मल्लौर वार्ड में भी हमने ट्रांसफर स्टेशन लगाया है जिसका आज उद्घाटन हुआ है। आने वाले समय में हमारे कम्प्लीट 51 ट्रांसफर स्टेशन बन जाएंगे, 24 पूरे हो गए और लखनऊ में कहीं भी कूड़ा ना दिखे इसका मेरा पूरा प्रयास है।
3: अयोध्या में कल 29 मई को राम मंदिर परिसर में परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितंभरा ध्वज फहराएंगी। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
8: पहली बार राम मंदिर परिसर में 3000 से अधिक मातृ शक्तियों का एक साथ समागम होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु समारोह में शामिल होंगी। सभी आमंत्रित मेहमानों को QR कोड युक्त प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। शाम 6 बजे माँ भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी रितंबरा और साध्वी निरंजन ज्योति ध्वजारोहण करेंगी। कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में उत्साह का माहौल है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
3: ईद उल अजहा का त्यौहार आज प्रदेश भर में अकीदत और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। राजधानी लखनऊ में सुन्नी समुदाय के लोग ऐशबाग ईदगाह और टीले वाली मस्जिद में नमाज में शामिल हुए। वहीं शिया समुदाय ने आसिफी मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज के दौरान लोगों ने देश में अमन चैन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। एक रिपोर्ट।
9: लखनऊ में ईद उल अजहा का पर्व आज सुबह नमाज अदा करने के साथ शुरू हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर की विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इसके बाद एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फरंगी महली और अन्य मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुसलमानों से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है। मौलाना खालिद ने बताया कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए 12 बिंदुओं की एडवाइजरी जारी की है। त्यौहार के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नगर निगम ने भी 30 मई तक पूरे शहर में साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश कर्मचारियों को दिए हैं। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: अयोध्या, बाराबंकी, पीलीभीत, श्रावस्ती, प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर और कौशाम्बी सहित विभिन्न जनपदों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में नमाज अदा की गई। आगरा में ताजमहल परिसर स्थित मस्जिद में नमाज के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। ईद उल अजहा के अवसर पर आज देशी विदेशी सैलानियों के लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश दिया गया। प्रदेशवासियों को पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर आज से 31 मई के बीच आंधी बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। कई स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का किया जा रहा है उपयोग। अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई नमाज। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाएं चलने का जताया अनुमान। लोगों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब आप सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज आपको सुनवाई जा रही हैं कुछ गजलें। आज के कलाकार हैं सखावत हुसैन।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुन रहे हैं सखावत हुसैन की कुछ गज़लें।

अभी आप सुन रहे थे सखावत हुसैन से कुछ गजलें। कार्यक्रम था सुगम संगीत। साथी कलाकार थे जुनैद अख्तर। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, अब वक्त है फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम का, जिसका नाम है गीत गाता चल।

कार्यक्रम गीत गाता चल में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए अपने रेडियो साथी अंकुर राजपूत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले तो हमारे सभी सुनने वालों को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमें मौका मिला है आपकी फरमाइशें पूरी करने का। देखते हैं सबसे पहली फरमाइश हमारे किन श्रोताओं की मिली है। ये पहली फरमाइश हमारे पास आई है कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरा अब्बासी परिवार। ये अगली फरमाइश हमें भेजी है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा आफरीन, शमीम अख्तर अंसारी। आप सभी ने सुनना चाहा है इसी गीत को। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर, साथ में इनके समस्त परिवार के सदस्य। जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया बिटिया अलीशा, शकील फहीम, मोहम्मद यासीन अंसारी और साथ में हैं सुदेश चौहान। लालमाता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से ये फरमाइश हमें भेजी है हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से। इन्हीं के साथ हैं मनभावन, शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण, फुंदीबाई बागरी और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये अगली फरमाइश हमें भेजी है नमस्कार के साथ अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मेहरोत्रा, गाविया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव और इनके परिवार के सभी सदस्य और साथी। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, ये आदाब और नमस्कार के साथ जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर और इनके परिवार के सभी सदस्य। सप्रेम नमस्कार के साथ ये मैसेज हमें मिला है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और निशा गोस्वामी का नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। ये अगली फरमाइश हमें भेजी है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, इन्हीं के साथ हैं दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कलां जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये अगली फरमाइश हमें भेजी है सरोज चौक अमरावती
से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, शोएब खान, साइमा खान, पुत्र मुस्तफ़ा खान और आफिया खान, शाहिद भाई, राहू भाई और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये अगली फरमाइश हमारे पास आई है ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर और इनके परिवार के सभी सदस्यों की। ये आदाब के साथ अगला मैसेज हमें मिला है पाकिजा रेडी श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री और आपके सभी साथियों का। जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक लोलावानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी और इनके परिवार के सभी सदस्य। श्रोताओं, आप सभी ने सुना चाहा है फिल्म मर्यादा में आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी को।

श्रोताओं, अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है हमारे आप सभी साथियों ने। मेहनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत का वाहन कर रही श्रीमती सरिता का वाहन कर, प्रिंस एकांश का वाहन कर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता, सिद्धांत, टुक टुक और इनके परिवार के सभी सदस्य, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शलेश, सुमित, कुमारी धोनी और परी। इसी गीत की फरमाइश की है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू, हसमुख लाल, बुलबुल, शक्ति, संजीव, बंटी और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत की फरमाइश आई है कुलम रोड हरगोबिंद नगर नवान शहर से सुरिंदर संधू, अनीता संधू, रोहित, रितेश, शिखा संधू, प्रतीशा और मैक्स। नमस्कार के साथ ये फरमाइश हमें भेजी है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये ने। गांव खावरी अव्वल से चौधरी राजवीर सिंह और चौधरी अव्याना कंचव और इनके परिवार के सभी सदस्य। आदाब के साथ ये अगली फरमाइश हमें भेजी है कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। नमस्कार के साथ ये अगली फरमाइश हमारे पास आई है मोहला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर की। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे।

साथ में हैं स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका चौधरी और इनके परिवार के सभी सदस्य। याद आपके साथ फरमाइश हमें भेजी है गांव कुम्हार हिड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब हसन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

ये अगली फरमाइश नमस्कार के साथ हमें भेज रहे हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और आरती कुमारी।

सिंधौली मीरगंज से ये फरमाइश हमें भेज रहे हैं जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, साथ में हैं करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और इनके परिवार के सभी सदस्य। बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा। आदर्श नगर मालवट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा, निवान शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। श्रोताओं, आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म जमीन आसमान में आशा भोसले और आर डी बर्मन को, तो आप सभी की फरमाइश आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और साथ में है राजेंद्र जी। आपने ये फरमाइश भेजी है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। ये अगली फरमाइश हमें भेजी है मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने, आदर्श नगर मलोट पंजाब नगर पंजाब से। इसी गीत को सुनना चाहा है चौधरी महेंद्र सिंह ने मथुरा वृंदावन से। साथ में हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, सुनील पाठक, जयपाल यादव, विनोद पुरी, अनिल बुरांडे, राजेंद्र नारंग, हनुमान शिंदे, जसवीर सिंह, कमल बालूजा, उमंग मलिक, जॉन डिकैस्ट्रो, हीरामणि वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष, मनीष, अंशिका, यूनुस खान और सोफिया खान। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम करेली जिला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी, शमीम अंसारी, माहेनूर और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये अगली फरमाइश हमारे पास भेजी है राजद्वारा रोड मीठा कुंवर रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित, अभय, रिया, आरुष और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। नमस्कार के साथ ये अगली फरमाइश हम तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य। नमस्कार के साथ ये फरमाइश भेजी है जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत नायक और इनके साथ हैं सुरेश चौरसिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाड़ी, शालनी, टिवांशी, वाणी खेड़ा और साथ में है आरबी खेड़ा। ईद की मुबारकबाद के साथ ये मैसेज हमें भेजा है मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी ने। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहारकार, नर्मदा पोहारकार और कुमारी सुजाता पोहारकार ने ये फरमाइश हमें भेजी है। परेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन, अभिजोत, आप सभी ने ये पत्र भेजा है करणवीर हाउस भूचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से। नमस्कार के साथ हमें आपने ये फरमाइश भेजी है। ये अगली फरमाइश हमें मिली है ईद की मुबारकबाद के साथ जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता आहूजा की। रथ चौक बहादुरपुर खानदेश से संतोष कुमार सोनार,
आपने ये नमस्कार के साथ हमें संदेश भेजा है। सलाम के साथ और मुबारकबाद के साथ साथ ये हमें मैसेज भेजा है। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी और बेबी बाय हिमाक्ष ने ये अगली फरमाइश हम तक पहुंची है। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया, सोनू और इनके परिवार के सभी सदस्यों की। गांव नथाना से पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता और गीता, आप सभी ने ये फरमाइश भेजी है। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म रखवाला में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को, तो श्रोताओं आप सभी की फरमाइश पहुंचा रहे हैं आप तक।

श्रोताओं कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें भेजी है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर से मालती चौधरी और इनके परिवार के सभी सदस्य, साथ में हैं प्रज्ञा चौधरी और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये अगली फरमाइश हमें भेजी है राजद्वारा कोठी अफसर आला से रूमा खान, बॉबी खान, मदीहा खान, सुभान खान, शबनम अब्बासी, गुलफशा, जीना तमान और शमा परवीन ने। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी और इरफान खान ने। ये अगली फरमाइश हम तक पहुंचा रहे हैं नमस्कार के साथ सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद, तरुण यादव, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन, आशिक हुसैन, मुन्ना अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य और साथी। आप सभी ने सुनना चाहा है इसी गीत को। ये फरमाइश हमें मिली है इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल से मोहन सिंह रावत, ममता रावत और वानिया की। आप सभी ने ईद उल जुहा की हार्दिक बधाई भेजी है, आपको भी बहुत बहुत बधाई। ईद की बधाई के साथ जलालाबाद वेस्ट से सुरेज गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता हुजा। ये अगली फरमाइश हम तक पहुंचाई है

इसी गीत को सुनना चाहा है हमारे आप सभी साथियों ने। मोहल्ला मज़ार चाँद मियाँ, मज़ार चाँद शाम मियाँ, रामपुर से मोहम्मद रमज़ान साहब, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चांदनी, अनमता और आशु भाई, इन्हीं के साथ हैं बिस्मिल्ला मस्जिद रामपुर से फौजिया रोशनी, शायना काजल और भाई शहजाद अली। इसी गीत को सुनना चाहा है हमारे आप सभी श्रोताओं ने। मेरठ कैंट से मैसेज भेजने वाले हैं दिग्दर्शन और कविता, ये अगली फरमाइश हमें भेजी है। ईद मुबारक, सलाम और आदाब के साथ। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा आफरीन और शमीम अख्तर अंसारी ने। ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, इसरार, नरगिस खातून ने ये फरमाइश हम तक पहुंचाई है। श्रोताओं, आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और आशा भोसले को। फिल्म का नाम है शारदा।

इसी गीत की मेरी जुली फरमाइश हम तक पहुंचाई है। अभी अभी हमें ये मैसेज मिला है पुणे से, पंकज वड़ोदे, आर्या, प्रियंका, चंद्रप्रभा वड़ोदे और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से चंदा, चांदनी, आकाश कुमार और उनके मम्मी पापा सुनील कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाहते हैं। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। अजीत कसाना जी का ये मैसेज, नमस्कार।

कार के साथ हमें मिला है माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना लदावली मुरादाबाद से, ये हमें मैसेज भेज रहे हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और आपके सभी साथियों का ये मैसेज हमें मिला है। इसी गीत की फरमाइश आप सभी ने की है। श्रोताओं, आप सभी की फरमाइश आपके रेडियो सेट्स पर।

इसी गीत की फरमाइश हमें भेज रहे हैं मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना, ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश, प्रथव सिंह और इनके परिवार के सभी सदस्य। वार्ड नंबर एक पुफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंह सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ज़िला मुरादाबाद ग्रीम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा। वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदूरकर, तेजस्विनी चौहान, माई इंदूरकर, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान, आप सभी ने ये फरमाइश भेजी है। गांव चौहलदा बागपत से संजय ढेंगिया, नमन ढेंगिया, अपार ढेंगिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। नूरमहल महसोल सीतामणि बिहार से मुसर्रत जहां, नाज, तलत जहां, फरज जहां, रिफत जहां, नुजत जहां, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज और इनके परिवार के सभी सदस्य। वाड़ी खाम गांव से अनंता वाड़े, रामेश्वर वाड़े, शुभम, साक्षी, खुशी और समस्त वाड़े परिवार। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी और इनके परिवार के सभी सदस्य। बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सभा सेरे और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बहार हुसैन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, यूसुफ सिद्दीकी, सिफान और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी वोड़के, श्रीमती नंदा वोड़के, हनुमान वोड़के और उत्तम जमदाड़े।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाथा चल। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzone.ai

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चिराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की।

प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हुआ था कि दो या तीन पाकिस्तानी दहशतगर्द यहां छुपे हुए हैं। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया और अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पेचिंग में भारत चीन सरहदी मामला पर मुशावरत और तालमेल से मुतालिक वर्किंग निजाम की 35वीं मीटिंग के दौरान यह तबादला ख्याल किया गया। तरफेन ने हदबंदी, सरहदी बंदोबस्त, तरीक़ेकार तय करने और सरहद के दोनों तरफ इश्तराक से मुतालिक मामला पर बातचीत की। आलमी शोहरत याफ्ता उर्दू शायर और अदबी शख्सियत बशीर बद्र का आज भोपाल में इंतकाल हो गया। वो 91 बरस के थे। उनके कुनबे के अफराद ने बताया कि वो एक तवील अलालत के बाद आज दोपहर दुनिया से चल बसे। उनकी तदफीन भोपाल टॉकीज के नजदीक कब्रिस्तान में आज शाम की गई। बशीर बद्र एक तवील अरसे से निसियान की बीमारी में मुबतला थे। वो उर्दू शायरी को जदीद तर्ज में ढालने और आसान लबो लहजे में शेर कहने के लिए जाने जाते थे। उनकी गजलें भारत और बैरून मुल्क काफी ज्यादा मकबूल हुई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। ये लाफानी अशार बशीर बद्र की शायरी की जान है। नहायत सलीस अल्फाज मगर तासुरात बहुत गहरे, कुर्बत पर मबनी जज्बात लेकिन ख्यालात आफाकी। उनकी शायरी में मोहब्बत, फुरकत, रिश्ते, अलहदगी और रोजमर्रा की जिंदगी के खामोश पोशीदा जज्बात पाए जाते हैं। बशीर बद्र ने उर्दू शायरी को एक ऐसी जबान अता करके एक नई जहद बख्शी जो आम लोगों के दिल के बहुत करीब है। उनके अशार मुशायरों में तो गूंजते ही थे, साथ ही अक्सर व बेशतर गुफ्तगू में भी इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने बहुत से मुशायरों की निजामत भी बड़ी दिलचस्प अंदाज में की। बशीर बद्र को 1999 में पद्मश्री से नवाजा गया था और उनके मजमूए कलाम आस पर उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड अता किया गया था। न्यूज डेस्क से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। भारतीय मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने का इम्कान है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मौसमियात महकमे के साइंसदान डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि अगले 3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोगों को शदीद गर्मी से काफी राहत मिल जाएगी।
2: जो हीट वेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
0: कौमी राजधानी खत्ते के कई इलाकों में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। दो भारतीय पहलवान आज वियतनाम के शहर डनांग में 17 साल तक की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में दाखिल हो गए। 45 किलोग्राम के मर्दों के जुमरे में यूनान रोम जुमरे में सचिन कलप्पा श्रोले ने 110 किलोग्राम के जुमरे में उर्दुन के समी अहमद अलावेद को 11-4 से शिकस्त दी, जबकि रुद्र किरण निमहान ने क्वार्टर फाइनल में कोरिया के सियोक मोसिम को 8-0 से हरा दिया। बैडमिंटन में भारत की पीवी संधू और लक्ष्य सेन सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि एचएस प्रणॉय टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने की सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दो भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज़।

और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम सबरस के अंतर्गत श्री बोनी भट्टाचार्य की कुछ गजलें। तबले पर संगत कर रहे हैं मोहम्मद उस्मान, सिंथेसाइजर पर हैं गुलवेज और साथी कलाकार हैं ओमकार व साथी।

अभी आप सुन रहे हैं श्री बोरी भट्टाचार्य की कुछ गजलें। तबले पर संगत कर रहे हैं मोहम्मद उस्मान, सिंथेसाइजर पर हैं गुलवेज़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस के अंतर्गत श्री बोनी भट्टाचार्य की गजलें। तबले पर संगत कर रहे थे मोहम्मद उस्मान, सिंथेसाइजर पर थे गुलवेज और साथी कलाकार थे ओमकार व साथी। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनिए रमेश उपाध्याय का लिखा नाटक अपने अपने दायरे।

0: अपने अपने दायरे। आज प्रस्तुत है श्री रमेश उपाध्याय का लिखा यह नाटक। तो सुनिए अपने अपने दायरे।
1: और सुनिए, अंत में होता यह है कि सब लोग पहले की तरह अपने अपने दायरों में लौट जाते हैं और आखिर तक इस नाटक में ये पता नहीं चलता कि नाटककार कहना क्या चाहता है।
2: ऐसी बात नहीं है रोहित, ये नाटक मैंने भी देखा है और मुझे नहीं लगता कि ये एकदम निरर्थक है। इसमें अर्थ है।
1: क्या अर्थ है जीजा जी, आप मुझे समझाइए। जिस नाटक में सभी अपनी अपनी जगह सही हो, वो भी कोई नाटक हुआ, और फिर सभी सही हो तो एक दूसरे से शिकायतें क्यों?
2: मैं रोहित, ये भी तो हो सकता है कि शिकायत का कारण उन सबके बीच ना होकर कहीं बाहर हो।
1: मसलन?
2: मसलन कोई ऐसा कारण जो सबको प्रभावित कर रहा हो और जिसे वो समझ ना पा रहे।
1: आप तो कभी कभी वाकई दार्शनिक हो जाते हैं जीजा जी।
2: भाई दार्शनिक तो थोड़ा बहुत हर कोई होता है।
3: मैं तो नहीं हूँ भाई।
2: देखो नीरा भाई, कहे कोई कुछ भी, दार्शनिक थोड़ा बहुत हर कोई होता है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए हर किसी को एक जीवन दर्शन चाहिए। अब सवाल ये है कि उसका दर्शन सही है या गलत, ये हम जान सकते हैं उन मूल्यों से, आई मीन वैल्यूज से, जिनके जरिए वो अपने जीवन में सही गलत का फैसला करता है।
3: लेकिन जब हम कोई नाटक देखें और फैसला न कर पाएं कि क्या सही है और क्या गलत, तो
2: ये नाटक की नहीं, हमारी कमजोरी हो सकती है सुनंदा जी।
4: अरे सुनंदा भाभी, तुम कहाँ उलझ रही हो इस बहस में, तुम इनसे नहीं जीत पाओगी।
3: अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, इनका तो काम ही दर्शन शास्त्र पढ़ाना है।
2: चलिए, अगर आप इस बहस को यहीं खत्म कर देना चाहती हैं तो यही सही, लेकिन इतना याद रखिए कि ये हम सब की और रोजमर्रा की जिंदगी की एक सामान्य बात है। जैसा इस नाटक में हुआ वैसा अक्सर हमारी जिंदगी में भी हो सकता है।
4: होगा तब देखा जाएगा। मैं तो चली।
2: कहाँ?
4: हाँ, आप लोगों के लिए चाय और पकौड़े लाने। हम लोग यहाँ बैठे गप्पे मार रहे हैं और माँ अकेली रसोई में लगी है।
1: तुम बैठो जीजी, माँ का हाथ बटाने सुनंदा चली जाएगी।
3: हाँ हाँ, मैं तो उठी रही।
4: नहीं भाभी, तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ।
3: चलिए, मैं भी कुछ मदद करूंगी।
1: अमित आया नहीं अभी तक?
2: भाई दोस्तों के साथ होगा। पूरे एक साल बाद आने का मौका मिलता है ना, लेकिन इस बार अकेले आकर उसने गड़बड़ कर दी। बीवी बच्चों के साथ आता तो सबसे मिलना जुलना हो जाता।
1: हाँ, साल में एक ही बार तो हम सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन इस बार बच्चे नहीं आ सकते थे, परीक्षाएं देर से शुरू हुई। लीजिए, वो आ गया अमित।
2: हाँ आओ अमित। अरे भाई, हम लोग तुम्हारी ही बात कर रहे थे।
5: थैंक यू जीजा जी। रोहित भैया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जरा अंदर चलिए।
1: अरे ऐसी कौन सी बात है जो जीजा जी के सामने नहीं की जा सकती?
5: तो ठीक है जीजा जी, आप भी सुन लीजिए।
2: क्या बात है अमित, बड़े गुस्से में हो?
5: हाँ मैं गुस्से में ही हूँ। जब भी यहाँ आता हूँ मुझे कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है।
1: ऐसा क्या सुन लिया?
5: लोग बाग ताने मारते हैं कि हम लोगों ने बूढ़ी माँ को अकेली छोड़ रखा है और पैसा वैसा कुछ नहीं भेजते।
1: अरे ये तुमसे किसने कहा?
5: किसने कहा? यहाँ तो सारा शहर कहता है, हम दोनों भाई इतने निकम्मे हैं कि माँ को अपना पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है।
1: क्या? अरे
5: अभी मुझे पता लगा है कि माँ प्रभुलाल जी के यहाँ कपड़ों में काज बटन लगाने का काम करती है।
2: अरे किसी ने गप मार दी होगी अमित।
5: नहीं जीजा जी,
2: माँ जी को भला ऐसा काम करने की क्या जरूरत है?
5: ये गप नहीं है।
1: पर माँ ने तो कभी कुछ नहीं लिखा कि उन्हें पैसों की तंगी है।
5: लिखने की बात छोड़िए, मेरे भेजे हुए मनी ऑर्डर तक वापस किए हैं माँ ने।
1: मनी ऑर्डर तो मेरे भी लौटाए हैं माँ ने, लेकिन उसका कारण तो ये बताती है कि मकान के किराए से गुजारा चल जाता है।
5: और नहीं चल सकता था तो हमसे कह सकती थी, हम क्या मर गए थे? इस तरह सारे शहर में बदनामी कराने की क्या जरूरत थी?
2: माँ जी ने मुझसे भी इस विषय में कभी कुछ नहीं कहा।
5: यही तो रोना है जीजा जी, माँ हम लोगों से कभी कुछ नहीं कहती
1: और हमारी बात सुनती भी नहीं। हम लोगों ने एक बार नहीं हजार बार कहा है कि यहाँ अकेली क्यों पड़ी हो, हम में से किसी एक के साथ भी चली चलो।
2: हाँ ये बात तो कई बार मैं भी उनसे कह चुका हूँ, और नीरा तो शुरू से ही कहती रही,
1: लेकिन वो किसी की सुने तब ना, जब भी कहो मकान की बात बीच में ले आती है, कहती है मैं चली गई तो मकान कौन संभालेगा।
5: मगर मैं पूछता हूँ इस खंडर को संभालने की जरूरत क्या है? जब हम दोनों भाई स्थायी रूप से दूसरे शहरों में रहने लगे हैं तो इस मकान को यहाँ बनाए रखने से फायदा ही क्या? भेज भाज कर छुट्टी करो।
1: और इससे किराया भी कितना आता है? 150-200 रुपया बस। और उस पर भी किराएदार ऐसे हैं कि 6-6 महीने तक किराया नहीं देते,
5: और हम लोग तो उनसे किराया वसूल करने आ नहीं सकते।
1: और माँ के बस का ये सब है नहीं।
5: अरे माँ का बस चले तो किराया ही माफ कर दे। मैंने देखा है किराएदारों के बाल बच्चों पर कुछ ना कुछ खर्च करती रहती हैं, और हो सकता है ये काम काज उन्हें इसीलिए करना पड़ता हो कि मकान से किराया मिलना बंद हो गया।
2: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने मालूम किया था, क्योंकि पहले मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी। लेकिन पता चला कि देर सवेर भले ही हो जाए पर किराया मिल जाता है।
1: फिर इतने पैसे कमा करते क्या है?
5: यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती।
1: ये मकान तो हमारे लिए मुसीबत बन गया है। इसी ने हमको माँ से अलग कर दिया। मैं इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं।

0: मां जी को इस मकान से कुछ विशेष लगाव है।
1: वो तो है और हमें मालूम है, लेकिन लगाव अगर एक दुखदायी चीज बन जाए तो ऐसे लगाव से क्या फायदा?
0: ये भावनाओं की बात होती है रोहित, इसमें फायदा नुकसान नहीं देखा जाता।
2: लेकिन जीजा जी, इस बार मैं कुछ फैसला करके ही जाऊंगा। माँ या तो मेरे साथ चलें या रोहित भैया के साथ जाएं। यहाँ वो अकेली नहीं रहेंगी। मकान को बेचना हो बेच दें, नहीं बेचना तो छोड़ दें। पर अब ये नहीं होगा कि दो दो बेटों के रहते माँ बुढ़ापे में मेहनत मजदूरी करें।
1: लेकिन माँ को समझाएगा कौन अमित? ये कोई नई बात तो है नहीं। जानते हो, जब भी ये बात उठी है तब घर में खूब कहा सुनी हुई है, माँ रोई है। इसीलिए मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि माँ जैसा चाहे उन्हें करने दिया जाए। हम लोग उन्हें समझा नहीं सकते।
2: आखिर क्यों नहीं समझा सकते?
1: पिछले साल की बात भूल गए? इसी बात पर तुम्हें गुस्सा आ गया था और तुम अपने रोते पीटते बच्चों को एकदम खींचते ले गए थे। अमित, माँ को तो बस एक ही जिद है कि इस मकान को नए सिरे से बनवाया जाए, और भाई मेरे पास का तो ये सब है नहीं।
2: मगर मैं तो उनसे कह रहा हूँ कि आपको नया मकान ही चाहिए तो चलिए मैं जयपुर में बनवा देता हूँ। क्या जरूरी है कि मकान यही बनवाया जाए और इसी जगह बनवाया जाए? और जहां तक पैसे की बात है, माँ इस मकान को बेच लेने दें तो इतना पैसा मिल सकता है कि थोड़ा बहुत और मिलाकर हम दोनों के मकान बन जाए।
0: नहीं अमित, ये बात कम से कम माँ जी के जीते जी मत सोचना। माँ जी बहुत स्वाभिमानी हैं। ये बात उनके सामने आई तो हो सकता है वो मकान तुम लोगों को सौंप कर अलग हो जाएं। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि उसके बाद वो तुम लोगों के साथ चली जाएंगी? और मकान न रहने पर भी माँ जी ने यहीं रहने का फैसला किया तब तो बदनामी और ज्यादा होगी।
2: तो फिर जीजा जी, आप ही बताइए क्या किया जाए।
0: मां जी को समझाया जाए, और मेरे ख्याल में तो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि मां जी को समझा जाए। मां जी वृद्ध हैं, अकेली हैं, उन्हें सहानुभूति की जरूरत है।
1: लेकिन अब तक हम सब उन्हें इतने प्रेम से समझाते रहे हैं, सो
2: उन पर तो कोई असर ही नहीं होता। हम लोग बकते रहते हैं और वो चुपचाप सुनती रहती।
0: फिर भी कोशिश करते रहने में कोई हर्ज नहीं। और देखो, तुम दोनों एक साथ ये बात मां से मत करो। हो सकता है वो सोचती हूँ कि एक के साथ जाने पर दूसरा बुरा मान जाएगा।
1: नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो मेरे साथ चलना चाहे मेरे साथ चले, अमित के साथ जाना चाहे इसके साथ चली जाए। क्यों अमित?
2: और क्या?
0: तो ठीक है अमित
2: जी,
0: आज रात मांझी से तुम बात करो, कल रोहित कर लेंगे।
3: अमित, तू इतनी देर से क्यों आया? ले देख, माँ ने तेरी पसंद के मिर्च के पकौड़े बनाए हैं, खा और सी सी कर। बड़ी तेज मिर्चे हैं।
2: पहले मुझे एक गिलास पानी दे दो जी।
0: हाँ, हाँ ये ठीक है, पानी पीकर गुस्सा ठंडा कर लो।
3: इससे गुस्सा आया हुआ है?
0: हाँ,
3: किस पर?
0: पानी पर, हवा पर, बादलों पर, शहर पर और हम सब लोगों पर।
3: बस बस सहन कीजिए, अमित के गुस्से को इतना फालतू समझ रखा है आपने।
2: मुझे बात तो बताओ मां, तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की? बोलो ना, चुप क्यों हो मां?
4: क्या बोलूं अमित,
2: हम लोगों से कोई गलती हुई है?
4: नहीं रे, ये तो से किसने कहा?
2: तो फिर तुम यहां अकेली क्यों पड़ी हो?
4: मेरा मन यही लगता है बेटा।
2: मन लगने की बात तो समझ में आती है मां, और इसीलिए अब तक हम लोगों ने तुम्हें यहां छोड़ भी रखा था। लेकिन ये मेहनत मजदूरी किस लिए? बोलो मां, किस लिए? तुम्हें पैसों की जरूरत है, मुझसे कहो कितना पैसा चाहिए तुम्हें?
4: मुझे कुछ नहीं चाहिए अमित।
2: तो फिर तुम नाराज क्यों हो?
4: नाराज? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ बेटे।
2: तो ये सजा हमें किस बात की दे रही हो माँ? मैं तुम्हें मनी ऑर्डर भेजता हूँ, तुम लौटा देती हो। यहाँ आकर जबरदस्ती दे जाता हूँ तो तुम उन पैसों से कुछ ना कुछ खरीद कर बच्चों के लिए भेज देती हो। ये सब क्या है माँ? अरे तुम फिर चुप हो गई। मैं जानता हूं तुम क्यों नाराज हो। मैंने और भैया ने तुम्हारी ये बात नहीं मानी कि इस मकान को नया बनवाया जाए। लेकिन माँ, तुम भी तो हमारी बात नहीं मानती। जरा सोचो तो, यहां मकान बनवाकर हम लोग उसका करेंगे क्या?
4: ये बात तो अमित मैंने उसी दिन मान ली थी जिस दिन मकान बनवाने की बात पर तू गुस्सा होकर जयपुर चला गया था। बहू और बच्चों को खाना भी नहीं खाने दिया था तूने, थाली पर से खींचकर सबको उठा ले गया था तू।
2: लेकिन उसके बाद भी तुमने अपनी जिद तो नहीं छोड़ी माँ?
4: उसके बाद मैंने तुझसे कुछ कहा?
2: कहा नहीं तो क्या, जिद तो तुम्हारी वही।
4: क्या जिद कर रही हूँ मैं?
2: साफ कहलवाना चाहती हो? तुम्हारी जिद ये है माँ

0: हामिद को नाराज करके आपने अच्छा नहीं किया।
1: और तुम तो जानती हो माँ, वो तो शुरू से ही गुस्से वाला है।
2: मुझसे गलती हो गई नीरा।
1: गलती वलती कुछ नहीं हुई माँ, गलती हुई भी होगी तो अमित की तरफ से हुई होगी, लेकिन इस तरह अमित का चला जाना अच्छा नहीं हुआ। साल में एक बार तो हम सब मिलते हैं, उसमें भी।
3: छोड़ो नीरा। अच्छा माँ जी, आप एक बात बताइए, आप हम लोगों से क्यों नाराज हैं?
2: तुमसे भला क्यों नाराज होने लगी शेखर, पूछ देखो पड़ोसियों से, बेटी दामाद की तो हमेशा गुणगाती रहती हूँ मैं।
3: तो मेरी एक बात मानेंगी आप?
2: बस अपने साथ ले जाने की बात मत करना बेटे, बाकी तुम्हारी सब बातें मान लूंगी, बोलो।
3: लीजिए, आपने तो बात ही खत्म कर दी, अब क्या बोलूं?
1: चलो ये ना सही, एक और बात मान लो माँ।
2: बोल।
1: काम करना छोड़ दो माँ, तुम नहीं बताना चाहती इसलिए मैं ये नहीं पूछूंगी कि तुम काम क्यों करती हो, लेकिन अपने शरीर की तरफ तो देखो माँ, तुम्हारी उम्र क्या मेहनत मजदूरी करने की है? तुम्हें पैसे की तंगी रहती हो तो मुझे बताओ।
3: हाँ माँ जी, मुझे भी आप अपना ही बेटा समझिए।
2: तुम तो बेटों से भी बढ़कर हो शेखर, लेकिन काम तो मैं इसलिए करती हूँ कि मन लगा रहता है, अकेली पड़ी पड़ी क्या करूँ।
3: तो मैं आपके लिए पुस्तकें भिजवा दूंगा, पढ़कर मन बहलाइए, और समय बिताने के और भी तो कई उपाय हो सकते हैं माँ जी।
1: माँ, लोग क्या सोचते होंगे?
2: लोग यही सोचते होंगे कि बुढ़िया पैसे की लालची है, तो सोचने दो बेटी।
1: लेकिन माँ, लोग ये नहीं सोचते, लोग सोचते हैं कि बेटी बेटी माँ की परवाह नहीं करते।
2: लोगों का मुंह नहीं पकड़ा जाता नीरू, लोग तो 50 तरह की बातें बनाते हैं, इसलिए तुम ये सब चिंता छोड़ो। चलो उठो, तुम लोग अपने जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हारे सफर के लिए खाना बना दूं।
1: माँ, रहने दो।
2: हट पगली, तू भी क्या अमित की तरह गुस्सा होकर जाएगी? तुम दोनों को मेरी सौगंध जो यहाँ से नाराज होकर गए तो
1: माँ।

0: सुनंदा माँ कहाँ है?
1: रसोई में है। देखा आपने सब लोग कितने तेज निकले, जाने की जल्दी हम लोगों को थी और चल दिए खुद। हमें अब कितने दिन और रुकना पड़ेगा?
0: तुमने माँ से बात की?
1: नहीं जी, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। माँ जी आप लोगों के जाने के बाद बहुत रोई हैं।
0: यही तो मुसीबत है सुनंदा, माँ बहुत ज्यादा संवेदनशील है और उतनी जिद्दी भी। हर साल पिताजी की बरसी पर हम लोग यहाँ आते हैं और मैं, अमित, जी जी जीजा जी सब मिलकर माँ को समझाते हैं कि वो यहाँ अकेले रहने की जिद छोड़ दे, मगर नहीं, माँ को रहना भी यही है और दुखी भी रहना है।
1: मगर सुनिए, भावुकता से जरा हट कर सोचिए कि इन सबसे फायदा क्या है। माँ जी विधवा हैं, बूढ़ी हैं, अकेली हैं, इससे अच्छा उनके लिए और क्या हो सकता है कि अपने बेटों के पास रहें और अपने नाती पोतों को संभालें।
0: हाँ सुनंदा, होना तो यही चाहिए था, लेकिन हम लोग माँ को वो सुख नहीं दे सकते जो वो हमसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बेटे अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करें, और बेटे नालायक हैं।
1: सपने? अधूरे सपने?
0: हाँ सुनंदा, माँ को आशा थी कि हम दोनों भाई कमाने खाने लगेंगे तो पैसा जोड़कर मकान बनवाएंगे।
1: लेकिन माँ जी को ये तो सोचना चाहिए कि जब बेटे दूर दूर शहरों में और अलग अलग रहने लगे हैं तो यहाँ मकान बनवा कर क्या करेंगे।
0: यही बात तो है, और माँ की समझ में ये बात नहीं आती। माँ बहुत जिद्दी है, हम लोगों ने इनकार कर दिया तो वो अब शायद ये सोच रही हैं कि अपनी मेहनत मजदूरी से मकान बनवा लेंगी। माँ आज के जमाने में पुरानी प्रतिष्ठा के पीछे पागल है।
1: लेकिन अजीब बात है, माँ जी अपनी प्रतिष्ठा के सामने अपने बेटों की प्रतिष्ठा को कुछ नहीं समझती। इतनी बदनामी के बाद मकान बन भी गया तो उससे क्या।
2: आई माँ जी।
3: रोहित से कह दे खाना खा ले।
1: चलिए खाना खा लीजिए।
0: चलो।
1: लेकिन यहाँ से चलने के बारे में क्या सोचा आपने?
0: दो दिन और रुकना पड़ेगा, सब लोग एक साथ चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं दो दिन की छुट्टी और बढ़ा लेता हूँ, शनिवार को हम सब लोग यहाँ से चल देंगे।
1: ठीक है।
2: रोहित, मैंने रामधन से कह दिया है, वो तांगा लेकर आ रहा है।
1: आपकी किराएदारों में रामधन भाई बहुत अच्छे हैं माँ जी, सब काम कर देते हैं।

0: इन्हीं लोगों के सहारे पड़ी हूँ बहू। गरीब लोग हैं, किराएदार होने के नाते कभी कभी लड़ झगड़ भी लेते हैं, लेकिन दिल से अच्छे हैं। आधी रात को भी कोई काम बता दूं तो दौड़ कर कर लाए।
1: माँ एक बार फिर सोच लो, अगर तुम्हें चलना हो तो 2 दिन की छुट्टी और मैं ले लेता हूँ।
0: चल तो नहीं पाऊंगी बेटा, लेकिन तुम लोग 2-4 दिन और ठहर जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा।
2: नहीं माँ जी, बच्चे अकेले वहाँ परेशान हो रहे होंगे।
0: उनको साथ ले आए होते तो अच्छा रहता, साल भर हो गया उन्हें देखे।
2: मैंने बताया तो था माँ जी, उनके इम्तिहान चल रहे थे। आप चलिए ना माँ जी, बच्चे तो हमेशा दादी दादी करते रहते हैं।
0: वे जीते रहे, सुखी रहे बहू, मेरे बच्चे मुझे याद कर लेते हैं, यही बहुत है मेरे लिए।
3: चाची, नाना आ गया है।
0: लो जाओ तुम लोग, बच्चों की छुट्टियां हो जाए तो कुछ दिनों के लिए आ जाना।
1: चलते चलते ऐसी बात कहनी तो नहीं चाहिए माँ, लेकिन कहनी पड़ रही है कि अब हमारा संबंध माँ बेटे का नहीं।
0: नहीं नहीं, ऐसा मत कहो रोहित, ऐसा मत कहो बेटे, ऐसा मत कहो।
1: रो नहीं माँ, सारा शहर यही मान रहा है कि हम लोगों के बीच संबंध खत्म हो चुका है। और ऐसे शहर में आकर क्या होगा माँ, जहाँ चारों तरफ उंगलियां उठे कि देखो एक कपूत जा रहा है। चलो सुनंदा,
2: मुझे आशीर्वाद दीजिए।
0: सुखी रहो बहू, सौभाग्यवती रहो, तू तो नहाओ पूतो फलो।
3: अरे भाई, तांगे वाला इंतजार कर रहा है।
1: चलो सुनंदा,
3: लाओ ये सामान मुझे दे दो, मैं रखे देता हूँ, तुम बैठो।
1: अच्छा रामधन भैया नमस्ते।
3: नमस्ते तो ठीक है, लेकिन रोहित भाई चाची का थोड़ा ख्याल रखा करो, बुढ़ापे में तुम लोगों के सिवा और इनका है कौन।
1: आप लोग हैं ना अपने और सगे। चलो भाई टांगे वाले,

सब चले गए। चार दिन सब कितना भरा भरा लगने लगा था, फिर सब खाली, फिर वही अकेलापन। कौन समझता है किसी का दर्द, सब अपने अपने अंदाजे लगाते हैं, समझते हैं बुढ़िया जिद्दी है, स्वार्थी है, लालची है, असली बात कोई नहीं जानता, कोई जानना चाहता भी नहीं, और मैं भी तो नहीं बता पाती। कई बार मन में आया कह दूं साफ साफ, कह दूं कि इस मकान को बेचने के लिए तो तुम दोनों तैयार हो, पर क्या इसका कर्ज चुकाने को भी तैयार हो? कभी सोचने की जरूरत समझी तुमने कि माँ ने तुम्हें किस तरह पढ़ाया लिखाया है? तुम्हें लोगों के लिए मैंने मकान गिरवी रखा था, तुम छोटे थे इसीलिए कभी तुम्हें नहीं बताया। सोचती थी बड़े हो जाओगे, कमाने खाने लगोगे तो बता दूंगी, लेकिन तब तक तो दुनिया ही बदल गई, तुम्हारी नौकरियां लग गई, तुम्हारी नजर मकान पर गई, और तुम्हें अपने अपने मकान बनवाने की चिंता हुई। तुम दोनों भाई सलाह करके मेरे पास आए, माँ इस मकान को बेच दूं? मैंने कहा बेटा मकान का कुछ कर्ज है तुम लोगों पर, और तुम लोग पूरी बात सुनने से पहले ही भड़क उठे, जो भी मन में आया तुम बोले और नाराज होकर चले गए। उसके बाद हर बरसी पर तुम आते हो और लड़ झगड़ कर चले जाते हो। अब तुम्हें क्या बताऊं कि तुमने मुझे मेरा जो कर्तव्य बता दिया है वही किए जा रही हूं, किए जाऊंगी मरते दम तक।

0: क्या बात है भाभी, आज तबीयत ठीक नहीं दिख रही है। डॉक्टर को बुला रहा हूं।
1: नहीं भैया, जरा वो दवाई उठा के पिला दो।
0: आज तो बुखार भी बढ़ गया लगता है। बुढ़ापे में ईश्वर किसी को ऐसा दुख न दे। लो दवाई पी लो।
1: सुखी रहो भैया, मुझे कोई दुख नहीं है।
0: हाँ हाँ, जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। अरे भाभी, हम तो तुम्हारे किराएदार हैं, लेकिन तुम्हारा दुख तो सारा शहर जानता है। रोहित, अमित को चिट्ठी लिखवा दी थी ना तुमने? कोई आया नहीं?
1: उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाई होगी भैया।
0: अब देख लो, अब की दोनों आए तो कस के डांट लगाऊंगा। कहूंगा तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग मजे कर रहे हो और माँ तुम्हारी मरी जाएगी।
1: नहीं भैया, नहीं, ऐसी बात नहीं है।
0: पर भाभी, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है, तुम्हें अस्पताल में भर्ती करा दूं?
1: नहीं भैया, नीरू को खबर हो गई है, उसका तार भी आ गया है, सुबह तक वो लोग आ जाएंगे।
0: नीरू आ रही है, तब तो ठीक है। मेरी बात मानो तो भाभी, तुम उसी के साथ चली जाओ। मुझे तो तुम्हारे दामाद, क्या नाम है उनका, शेखर भी बहुत बढ़िया आदमी लगते हैं, वो लोग तुम्हारी खूब सेवा करेंगे भाभी।
1: हाँ भैया, शेखर तो कई बार आ चुके हैं मुझे ले जाने के लिए, मैं ही नहीं गई। अब की बार लगता है जाना ही पड़ेगा।
0: अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ, कोई जरूरत पड़े तो आवाज दे लेना।
1: अच्छा भैया, जाओ सो जाओ, भगवान तुम्हें सुखी रखे।
2: कहिए माँ जी, कैसी तबीयत है आप?
3: अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ शेखर, इतनी सेवा टहल के बाद तुम मरते भी जी जाए बेटे।
4: लो माँ, ये सूप पी लो।
3: अरे अब ये सूप ऊप रहने दे, अब तो मैं बिल्कुल भरी चंगी हूँ, घूम फिर लेती हूँ, रोटी भी खा लेती हूँ।
4: तो क्या हुआ, लो पियो।
2: क्यों नीरू, आज शाम मां जी को कहीं घुमाने ले चलें?
4: हाँ ये ठीक है, पहले डॉक्टर के पास चलेंगे, फिर थोड़ा घूम फिर कर लौटेंगे। माँ कोई पिक्चर देखोगी?
3: पिक्चर दिखाएगी मुझे इस बुढ़ापे में?
2: क्यों माँ जी, बड़े बूढ़ों को मनोरंजन की जरूरत नहीं होती क्या?
3: नहीं बेटे, तुम लोग देख आना, मेरे कारण महीने भर से तुम लोग कहीं निकल नहीं पाए, दिन रात मेरी सेवा में ही लगे रहे हो।
4: क्या बात करती हो माँ।
2: नीरू, तो यही तय रहा कि शाम को डॉक्टर के पास चलेंगे, रोज गार्डन में घूमेंगे और पिक्चर देखेंगे।
4: हाँ।
2: मैं कॉलेज से लौटते समय टिकट लेता हूँ।
3: सुनो शेखर, अब मैं अपने घर लौटना चाहती हूँ।
2: क्यों माँ जी, ये घर क्या आपका नहीं है?
3: घर तो ये भी अपना ही है बेटे, पर अब मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे वापस जाकर अपना कामकाज देखना है बेटे।
4: कामकाज? माँ तुम्हें कितना समझाऊं, कामकाज करने की तुम्हें क्या जरूरत है? रोहित अमित इतना कमाते हैं, मकान का किराया आता है, फिर किसी बात की जरूरत हो तो हम लोग हैं।
2: और माँ जी, आप तो जानती हैं मुझे बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिला, आपने वो कमी पूरी कर दी, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा।
4: हाँ माँ, देखो ना बॉबी भी तुमसे कितना हिल मिल गया है।
3: लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा नीरू।
4: क्यों माँ?
3: बात यह है नीरू कि अपना मकान गिरवी पड़ा है।
2: क्या?
3: और मुझे जाकर उसे छुड़ाना है।
4: मकान गिरवी पड़ा है?
2: ओ।
4: कब रखा और क्यों, किस लिए?
3: कई साल हो गए नीरू, रोहित अमित पढ़ रहे थे उन दिनों, और घर की जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी खत्म हो गई थी इसलिए।
4: लेकिन ये बात तो तुम्हें कभी बताई नहीं माँ, रोहित अमित को भी शायद नहीं मालूम।
3: बता कर क्या करते नीरू, वो तो शुरू से यही समझते आए हैं कि माँ के पास बहुत पैसा है और माँ कंजूस है।
2: ओह, अब मैं समझा कि माँ जी वो नौकरी क्यों करती हैं।
4: ओ माँ, तुमने मुझे भी अपनी बेटी नहीं समझा, मुझे बता देती तो हम लोग जैसे भी होता मकान को छुड़वा देते।
3: नहीं नहीं, तुम लोग क्यों छुड़वाओ, जिनके लिए गिरवी रखा गया था उन्हीं को चिंता नहीं है तो तुम क्यों?
4: पर उन लोगों को भी तो तुमने नहीं बताया माँ।
3: एक बार बताने की कोशिश की थी नीरू, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, कुछ का कुछ समझ गए और ऐसी ऐसी बातें कह गए कि मैं फिर उनसे कभी कुछ नहीं कह सकी।
4: क्या कहा उन्होंने?
3: बोले कि वो माँ जो बेटों को पालने पोसने के बदले में कुछ चाहती है, तो वो माँ कैसी? अमित को तो तू जानती है ना, कहने लगा हम कोई ऐसी चीज नहीं है माँ जिसमें पैसा लगाया जाए और बाद में उससे मुनाफा कमाया जाए।
4: तमीज कहीं का, इस लड़के को कभी अकल नहीं आएगी। पता नहीं हमारे घर में ही अकेला सबसे अलग कैसे निकल गया। कौन सिखा देता है आजकल के लड़कों को ऐसी बातें?
2: ये अकेले अमित का दोष नहीं है नीरू, आज के हमारे जीवन मूल्य ही ऐसे हैं। पुराने मूल्य बहुत अच्छे नहीं थे इसीलिए वो टूट भी गए, पर ये नए मूल्य भी ठीक नहीं है। ये मनुष्य को मनुष्य से अलग करते हैं, जबकि समाज को ऐसे मूल्य चाहिए जो हमें एक दूसरे से जोड़ें, एक दूसरे के लिए हमारे दिलों में प्यार ममता और सहानुभूति पैदा करें।
4: लेकिन माँ एक बार तो तुमने मुझसे कहा होता।
2: खैर मां जी, जब सूरज निकले तभी सवेरा, अब आप निश्चिंत होकर जा रही है। बस मुझे इतना बता दीजिए कि किसका और कितना रुपया देना है, मैं अपने प्रोविडेंट फंड से निकलवा लूं।
3: नहीं बेटा नहीं, तुम्हारा पैसा मैं नहीं ले सकती
4: और हमारे पास रह भी नहीं सकती। लेकिन क्यों माँ क्यों, क्या मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं हूँ?
3: नीरू मेरी बेटी, तुम लोगों से ज्यादा मेरा अपना कौन है? लेकिन जिनसे मैंने सुख चाहा था उन्हीं से वो मुझे नहीं मिला, तो अब किसी और से वो सुख मुझे नहीं चाहिए बेटी, नहीं चाहिए। तुम दोनों सुखी रहो, रोहित अमित सुखी रहे, मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं रहूंगी।
2: माँ जी,
3: सही है या गलत जो भी मैं कर रही हूँ मुझे कर लेने दो, मेरा सुख इसी में है बेटी, मेरा सुख इसी में है। माँ

0: अपने अपने दायरे। अभी आप श्री रमेश उपाध्याय का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे सत्येंद्र शरत, प्रस्तुतिकरण सहायक गोपाल सक्सेना और तकनीकी सहायक भगत सिंह। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री कमला कुमारी चोपड़ा, सुरेंद्र सेठी, शर्मिला मलकानी, सतीश कक्कड़, राजकुमारी शर्मा, राम मैनी, रमेश चंदर और राम अवतार शर्मा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे रमेश उपाध्याय का लिखा नाटक अपने अपने दायरे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीतांजलि।

कार्यक्रम गीतांजलि के सभी श्रोताओं को अंकुर राजपूत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहली फरमाइश हमें भेजी है हमारे आप सभी साथियों ने, एडवोकेट वारिस अली खान, लियाकत अली, शहनाज खान, इस्लामुन्निशा और बेबी बुसरा खान, आप सभी ने ये पत्र भेजा है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। खुर्जा यूपी से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुन्निशा बेगम, अकरम सैफी, आबाद खान और इनके परिवार के सभी सदस्य, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष, योगी, बब्बू व डब्बू, गांव फरांसी से राजकुमार डुड्डी, सुरजीत सिंह डुड्डी, जमनी मोहल्ला इस्लामनगर से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान, इंशा खान, पुणे से प्रियंका आर्या, पंकज वडोदे, जरूड़ वरुड़ से बाबा साहेब वडोदे, मीनाक्षी चरपे, चंद्रप्रभा वडोदे, बारखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूणत और इनके परिवार के सभी सदस्य, आदर्श नगर मालौट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगी शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना, निवान शर्मा, परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी, गंजुंडवारा से इरफान खान, शमशुल खान और इनके परिवार के सभी सदस्य, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत रॉय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया, शोएब खान, पुत्रा मुश्तबा खान, राऊ भाई, शाहिद भाई, गांधी भाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म अकेला में आशा भोसले को।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम भेजी है हमारे आप सभी श्रोताओं ने। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जौंधले, आरती जौंधले, पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी, असद अंसारी और आपके परिवार के सभी सदस्य, अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर यूपी से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल मिस्त्री, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, कविता, अंश गौतम, ग्राम हरनगला मंदिर के पास स्वार से नब्बन खान, इब्बन खान, नाजिम खान, सलमान, शाहरुख खान, आरिश खान और इनके परिवार के सभी सदस्य, अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनकदीप कौर। ये फरमाइश हमें भेजी है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने। जामरून से ये फरमाइश भेजी है दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन संजय, आशीष, पृथ्वीराज, कुमारी सांधवी जोशी, परवणी हुन, गणेश हारगांवकर। गांधी समाधि रोड से गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, शमा, मिक्की, बुशरा और आसिम खान। जिला अस्पताल के पास से गजन खान, शमा परवीन, शमशद अली अजम, गुलफशाह, शहनाज, बाबू अंसारी, रजिया गफ्फार, हबीब अहमद इदरीसी और इनके परिवार के सभी सदस्य। परमीलागंज मालौट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश, ऋषि और इनके परिवार के सभी सदस्य। जातुका किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, चांदी नाज और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को। फिल्म का नाम है परदेसी।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि, अपने साथी अंकुर राजपूत के साथ। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें भेजी है दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी, जिला मुरादाबाद, संभल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मीना मुन्नी, पवित्रा, आकांक्षा, आंचल, अजय, आकांक्षा, धन्य और इनके परिवार के सभी सदस्य। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, निशान, मरियम और बुशरा। बहेड़ी से अंजुम भाई, खालदा बेगम, कहकशां, दानिश, आदिल, शफक और इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम पंजौनिया, ज़िला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। थाना टीन ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खां, पीडब्ल्यूडी वाले, शाहिदा परवीन, इमरान, रेहान, इकराम, समीना, आसिफा, शबीना और इनके परिवार के सभी सदस्य। पटियाला रोड गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से पप्पू भाई बिजली वाले, अफसाना बेगम, महज अभी शेख, एम फारूक शेख, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, मिर्ज़ा नसरीन बेगम और इनके परिवार के सभी सदस्य। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री और इनके परिवार के सभी सदस्य। पंडित नगला बाईपास को हिनोट तिराहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन निशा, असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन, बीबीपुर से मकसूद हुसैन, नाजिम अली और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म हम और तुम में मुकेश कुमार और लता मंगेशकर को।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें भेजी है हमारे आप सभी साथियों ने। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। मछली गोदाम कैदी मोड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा, लेलू, ऋतु, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, विवान, लखविंद्र संधू, महावीर संधू, गुरचरण गरोवर, रमेश मिगलानी और इनके परिवार के सभी सदस्य। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनुखेलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही, स्वाति और इनके परिवार के सभी सदस्य। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, पार्थिक, सोनाली, कृष्ण और इनके साथी। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली, उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश, राजेश कुमार, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह। बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद, जमालुद्दीन, सादिया, अक्सा और हम्माद। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। मोहल्ला चामुंडा से इंतजार राही, शादाब राही, मेहताब, सिकंदर राही, साहिल राही और साहिल अंसारी। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है देवता।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सभी की फरमाइश पर। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां, पटियाला से भत्ता परिवार मुकेश भत्ता नीलम भत्ता नितिन पलक करण गीतू निहारका हार्दिक और वंश भत्ता, बेरड़ी से राजेश सोनी कंचन गायत्री वैष्णवी चंचल अर्जुन गवनीकर धीरज सवासेरे और इनके परिवार के सभी सदस्य, तेलंगाना भंगगीत से मोहम्मद बुरहानुद्दीन यासुफुद्दीन फजान लल्ला फरहान लल्ला आजमीन अब्दुल बाबा अंजाना और इनके परिवार के सभी सदस्य, रामगंज खंडवा से विजय महोबिया कविता महोबिया संजय नंदिनी विशाल सोनू मोनू डॉली देवराज और भैयू दादा, ग्राम धुर्रा ब्रांधा भट्टापारा से प्रमोद साहू देव कुमार साहू नेतराम साहू भुवनेश कुमार साहू और भुवेंद्र साहू। इसी गीत की फरमाइश की है हमारे आप सभी श्रोताओं ने। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश तारनी सूरज सुजला ज्योति रियांश और इनके परिवार के सभी सदस्य, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा से प्रतीक राय श्रीमती रोशनी प्रांजल, शेरपुर कलां से अवधेश राय श्रीमती प्रीति नवनीत और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म शौकीन में सुरेश वाडेकर को।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीतांजलि। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है।

0: और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर्ड कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धारमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।